सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा।

0: हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

राम से बड़ा राम का नाम, नाम की महिमा अनंत है, प्रभु स्वयं कहते हैं। नाम सुमिरन मात्र से प्राणी मुझे प्राप्त कर सकता है। महान ऋषियों मुनियों ने भी यही कहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने सुना हरिओम शरण, मन्ना डे, नरेश मल्होत्रा और शांता सक्सेना की गाई ये भक्ति रचनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेद स्वरों में ये देशगान।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है मन की महिमा। आलेख है डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक का। वाचन है अंजू पांगती का।
1: इस संसार में मन की महिमा प्राणियों पर अत्यधिक प्रभावी है। मन में जो आता है वही प्राणी करता है, अन्यथा देखते हुए भी अनदेखा, सुनते हुए भी अनसुना बना रहता है। पूर्ण एकाग्रचित्त होकर मन लगाकर अध्ययनशील छात्र अपने आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ ही बना रहता है। मन लगाकर किसी कार्य को करने से ही उसकी सिद्धि निहित है। जिस मन के अन्यत्र रहने पर खुले नेत्र देख नहीं पाते, खुले कान सुन नहीं पाते, त्वचा छू नहीं पाती, नासिका गंध नहीं ले पाती, जिह्वा स्वाद नहीं बता पाती, वो मन कल्याणकारी एवं प्रभु अनुरागी बने, यही कामना संतों को अभिलाषित है। प्रत्येक साधना में कर्म निहित है और मन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। भौतिकवाद में ज्ञान का फल कर्म है तो आध्यात्म में कर्म का फल ज्ञान। इस प्रकार कर्म सर्वत्र व्यापक होता हुआ मन द्वारा नियंत्रित हो ज्ञान योग भक्ति का आधार बन गया। मन के चार विभाग विचारकों द्वारा किए गए हैं। प्रथम विभाग में पंच कर्मेंद्रिय संबंधी ज्ञान, द्वितीय विभाग में इंद्रियों के अतिरिक्त आंतरिक ज्ञान, तृतीय विभाग में इनका समन्वय और चतुर्थ विभाग में औचित्य अनौचित्य का निराकरण। एक महात्मा ने अपने भक्त से कहा, यदि तुम्हारे जीवन में दुख आवे तो उसे अस्वीकार कर दो। भक्त ने पूछा, ये कैसे संभव हो सकेगा? महात्मा ने समझाया, दुख आता है अपने प्रारब्ध से, किंतु टिकता है हमारी पकड़ से। मैं दुखी हूँ, ये अपनी देह का अभिमान धारण नहीं करना चाहिए। जो अनित्य है उसको क्यों विचारा जाए? प्रतीयमान प्रपंच मन में होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान का कालचक्र मन में विद्यमान रहता है। भूतकालिक प्राचीन संस्कृति वृत्ति व्यक्ति का राग अनुराग मिलन विछोह मन में ही होता है। अनंत भविष्य का चिंतन मनन भय आशंका आशा निराशा मन में ही उत्पन्न होती है। वर्तमान में जो कुछ भी भासता है या भविष्य के लिए जो कुछ भी कल्पना है वो मन में ही है। श्राद्ध और यज्ञ देहातिरिक्त आत्मा के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए हैं। अवतार और मूर्ति पूजा तत्पदार्थ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए हैं। ऋषि पूजा साधन में श्रद्धा बनाने के लिए है कि साधन

0: करने से महानता की ओर उन्मुख होना चाहिए। ये सभी प्रतीयमान प्रपंच हैं। निर्विशेष मन का ही नाम आत्मा है तथा सविषय ज्ञान का नाम मन है। आत्मा की भांति मन अमर है, अमृत है। इसमें बाहर से दुख, शोक, भय आदि डाले जाते हैं। ये सुख दुख मन को चंचल कर देते हैं। इंद्रियां अपने विषय अनुभवों को लेकर मन को अर्पित करती हैं। वे अनेक हैं और मन एक। श्रेष्ठ सारथी जैसे अनेकानेक अश्वों को एक रथ में जोत कर रासों के द्वारा उन पर नियंत्रित रख संचालन करता है, वैसा ही करना चाहिए। विविध इंद्रियां अपनी प्रकृति के अनुसार उछल कूद कर सकती हैं, लेकिन चतुर सारथी की भांति मन ही उन पर नियंत्रण करना जानता है। मन को पहचानना अपने को पहचानना है। ज्ञान, योग, उपासना, धर्म चारों साधन मन से ही है। इसीलिए प्राणियों का संचालन करने वाला अत्यंत वेगवान अजर हृदय में स्थित मन सदैव शुभ संकल्प रत रहे, यही कामना करनी चाहिए।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मन की महिमा विषय पर आलेख। आलेख था डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक का, वाचन था अंजू पांगती का।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है रविंद्र साठे का, संगीत है सतीश भाटिया का।

अयोध्या पुरी में श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी। ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। स्वर था रविंद्र साठे का, संगीत था सतीश भाटिया का।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में प्रयोग। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। पुराने फिल्मी गाने सुनेगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे श्रृंखला ब्रज की माटी तुहे प्रणाम। आज आप जानेंगे श्री राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन के बारे में। आलेख और प्रस्तुति सहयोग रश्मि शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता ओपी सिंह।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर। 9 बजे हिंदी वार्ता के अंतर्गत मुद्दे की बात का विषय होगा पोषण और स्वास्थ्य। वार्ताकार होंगी डॉक्टर रेणुका डेंग और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। आज का विषय होगा एंटीबायोटिक्स और पर्यावरण। आलेख और वाचन होगा श्रीमती नीलिमा शर्मा का।

सुबह 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम ब्रज दर्पण, जिसमें विशेष जानकारी के अंतर्गत जानिएगा जन्माष्टमी में होने वाले आयोजनों पर जानकारी। जानकारी देंगे गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी।

श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एवं गिरिराज जी सेवार्थ प्राचीन केशव देव मंदिर। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन 11 बजे प्रस्तुति रश्मि शर्मा की। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर होगा। आज के कलाकार होंगे डोरी लाल गोला। वनिता लोक कार्यक्रम दोपहर 1:15 पर। चर्चा के विषय होंगे महिला स्वास्थ्य और पोषण का महत्व। दूसरा विषय होगा एनीमिया मुक्त भारत। साथ ही सुनेगा प्रिया महेश्वरी से काव्य पाठ। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय होगा 2:30 पर। शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में बातें होंगी विश्व नारियल दिवस और नशे से दूर रहें स्वस्थ रहें इन विषयों पर। साथ ही सुनिएगा सफलता की कहानी टूटते सपने कहानीकार कल्पना सारस्वत। ब्रज साहित्य कार्यक्रम शाम 6:15 पर। ब्रज काव्य सुधा में कवि होंगे गोपाल प्रसाद गोप। शाम 6:50 पर फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो ब्रज ग्रामीण। विषय होगा बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। वार्ताकार और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अनुज कुमार प्रोफेसर वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा।

शाम सुहानी कार्यक्रम शाम 7:31 पर, रात 10:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें कलाकार होंगे विदुषी कावेरीकर का ख्याल गायना आप सुन पाएंगे, राग होगा भोपाली। तबले पर संगत करेंगे अब्दुल सलाम और सारंगी पर संगतकार होंगे श्री हरिबाबू कौशिक।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें विषय है नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में प्रयोग। वार्ताकार हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में उपयोग विषय पर चर्चा करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों को भी अब इस बात का एहसास होने लगा है कि रासायनिक कीटनाशक जरूरी नहीं है, क्योंकि भूमि विषैली हो चुकी है, भूजल प्रदूषित हो चुका है, पर्यावरण दूषित हो चुका है, लाखों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में डाल दिया गया है तथा हजारों खेतों व कृषि मजदूरों के प्राण। हरित क्रांति, जिसमें रसायनों के प्रयोग पर बहुत अधिक जोर दिया गया, रसायनों के उपयोग ने समस्याओं को खत्म करने की जगह पर ज्यादा बढ़ा दिया है। कीटनाशकों ने कीट की कई प्रजातियों में परिवर्तन लाकर उन्हें जटिल तथा अधिक खतरनाक बना दिया है। जैविक कृषि क्षेत्र में नीम का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। घरेलू कृषि रसायनों और पोषक तत्वों के रूप में नीम का प्रयोग होता आ रहा है, क्योंकि इसमें हानिकारक और जैविक रूप से अपघटित होने वाले तत्व मौजूद हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान से यह भी ज्ञात हुआ है कि नीम का सत कीड़ों की लगभग 400 प्रजातियों के लिए हानिकारक प्रभाव रखता है। रसायनों के प्रयोग से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में कृत्रिम रसायनों के प्रति प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाती है। इस दशा में नीम का प्रयोग प्रभावी जैविक रसायन के रूप में उपयोगी होता जा रहा है। नीम भारत का प्राचीनतम औषधीय वृक्ष है। सदियों से भारतीय किसान अपनी फसल और अनाज की सुरक्षा नीम की पत्ती और बीजों से करते आ रहे हैं। अभी भी ग्रामीण महिलाएं अनाज और ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा नीम की पत्तियों को सुखाकर उनकी एक परत नीचे बिछाकर करती हैं। नीम की पत्तियों, छाल एवं निवोली में जटिल

0: के पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं जो कि हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने में प्रभावी व सक्षम है। नीम कीट के जीवन पर अनेक तरह से प्रभाव डालता है। वह हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है, हानिकारक कीटों को फसल को खाने से रोक देता है, हानिकारक कीटों के अंडों को नष्ट करता है, फसल पर अंडे देने से रोकता है, हानिकारक कीटों की वृद्धि को प्रभावित करता है तथा हानिकारक कीटों के वयस्कों में प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। नीम के अनेक व्यावसायिक उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग करते समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इसमें नीम का सत कितने प्रतिशत है, उसी पर इसका प्रभाव निर्भर करता है। अब बात आती है इसके प्रयोग करने की विधि पर। नीम की निमोली का सत बनाने के लिए 6 महीने से ज्यादा पुराने बीजों को नहीं लेना चाहिए। बीजों को तोड़कर 500 ग्राम निमोली निकाल लेना चाहिए। इसके बाद इसको अच्छी तरह से कूटकर कपड़े की पोटली बांधकर 5 लीटर पानी में डुबो देना चाहिए। रात भर रहने के बाद इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर निचोड़ लेना चाहिए। इसके बाद इस पानी को 100 लीटर पानी में मिलाकर उसमें 1% सस्ता साबुन थोड़ी मात्रा में मिलाकर फसलों तथा सब्जियों में लगने वाले रोगों और कीटों पर छिड़काव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोली के अतिरिक्त नीम की पत्ती को भी कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम की पत्ती से सत बनाने के लिए 5 लीटर पानी में 1 किलो नीम की पत्तियों को डालकर पूरी रात छोड़ दें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में प्रयोग। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

सन 1950 में आई बावरे नैन फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और राजकुमारी के स्वरों में। गीत को लिखा था केदार शर्मा ने और धुन बनाई थी रोशन ने। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अनमोल घड़ी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना शमशाद बेगम और जोहराबाई अम्बाले वाली की आवाजों में। गीत को लिखा था तनवीर नकवी ने और धुन बनाई थी नौशाद अली ने। पुराने फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म आन में। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

बहू बेगम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई थी रोशन ने। इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर इस अभियान को जन भागीदारी से व्यापक बनाने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के MSME अवार्ड समारोह में लिया हिस्सा, कहा विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है MSME सेक्टर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का दिया आदेश। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेवा संकल्प अभियान की कार्ययोजना को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। यह अभियान प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके जरिए प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने की कोशिश होगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवा संकल्प अभियान को जन भागीदारी का व्यापक अभियान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के प्रभावी संचालन के लिए शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय और जनपद स्तर पर समन्वय की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित MSME अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि MSME विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है।

0: भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि एमएसएमईज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही नहीं होता है, बल्कि ऐसा भारत है जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कम्पिटिटिव, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी हो, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करे और अपनी स्ट्रेटेजिक तथा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में भी वह आत्मनिर्भर।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया।
2: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार सहित 5 राज्यों की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। साथ ही देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है।
4: चीनी के भंडारण की नई सीमा इसी महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। उधर प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली चुकी है, जिसे दिल्ली NCR, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में वितरित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। रेल मार्ग से प्याज की सुरक्षित आपूर्ति के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: हरियाणा के पलवल जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में मैनपुरी के लोगों की मृत्यु का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर कल

सुबह एक पिकअप सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए। यह लोग राजस्थान के खाटू श्याम बालाजी दर्शन के बाद मथुरा के वृंदावन आ रहे थे। रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।

0: जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर इस अभियान को जन भागीदारी से व्यापक बनाने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एमएसएमई अवार्ड समारोह में लिया हिस्सा। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है एमएसएमई सेक्टर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का दिया आदेश। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

भैया ब्रज भूमि वह पवित्र और दिव्य क्षेत्र है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल और किशोर अवस्था की लीलाएं की थी। ब्रजमंडल को गोलोक धाम को ही प्रत्यक्ष स्वरूप मानो जाए है, जहाँ स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण ने नंद नंदन के रूप में साकार रूप धारण कियो। ब्रज की मिट्टी अत्यंत पवित्र मानी जाए है, भक्त या को अपने मस्तक पे लगावे हैं और यहाँ के कणकण में श्री कृष्ण की लीलाओं का वास महसूस करे हैं। तो आओ भैयाओं, यह क्रम में आपको सुनवाए में ब्रज की माटी तू है प्रणाम श्रृंखला, जहाँ में आप जानेंगे श्री राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन के बारे में। प्रस्तुति सहयोग है रश्मि शर्मा को, प्रस्तुत करता है ओपी सिंह।

0: Ramadan ka ehsaas.
1: अब आरंभ हुए हैं आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओ, आज के ब्रज की माटी तोहे प्रणाम कार्यक्रम में हम आपको लिए चल रहे हैं श्री वृंदावन धाम, और आज जानकारी देंगे वृंदावन के सप्त देवालय में से एक श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के संदर्भ में। तो आओ चलें श्री वृंदावन धाम।

श्री राधा गोपीनाथ मंदिर अपनी ऐतिहासिक विशेषता के कारण विशेष प्रसिद्ध है। वृंदावन की पवित्र भूमि पे या मंदिर के निर्माण से लेकर मूर्ति तक की अपनी एक अलग ही कहानी है, जो भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र ऐसा मंदिर है जो देवभूमि भारत में तीन स्वरूपन में है। तो आओ माँ यमुना के तट पे बने भय दिव्य मंदिर की भव्यता से आपको अवगत करा में है। राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन के सप्त देवालयों में एक है और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी में से एक मधु पंडित जी के सानिध्य में या को निर्माण करायो गयो। यमुना किनारे केशी घाट के समीप ही लाल पत्थर को यह मंदिर श्री वृंदावन धाम की आध्यात्मिक उत्कर्ष की श्रृंखला को साक्षी है, जामे गोविंद देव मदन मोहन और जुगल किशोर मंदिर आमे हैं। इन सभी मंदिरन ने मुगल बादशाह औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति को कुठारघात अपने अस्तित्व पे सहन करो। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सम्मानित कछवाहा सरदार रायसेन ने यह मंदिर को निर्माण सन 1589 में करवायो। अंग्रेजी हुकूमत के समय मथुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे इतिहासकार F.S. ग्राउस ने लिखो है कि गोविंद देव गोपीनाथ मंदिर के निर्माण को काल लगभग समान ही रहे है। औरंगजेब के शासन काल में ठाकुर जी पहले कामवन और वाके बाद जयपुर में बिराजे, जहां आज भी राजसी सेवा अंगीकार कर रहे हैं। मंदिर के विषय में उल्लेख मिले हैं कि शांडिल्य ऋषि की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र वज्रराम ने देवशिल्पी विश्वकर्मा से यह को निर्माण करायो। गोपीनाथ जी की प्रतिमा को वक्षस्थल भगवान श्री कृष्ण के जैसो है। इन्हीं के द्वारा निर्मित गोविंद देव की मूर्ति को मुखारविंद और मदन मोहन जी के चरण बिल्कुल

0: श्री कृष्ण की प्रतिकृति है। कालांतर में यह मूर्ति गौड़ीय संत परमानंद भट्टाचार्य को वंशीवट के समीप यमुना तट पे प्राप्त भई। याकूब बिन ने सेवा के काजे अपने शिष्य मधु पंडित को दे दियो। मधु पंडित की प्रेरणा से गोपीनाथ मंदिर को निर्माण भयो और ठाकुर गोपीनाथ की सेवा पूजा आरंभ भई।
1: भगवान श्री कृष्ण के परपोते श्री बज्रनाथ जी ने द्वापर काल में 3 मंदिरों की स्थापना की है वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मंदिर। तो ये तीनों ही भगवान के स्वरूप जो है, इसमें भगवान का वक्षस्थल भाग है श्री गोपीनाथ। पद्म पुराण के पाताल खंड में ये उल्लेख आता है कि बज्रनाथ जी जब हरिवंश का प्राय समाप्त हो गया तो उत्तराजी के समीप पधारे और उन्होंने उत्तराजी के मुख से हरिकथा श्रवण करके 3 भगवान के स्वरूपों की स्थापना की। उसमें गोपीनाथ जी जो है भगवान का वक्षस्थल भाग है। कालांतर में ये कली के प्रभाव से लुप्त हुए और श्री मधु पंडित गोस्वामी महाराज ने आकर जो मंडली सखी के अवतार है 1527 में श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया। तो इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि वृंदावन जो है भगवान की जन्मय भूमि है, नित्य रास स्थली है। तो इसमें श्री गोपीनाथ जी का हम लोग दर्शन करेंगे तो हमारे यहाँ भगवान के मंदिरों में सामान्यतः भगवान के वाम पक्ष में अर्थात बाई ओर राजधानी पाई जाती है। हमारे यहाँ भगवान के दाहिने में राजधानी विराजती है और बाई तरफ है रेवती जी का अवतार नित्यानंद प्रभु की पत्नी चांदा। तो है गोपीनाथ जी की हमारी श्रृंखला जो है बड़ी लंबी है। तो इस ब्रज में गोपीनाथ जी आपके दर्शन आपको केवल वृंदावन में ही नहीं मिलेंगे, आपको राधाकुंड में मिलेंगे और कामदेव में मिलेंगे। तो ये तीनों प्रकार से इन 3 वृंदावनों की यहाँ पर जो है तीनों जगह उपस्थित है। तो यहाँ पर जानना माँ जो आई हैं राजधानी वगैरह लेके आई हैं और 1559-60 में ये गोपीनाथ जी में उन्होंने अपने प्राणों को विलीन किया है और इन्होंने राजधानी का स्थान प्राप्त किया है। इतनी प्राचीन इसकी व्यवस्था है और इसकी श्रृंखला बताते हैं कि वृंदावन से लेकर काबुल कंधार तक गोपीनाथ जी के मंदिर एक समय स्थापित हुए। जहाँ पर काबुल कंधार इसलिए क्योंकि इस मंदिर की उसका धन मिला ये शेखावत के उस समय अकबर के शासन में रायसेल शेखावत जिन्होंने शेखावत क्षेत्र वंश की इन्होंने नींव रखी वो गोपीनाथ जी के आश्रित थे, मधु पंडित जी के शिष्य। तो उन्होंने 1558-59 में काबुल कंधार का 56 में क्षमा कीजिए काबुल कंधार का युद्ध किया और गोपीनाथ जी कृपा से युद्ध को जीता और उसके से जो उनको युद्ध में रकम मिली, जो धन मिला, उससे उन्होंने उसको धर्म के काम में लगाया। इस समय यदि आप देखेंगे तो ये पूरा जो वृंदावन है इसके एक तिहाई वृंदावन के मालिक जो है श्री गोपीनाथ जी महाराज। तो रायसेल जी ने अपने इष्ट श्री गोपीनाथ जी को एक तिहाई वृंदावन भूमि क्रय करके गोपीनाथ जी को अर्पण कर दी और श्री मधु पंडित जी जो है वो स्वयं वर्तमान में वर्धमान जिला है उसके राजगुरु रहे और उनके ही बाद में काम्यवन में उनके ही शिष्य राजवंश के जो काम्यवन में गोपीनाथ जी मंदिर है उनके ही शिष्य जो राजपरिवार है उन्होंने काम्यवन का मंदिर स्थापित किया। तो गोपीनाथ जी की जो परिकाष्ठा है ये ऐतिहासिक है, पौराणिक है और वर्तमान में ये है कि क्योंकि प्रचार का युग है तो इसलिए बड़ी प्रचार का थोड़ा अभाव रहने की वजह से लोगों के इसकी पौराणिक महत्व का थोड़ा पता नहीं लगता है। तो इसलिए हमारे यहाँ आप लोग पधारे।
0: औरंगजेब के काल में जयपुर में स्थायी रूप से सेवित होवे के बाद 1821 में नवीन मंदिर में गोपीनाथ जी के प्रतिभू विग्रह की स्थापना करी गई। मंदिर परिसर में ही आचार्य मधु पंडित जी की दाई ओर समाधि भी स्थित है। ऐसा कहा जाए है कि मंदिर में विराजमान ठाकुर जी की मूर्ति बड़ी ही चमत्कारी है और मंदिर में आए वाले सभी भक्तन की मनोकामना को पूर्ण करने वाले।
1: आप लोग पधारे, अपनी धरोहर को देखें। ये ताजमहल से करीब 80 वर्ष पूर्व का बना है और बड़ा ही सूक्ष्म कारीगरी लाल पत्थर पे किया गया है। इसको ही बाद में जो प्रेरणा स्रोत बना जो दिल्ली का ताजमहल है या बोलिए आगरा का ताजमहल है कहीं न कहीं इससे प्रेरणा लेके ही बना। हमारे यहाँ वर्ष में गोपीनाथ जी के अनेक बड़े उत्सव होते हैं। उसमें सबसे पहला उत्सव होता है माघी पूर्णिमा जिसमें गोपीनाथ जी का प्रकट दिवस है, माघ पूर्णिमा को बोलते हैं। उसके बाद होली है और सबसे बड़ा हमारा यहाँ का जो पर्व है वो है

0: रावण सब जगह जो है एक दिन की भगवान का डोल सस्ता है या हिंडोले सस्ते हैं, यहाँ पे 13 दिन सस्ते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारा जो विश्व में बोला जाता है वो है कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर और गोपीनाथ जी चंद्रमा में यहाँ दर्शन देते हैं, महाराज को संपादित करते हैं। मैं अपनी वारी को विराम दूंगा गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र जो पुराणों में लिखा है उससे, श्रीमान रास रसारंभ ही वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ। श्री कृष्णदास कविराज जी ने इन गोविंद गोपीनाथ की महत्व इतना बताया है कि इस कलयुग में यदि आप लोग प्रेम भक्ति या कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं तो वृंदावन आइए, और वृंदावन में आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल 3 ठाकुर इनकी आप उपासना कीजिए, आराधना कीजिए, सेवा कीजिए, उससे आपको जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो चैतन्य चरितामृत से उद्धृत करके बोला जा रहा है कि जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, यही 3 ठाकुर कोरिया से गौड़िया के आत्मसार। अर्थात जो भी इस कलयुग में हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र करता है, श्री राधानी की उपासना करता है, उसके उपास्य ठाकुर गोविंद गोपीनाथ हैं, राधा गोपीनाथ जी महाराज।
1: गोपीनाथ मंदिर में वर्तमान समय में मुरलीधर भगवान की बांसुरी बजाते हुए अति सुंदर झांकी विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण अपने बाईं ओर अनंग मंजरी और दाहिनी ओर श्री राधा जी के संग खड़े हैं। ललिता और विशाखा दोनों तरफ बिनके संग खड़ी हैं।
2: जानो माता नित्यानंद स्वरूप का पुत्री जानो बा, उन्हें दापर युग में राधारानी का छोटा बहन अनंग मंजरी थे, राधारानी को बहुत सेवा किया था, इसलिए राधारानी प्रसन्न होकर बोला था कलि युग में स्थान तुमको दे देगा। तो उन्हें जब वृंदावन आया, इस समय तो वृंदावन में राधारानी का स्वरूप नहीं थे, उन्हें 3 राधारानी लेकर आया था, तो 3 ठाकुर को दिया गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। वही 3 ठाकुर दापर युग में कृष्ण जी अंतर्धान का बाद उनका प्रपुत्र बद्रीनाथ 3 ठाकुर निर्माण किया था, तो वही 3 ठाकुर को 3 राधारानी दिया था। तो जाने का कुछ दिन वृंदावन में था, सेवा किया था, तो जाने का समय जब प्रणाम करने गया जो हम घर में जा रहा है, तो गोपीनाथ बोले तुम कहाँ जाएगा, तुम तो अनंग मंजर मेरे साथ आ जाओ, आलिंगन करके ले लिया, उसमें विलीन हो गया। इस दिन से राधारानी उनका स्थान छोड़ के राइट साइड में आ गया। सभी मंदिर में राधारानी लेफ्ट साइड है, वो मंदिर में राधारानी राइट साइड में, इसलिए जानो माता को स्थान दिया राधा।
1: मोक्ष की कामना करवे वाले प्राणी और वृंदावन की पवित्रता की अनुभूति करवे के काजे तीर्थ यात्रियों को अपने जीवन में कम से कम एक बार ठाकुर गोपीनाथ मंदिर में भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जाकु वृंदावन के राधा गोपीनाथ मंदिर के रूप में जाना जाए है। वृंदावन के सबई कृष्ण मंदिर में श्री राधा गोपीनाथ मंदिर को अपनो एक अलग महत्व है, या की गिनती वृंदावन के सप्त देवालय में तो है ही, ब्रजधाम की पावन भूमि में यह एक ऐसा मंदिर है जो अपने अनोखे अतीत की गवाही दे

कृष्णा गोस्वामी सेवाई गोपीनाथ मंदिर वृंदावन। ब्रज में पांच चीजें हैं द्वापर की। सर्वप्रथम तीन देव, गोविंद देव उनका मुखारविंद, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और मदन मोहन जी के श्रीचरण। पद्म पुराण के अनुसार इन तीन विग्रहों को एक ही सूर्य में दर्शन करने से साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं और सर्वप्रथम जमुना मैया और गोपेश्वर महादेव। जब भी आप वृंदावन पधारें तो प्रयास करें कि इन तीन मंदिरों के एक साथ दर्शन करें, जिससे कि आपको साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन। इन तीन विग्रहों को बनाया था बज्रनाभ जी ने, जो कुंजलता देवी के परपोते थे। ये गोपीनाथ जी का मंदिर

0: 1527 में बनना शुरू हुआ था, 1525 में इसकी नींव रखी गई थी, 1527 तक ये, जो मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, 27 तक ये निर्माण कार्य हुआ। में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया, तीनों को ही तोड़ दिया, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी। पुनः इनकी इन मंदिरों का निर्माण नंद कुमार बोस ने 1670 के बाद बनाया। तो जहाँ जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, आप देखेंगे तीनों मंदिर एक ही डिजाइन से बने। इसलिए आप ये हमारे जो प्राचीन मंदिर जिनको औरंगजेब ने तोड़ा था, ये हिंदू वास्तुकला के प्रतीक थे। हमारे गोपीनाथ जी का जो मंदिर है वो टर्न्ड लोटस, उल्टा कमल बनाया हुआ है, इंटरलॉक सिस्टम पे बना हुआ है। आप जब आएंगे यहाँ देखेंगे, जिनको इस कला के बारे में पता है वो महसूस करेंगे कि इस उस वक्त कैसे बना था ये मंदिर, कैसे लोग थे और किस भावना से उन्होंने, किस प्रेम से उन्होंने इन मंदिरों को तराशा होगा, इतने लगन से ये पत्थर लाए गए होंगे, और क्या भाव है इन मंदिरों के साथ, ये उस जमाने के व्यक्ति बता सकते हैं यदि वो होते कि हमने अपने आराध्य देव गोपीनाथ जी महाराज, गोविंद देव जी के लिए, मदन मोहन जी के लिए हमने कितना प्रयास किया होगा, यदि वो उनमें से एक भी कोई साधु संत महात्मा जी की रहते हमारे इस गोपीनाथ जी के मंदिर प्राप्त किया, गोपीनाथ जी को प्राप्त किया श्री मधुपंडित देव गोस्वामी जी महाराज, उन्हीं के अनुसार उन्हीं की परंपरा से हम गोपीनाथ जी महाराज की सेवा करते हैं। हम लोग सब गौड़ी संप्रदाय के आचार्य हैं, और मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगी कि वृंदावन अवश्य पधारें, ये प्रेम की धरती, ये राधा रानी की स्थिति, यहाँ पे राधा रानी की जो लीलाएं करी हुई हैं उसका आनंद लीजिए और अपने परिवार को सुखी बनाइए। राधा गोपीनाथ जी महाराज की जय।
1: टील कृष्णदास कविराज लिखे हैं श्रीमन रस रसारंभि वाम शिव तत् स्थितो कर्मण वेणु स्वनेर गोपीर गोपी नाथो श्रीअस्तु नौ। भगवान गोपीनाथ की कृपा हो जो अपने बांसुरी के मधुर दुनंते गोपीन को मंत्रमुग्ध कर दे हैं, और वामसी में यमुना के तट पे मनमोहक रास नृत्य आरंभ है जाए है। वे हम पे कृपा करें, गोपीनाथ जी की दिव्य उपस्थिति आत्मा को झकझोर देवे वाले संगीत में, काई को भी शुद्ध परमानंद की स्थिति में ले जावे वाली शक्ति के समान है। आओ हम प्रार्थना करें, बिन की कृपा ते हमें ऐसे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम, जान रहे थे श्री राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन के बारे में। प्रस्तुति सहयोग तो रश्मि शर्मा को और प्रस्तुत करता थे ओपी सिंह। और भैया अब आपको सुनवा में यह लोकगीत।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में

0: केंद्र और राज्य को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक

0: 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
2: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गए हुए हैं।
1: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उप कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिंदुस्तान की

0: पर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्यौहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिंदुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikant and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Master Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
3: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
2: Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
2: Taking a swipe at his critics, he said some people within the country drowned in an atmosphere of despair are spreading the lies all around.
3: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने

0: And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Masters Super 750 in Shenzhen today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: किससे?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
6: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
6: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
6: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
6: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
6: तो पैसे गवाओगे,
8: RBI कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: FM 102.2 MHz पर आप हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र के साथ। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है, किसान भाइयों, आज बुधवार 2 सितंबर को शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज का विषय है बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा। बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग जैसे खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव की जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565, ये कोड नंबर है, फ़ोन नंबर है 2530135, इस पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर अनुज कुमार से। कार्यक्रम का समय होगा आज शाम 6:50 पर। सूचना समाप्त हुई और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया अमर प्रेम फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: देवदास फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना श्रेय घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में। गीत को लिखा था नुसरत बद्र ने और धुन बनाई थी इस्माइल दरबार ने।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन।

सुनिधि चौहान को अभी आप सुन रहे थे परिणीता फिल्म में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे और धुन बनाई थी शांतनु मोत्रा ने।

परदेश फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

ये अगला गीत आप सुन रहे हैं गदर एक प्रेम कथा फिल्म से, गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार ने। उत्तम सिंह का संगीत है, गीत है आनंद बख्शी का।

अभी आप सुन रहे थे गैंगस्टर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था अभिजीत भट्टाचार्य और सुनिधि चौहान ने। शब्द थे नीलेश मिश्रा के और संगीत था प्रीतम का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, सुबह के 9 बजे हैं और आइए अब आपको हिंदी वार्ता के अंतर्गत सुनवाते हैं मुद्दे की बात। विषय है पोषण और स्वास्थ्य। वार्ताकार हैं डॉक्टर रेणुका डेंग और इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: मुद्दे की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारी लायक नियामत के बराबर होता है और स्वस्थ रहने के लिए जीवन में हमें एक दिनचर्या, हमारा आहार विहार, हमारी जीवन शैली कैसी है, ये जो मुद्दे हैं बहुत मायने रखते हैं। अगर हम ठीक से रहना चाहते हैं, अगर अपने भोजन पर ध्यान देते हैं, अपनी जीवन शैली पर ध्यान देते हैं, तो फिर काफ़ी कुछ बात हमारी बन जाती है। एक अच्छी डाइट, एक अच्छा भोजन और एक अच्छी आहार जो जीवन में हो वो कैसे बन सकता है, उसको लेने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। और हमारे साथ हैं आज श्रीमती रेणु डेंग साहब जो डाइटिशियन है। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है जी। नमस्कार।
2: थैंक यू, शुक्रिया बहुत
1: जी। तो आजकल का जैसा जीवन शैली है, भागदौड़ का जीवन है, तनाव भरा जीवन है, हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त है और ऐसे में कई बार वो जो जीवन के लिए आवश्यक है, जो उसका भोजन है, उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाता और कई बार जब ध्यान देता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक तो देरी ना हो, हम थोड़ा सा अपने आप को देख करके चलें। तो एक आदमी की जो डाइट है, क्योंकि आप न्यूट्रिशियन हैं, आप उस चीज़ को देखती हैं, पढ़ती हैं, समझती हैं, लोगों को बताती हैं, काउंसलिंग करती हैं, तो उसमें एक डाइट जो है आदमी के लिए कितनी आवश्यक है और उसमें किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए, यहाँ से मैं चर्चा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए।
2: हाँ बिल्कुल, आपने पते की बात करी। जब तक अपना स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, मैंने देखा अक्सर लोगों में चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात पर आपने देखा खुंदक खा के बात करते हैं, मज़ा नहीं आता बात करने में। तो मैं उनको ज़रूर कहती हूँ कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, कहीं पे कोई आपको डेफिशिएंसी है, कोई न्यूट्रिशन आपका अब्सॉर्ब नहीं हो रहा। और भाग दौड़ की ठीक है, आपने ज़िंदगी में माताएं भी काम करने लग गई हैं आजकल, ठीक है वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, बट यू नो इन दैट केस हम अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं खुद बहुत व्यस्त रहती हूँ, व्यस्त महिलाओं पर, जब सुबह घर छोड़ती हूँ पूरे दिन का खाना प्लान करके ही छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, दूसरी तरफ कम हो जाना।
1: जी।
2: आपके पास पैसा आ गया, आपके पास नाम शोहरत आ गई, लेकिन आपकी सेहत गिर गई, तो मैं इस तरह के जीवन को कोई जीवन नहीं मानती। देयर हैज टू बी अ बैलेंस एवरीवेयर। मैं अक्सर अपनी टॉक्स में माताओं को ये बोलती हूँ, देखो आप जितना टाइम बचा रहे हैं किचन में घुसने से, आपने सुबह का आधा घंटा बचा लिया कि मैं किचन में नहीं जा रही हूँ, मुझे उतना ही टाइम आप डॉक्टर पे फिर एक घंटा बच्चे को लेके स्पेंड करेंगे,
1: तो कहीं मतलब
2: बैलेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं वो निकलता है। माएं सुबह चिप्स डाल रही हैं या जंक फूड या फ्रायम्स और ये और वो, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भी टीचर की जॉब है, मुझे भी 6:30 बजे निकलना है, या मेरी दूसरी जॉब है 8 बजे निकलना है, मैं बच्चे को कैसे नाश्ता बनाकर दूं या पति के लिए क्या बनाकर छोड़ूं, पति ने भी फ्रिज से 2 ब्रेड निकाली, बटर और चीज डाल के उसको खा के चले गए। तो देखिए कहीं पे आप गेन कर रहे हैं तो यू आर लूजिंग समवेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: तो कहीं प्लानिंग में, जैसे आपने कहा कि जीवन चूंकि निरंतरता है, चलते रहने वाला बात है, जिस शाम हम सोते हैं उसकी प्लानिंग अगर सुबह ही कर लें तो शायद कुछ व्यवहार में अच्छाई हो जाती है। तो आपने कहा कि सुबह की जो व्यस्तता है उस समय जब हम प्लान नहीं कर सकते, तो उसकी प्लानिंग अगर शाम को हो जाए तो हमको कुछ राहत मिल जाएगी। तो ये जो प्लानिंग वाली बात है, शाम को हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि जो सुबह जब बच्चा स्कूल जा रहा है, पति ऑफिस जा रहे होते, आपको खुद भी निकलना होता है और सबका टाइम एक ही होता है, तो जो शाम को आपको

0: वक्त देना है, आपको अपनी किचन में देखना है, आपको अपने फ्रिज में देखना है, नहीं है तो उसको ला के रखना है, तो वो कहाँ कहाँ प्लानिंग हो सकती है जिससे अपन आपका हमारा एक जो जो जिसको कहते हैं ना बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो एक संतुलित डाइट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का हमारे भोजन में होना समावेशी रूप में आवश्यक है?
1: मैं हमेशा बोलती हूँ जो लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। आपको अगर सक्सेसफुल होना, आपको हर स्फीयर में सक्सेसफुल होना, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ यू नो डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, आपको हर तरह से सक्सेसफुल होना है। एक फील्ड में सक्सेस, दूसरे फील्ड में अनसक्सेस, मैं उस इंसान को सक्सेसफुल नहीं मानती। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मैं आगरा से आती हूँ, रोज सुबह 10:30 पहुंच जाती हूँ, तो आप देखिए रात को ही किचन में गई, देखा कौन कौन सा फ्रूट है, कौन सा मुझे लेके जाना है, कौन सा मेरे हस्बैंड को लेके जाना है, बच्चों के लिए मैं क्या छोड़ के जा रही हूँ, अपनी मेड को इंस्ट्रक्शंस दी कि सुबह मैं तो उठ के अपना जल्दी निकलूंगी, तो अब देखिए आप मेरा अगर बैग चेक करेंगे गाड़ी में, उसमें एक ऑरेंज जूस का पूरा मेरा जार है, थोड़ा पपीता भी मैंने एक छोटी सी डिब्बी में रखा हुआ है, और उसके बाद क्योंकि मुझे पता है मेरी ओपीडी है, मैं 4 बजे खाली होंगी, तो मैंने उसके अंदर एक सैंडविच रख लिया, लेकिन सैंडविच के अंदर भी मैं खीरे टमाटर डाल के लाई, मैंने कुछ जंक नहीं डाला, ताज़ा खीरा मेरे अंदर जाएगा। खीरे में बहुत एंटासिड्स होते हैं, आप मानेंगे कि खीरा, अगर आप पूरे दिन 2-4 खीरे खा लेंगे तो कभी आपको एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी, मतलब एक छोटी सी बात है, रॉ फूड्स टमाटर है, तो मैंने सोचा कि पूरा दिन मेरा लॉन्ग गैप हो जाएगा, तो मैं अपना सैंडविच आज खीरे टमाटर का लेकर चलती हूँ, और चलते चलते मेरी मेड ने मेरे को बोला मैडम नींबू पानी भी ले जाइए, क्योंकि आपको पता है कि एसिडिटी या लॉन्ग गैप्स अगर होते हैं, जैसे 1-2 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा नींबू पानी पी के 15 मिनट पेट को देके फिर कुछ खाइए, आपको भूख लग रही है, सुबह से आप भूखे आपने खाना डाल लिया, फटाफट 4 परांठे डाले,
0: जी,
1: वो नहीं करना है। स्मॉल स्मॉल गैप्स के लिए अपनी तैयारी करके घर से निकले, अपने घर वालों के लिए तैयारी करके जाएं कि मेरे हस्बैंड जाएंगे नाश्ते में ये वाली चीज खानी, जरूरी नहीं आप बना रहे हैं, आपके पास हेल्प है, आजकल सबके पास हेल्प होती है, किसके पास नहीं,
0: जो सुविधा है, जो साधन है उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग उसके लिए बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं कि जब हमको भूख लगे और तब हम देखें कि भाई अब हमें क्या है, जो मिला वो खा लिया,
1: तो फिर गलत ही खाएंगे,
0: फिर हम ये नहीं कह सकते कि व्यस्त है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास जो उपलब्ध है वही तो खा सकते हैं। तो आपने जो कहा कि प्लानिंग बहुत आवश्यक है,
1: देखिए ब्रेन में एक ऑर्गन होता है एपिस्टैट, वो आपकी न्यूट्रिशन नापता है, ठीक है, अगर आपने आज एक बर्गर खाया, बर्गर के अंदर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिला, कैलोरीज मिली पर न्यूट्रिशन नहीं मिला आपको, तो उस एपिस्टैट जो है वो हंग्री रहेगा, तो वो बार बार थोड़ी देर में फिर खाना मांगेगा। अब आप मेरी बात नोट करिएगा, जिस दिन आप जंक खाएंगे, जैसे आपने शुरुआत ही जंक फूड से करी, जिस दिन आपने बर्गर पिज्जा टाइप का जंक फूड खा लिया, आप देखिए आपको थोड़ी देर में फिर भूख लग जाएगी, लेकिन आप जिस दिन आप अपना कन्वेंशनल मील करेंगे, दाल चावल सब्जी सलाद, उस दिन देखिएगा आपको 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपके जो ब्रेन को न्यूट्रिशन मिल गया, आपका ब्रेन को एक सेटिस्फैक्शन मिल गया कि मेरे पास उतना खाना आ गया है जितनी मुझे आवश्यकता है, लेकिन जंक में वो मिला ही नहीं, तो हर घंटे बाद फिर बोलते ना बच्चे को, अभी तो देखो ये खाने को दिया था, इसको बहुत भूख लगती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा।
0: यानी जो माँ के बनाए और घर के बनाए खाने से जो तृप्ति मिलती है, जिसको आप कह रही है कि जो एक अंदर वो चलता रहता है, खा तो हमने लिया, पेट भर लिया, लेकिन उसको जो तृप्ति नहीं हुई मन की, इसीलिए वो कहीं ना कहीं बार बार खा के उसको ढूंढना चाहता है, करना चाहता है, और इसमें हमारा उल्टा नुकसान होता जाता है। तो जो बेसिक न्यूट्रिशन की मैं बात थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक तात्विक रूप में, क्योंकि आम आदमी ये नहीं समझ पाता कि एक बैलेंस डाइट का, एक संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए, वो जो हमारा परंपरागत भोजन है वह खाते, लेकिन आज के उसमें कुछ चीज़ें और भी एडिशन के तौर पर मांगते, तो एक जो न्यूट्रिशन वाली बात है वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को आवश्यक है और उनकी सामान्य आपूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपने कहा हीरा है, फल है, समसामयिक जो चीज़ें हैं, आप दाल चावल रोटी हम खाते हैं, दही खाते हैं, दूध लेते हैं, तो क्या इन सबसे वो चीज़ पूरी हो जाती है, और नहीं हो जाती तो किन किन चीज़ों को हमको अपने उस खाने में और डालना चाहिए इसमें?
1: देखिए भगवान की बनाई बहुत बड़ी सृष्टि है, जिसके अंदर जानवर हैं, पेड़ हैं, लिविंग पानी के एनिमल्स हैं, हर तरह की सृष्टि में लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग एक हमारी ह्यूमन बीइंग्स ऐसी स्पीशीज है जो लालची है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, फिर माँ अगर बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती है, वो कहती है आ जाइए भैंस जी, अब आप मेरे बच्चे को फीड करिए।
0: जी जी जी
1: लेकिन अगर आप वैसे सृष्टि में देखेंगे, गाय और भैंस बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो बच्चा छोड़ के अपनी घास पर आ जाता है, गेहूं पर आ जाता है। तो हमें लालच नहीं करना है, सृष्टि के हिसाब से चलना है। मैं तो कहती हूँ जितना क्लोज

0: जाएंगे आप नेचर कुदरत के, उतना आप सेहत पाएंगे। हमें ज्यादा दिमाग दड़ाना ही नहीं ना, हम तो इतने अच्छी कंट्री में रहते हैं। देखिए मैं अब्रॉड गई,
1: जी
0: वहां पे बहुत ठंड थी, मुझे पता ही नहीं वेदर ठंड में कौन सा मुझे फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि वहां तो 50 फ्रूट पड़े हैं। लेकिन मैं इंडिया में होती हूँ, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, अब फल से आ गए,
1: हर ऋतु का अपना एक फल और
0: अपना आ
1: सब्जी
0: जाता
1: है
0: है।
1: जी।
0: आप तो देखिए, हमारा इंडियंस का बहुत, जैसे वेदास में या जैन में फूड स्टडी करी थी, जैन्स भी देखिए कितनी पुरानी साइंस है, 7 बजे के बाद वो खाना नहीं खाते, जमीन की चीज नहीं खाते, आलू वगैरह, क्योंकि वो कहते हैं उसके अंदर से पूरा फल निकला है फिर हम खाएंगे, जमीन के अंदर मतलब उसको अभी उगना है।
1: उगना है जी।
0: आप देखिए हमारे तो इतना रिच हेरिटेज और इतना रिच कल्चर है, मैं तो सिर्फ वही पढ़ती रहती हूँ, मैं हर जैनिज्म उठा लेती हूँ, हिंदुज्म उठा लेती हूँ, मैं देखती हूँ कैसे व्रत करते थे हमारे ऋषि मुनि, क्या उसका साइंटिफिक रीजन था। ये चीजें फॉरेन कंट्रीज में नहीं है, हम अपनी तरफ से हटकर, अपने इंडियन जो हमको इंडियन साइंस ने दिया, हटके हम बाहर से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं उन्होंने ये रिसर्च में ये बोला है, आप अपनी रिसर्च पे
1: जी
0: जाइए,
1: जी
0: पीछे
1: जी
0: जाइए, आपको कुदरत दे रहा है, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तरबूज आया गर्मी में, देखिए जो भी कुदरत की चीज होती है उसे जीने का हक होता है, आज तरबूज फूटा है उसको जीने का हक है, लेकिन वो तपती रेत में पड़ा है, अब तपती रेत में आप कोई भी फल डालेंगे वो मर जाएगा, तो आप बताइए तरबूज कैसे अपने आप को बचाता है,
1: सर्वाइव कर
0: वो
1: रहा है।
0: इतना पानी बना लेता है अपने अंदर, इतनी थिक स्किन बना लेता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उसको हमने रेत में डाल
1: जी
0: दिया।
1: जी
0: अगर
1: जी
0: वो ही तरबूज हम खा लेंगे तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या हम नहीं बच पाएंगे इस गर्मी की लू से?
1: बिल्कुल सही कह रही है। तो
0: बच
1: इसका
0: पाए,
1: मतलब जो नेचर दे रही है वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए
0: बिल्कुल
1: दे रही है,
0: बिल्कुल
1: मौसम के हिसाब से दे। शायद इसमें कहीं ये हुआ कि हमने अपनी चीज़ों को उतनी तवज्जो नहीं दी, उनकी जानकारी हमने नहीं रखी, और एक जो व्यवहार में पहले लोगों ने डाला था, चाहे उसको अंधविश्वास मान के छोड़ दिया हमने, चाहे व्रत के पीछे का साइंस हो, चाहे खान पान के पीछे का साइंस हो। इसीलिए हमारे यहाँ तो जो पूरा आयुर्वेद है वो आहार विहार को भी एक वही मान करके चलता है। तो कहीं इसमें थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है उसमें।
0: बिल्कुल, हम चकाचौंध की दुनिया में खो गए, हम एड वर्ल्ड में खो गए, हमारी गलती नहीं है, जो हमें दिखाया जाता है हम उसी को मान लेते हैं, और ऐसे ढंग से दिखाया जाता है कि मैं नहीं कहती वो कुछ गलत है या कुछ उसमें गड़बड़ है, लेकिन जितना हम नेचर के साथ रहेंगे, जितना हम कुदरत के साथ रहेंगे, उतने ही हम हेल्दी रहेंगे।
1: जी। तो ये तो बात आपने कही कि नेचर से हमें सामंजस्य बिठाना है, परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना, जो जैसी ऋतु है, जो जैसा कल्चर है, उसके हिसाब से ही आहार विहार अपना निश्चित करना है। थोड़ा सा मैं लौट के फिर वहीं आऊँगा कि हेल्दी बनाना है हमें अपने खाने को, हमें अपने खाने को संतुलित बनाना है। तो मेरे घर में जो है, अब ज़रूरी नहीं कि अगर कोई मट्ठे से मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रखी है, वो मेरे पास से फरात है, तो उसके लिए मैं कहीं जूस और वो ले रहा हूँ। तो एक सामान्य आदमी की जो सोच है कि भाई बाज़ार से जाएं, कुछ खरीद के लाएं, तब हम स्वस्थ रहने लायक एक अच्छा खाना बना सकते हैं। तो मैं वो टिप्स आपसे ये जानना चाहूँगा रखने वाली बात।
0: बिल्कुल आपने ठीक कहा, बस मैं ये इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे ही आप मार्केट में निकलें, आप कुदरत की चीज देखें कि अरे
1: जी
0: वाह फालसा आ गया, फालसा खाइए, फालसे का शरबत पीजिए, अंबी आ गई देखिए, अंबी का पन्ना लीजिए, बेल आ गया, बेल का शरबत लीजिए, नींबू बढ़िया मिल रहा है, पूरे दिन नींबू पानी पीजिए, देखिए आपको कितनी ग्लोरियस हेल्थ मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आंवले का मुरब्बा इस टाइम खाऊं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये
1: जी
0: वक्त आंवला खाने, वक्त था जनवरी फरवरी जब पेड़
1: हाँ
0: लद गए थे आंवले से,
1: जी
0: हमने खूब आंवला, वाइटामिन सी हमने अपनी बॉडी के अंदर चुकंदर के साथ जूस बना के पंप कर लिया, बट दिस इज द टाइम टू हैव फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। कुदरत ने अपने आप लौकी भेज दी, तोरई भेज दी, तो जो कुदरत आपको घंटी दे रही है, जो आप देखे नई चीज मौसम के हिसाब से आई है, अगेन आई वुड से वी आर ब्लेस्ड टू बी लिविंग इन अ कंट्री विच हैड अ वेरी वेरी ग्लोरियस पास्ट। और
1: जी
0: पुराने अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछिए कैसे मौसम में आप कैसे सत्तू लेते थे, क्यों लेते थे, तो आपको मटके का पानी क्यों पीते थे। तो यू मेरा प्रॉमिस है आपसे, आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल हेल्थ मिलेगी।
1: निश्चित तौर पर श्रोता बंधुओं, आज हमारे साथ थी श्रीमती रेणुका डेंग साहब डल में, और जानकारी जो दे रही थी बहुत लंबा विषय हो सकता है, लेकिन बात जो निकल के आई वो यही है कि हम सौभाग्यशाली हैं उस देश में जहाँ की संस्कृति, जहाँ की पद्धति, जहाँ के रहन-सहन का एक एक जीवंत तो उदाहरण है। तो उसी में से हमें देखना है जिन चीज़ों को हम भूल चुके हैं, जिन चीज़ों को हम छोड़ चुके हैं, जिनको हम आज एक अंधविश्वास मान करके छोड़ चुके हैं, पुनः हमें उन्हीं दादी नानी के नुस्खों में जाना पड़ेगा, उन्हीं रसोई में जाना पड़ेगा, वहीं से कुछ उठाना पड़ेगा। मैडम आप आई और जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए इस बात पर कि हमारा जो पोषण है वही हमारा स्वास्थ्य है, और जो हमारा स्वास्थ्य है वही हमारा

0: पोषण। श्रोता बंधु, अगली बार किसी मुद्दे की बात में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैडम आपका धन्यवाद।
1: हिंदी वार्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुद्दे की बात, विषय था पोषण और स्वास्थ्य। वार्ताकार थी डॉक्टर रेणु डेंग और इनसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश शर्मा का।
1: देवरिया में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत मिड डे मील रसोइयों के सम्मान एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर लखनऊ में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह के आयोजन का लाइव प्रसारण जिला मुख्यालय समेत जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर किया गया। इस दौरान कैशलेस चिकित्सा कार्ड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित सम्मान समारोह में सदर विधायक डॉ सोनम मणि त्रिपाठी ने कहा कि रक्षाबंधन के ठीक पहले मुख्यमंत्री द्वारा महिला रसोइयों की रिचार्ज घोषणाएं की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर में काफी बदलाव आएगा। कैशलेस चिकित्सा कार्ड की सुविधा से उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पथरदेवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री श्री प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा और पोषण व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी महिला रसोइयों, शिक्षा मित्रों एवं शिक्षकों को सम्मान देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शिक्षकों एवं कार्मिकों के कल्याण के लिए भी लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सलेमपुर में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें रसोइयों के सम्मान, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में उचित दर विक्रेताओं के लाभांश वृद्धि की घोषणा से संबंधित मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सदर सांसद ससाग मणि त्रिपाठी ने कहा कि लाभांश में वृद्धि से उचित दर विक्रेताओं का सम्मान बढ़ा है, यह निर्णय उनके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। जिले में दिव्यांगजनों के लिए सेवा संस्कार एवं सम्मान की भावना के साथ जिले के सभी तहसीलों में कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में दिव्यांगजनों को विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही पात्र दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। विकास की मुख्य धारा में जिले को जोड़ने के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से क्रियान्वयन कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। NSPWD, RED तथा सेतु निगम से निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का भी जिलाधिकारी ने समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए हर हाल में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जिले में बाढ़ का प्रभाव अभी नहीं है। जिले में बह रही घाघरा, राप्ती नदी तथा गोर्रा नदी का पानी खतरे के निशान के नीचे बह रही है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामशंकर ने बताया कि
2: हमारे जनपद में अभी किसी भी ग्राम में घाघरा नदी का पानी नहीं घुसा है। राप्ती और गुर्रा नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 2.5 से 3 मीटर नीचे बह रही है, इसलिए वहां अभी कोई खतरा नहीं है और प्रशासन इसमें अपनी सतर्क दृष्टि बनाए हुए है।
1: जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी लेते हुए कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी व गुणवत्तापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने जिले में मातृ एवं शिशु दर में कमी

0: ने पर विशेष जोर दिया। मरीजों को स्वास्थ्य सेवा बेहतर उपलब्ध कराने के लिए सदर सांसद शशांक मोहन त्रिपाठी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर ट्रामा सेंटर में उपलब्ध सुविधाएं, साफ सफाई, मरीजों के उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए मरीजों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे जनपद में विभिन्न जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। यात्रा के दौरान वंदे मातरम के नारे गूंजे। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्त के नारों के साथ निकली तिरंगा यात्रा में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के समापन के दौरान राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और देश की एकता अखंडता के प्रति संकल्प को दोहराया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूलों में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जिले के नगर पंचायत बरियारपुर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अंश सुधार एवं अंश निर्धारण, नाम त्रुटि सुधार, वरासत, फार्मर रजिस्ट्री तथा मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। रामपुर कारखाना विधानसभा के विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लाभार्थियों से उसका लाभ उठाने की अपील की। विधायक द्वारा संबंधित किसानों में खतौनी वितरण के साथ विभिन्न योजनाओं से संबंधित पात्र लाभार्थियों में प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मेरा रेशम मेरा अभियान 2 के तहत जिले के हरपुर निजाम में रेशम उत्पादन से 20 संक्रमण एवं स्वच्छता प्रौद्योगिकी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को रेशम उद्योग से जोड़ने के साथ साथ रेशम कीट पालन में स्वच्छता एवं 20 संक्रमण के वैज्ञानिक उपायों के प्रति जागरूक किया गया।
1: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण का।
2: गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखपुर महानगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हाथ में तिरंगा लेकर पद यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री का साथ देने के लिए हजारों कदम उसी दिशा में बढ़ चले। यात्रा का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री ने उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिक अपने घर पर राष्ट्रध्वज को सम्मान पूर्वक लगा सकें। इसी का परिणाम है कि आज देश का हर नागरिक भारत के आन बान शान के रूप में तिरंगे को अपने घर पर लगाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि
3: भारत के आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का ध्वज लेकर के देश की आजादी को एक नई गति दी थी।
2: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में नाग पंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। खेल के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सांसद और विधायक खेल कूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग के माध्यम से नई नई प्रतियोगिताएं आगे बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि अभी कॉमनवेल्थ में भारत के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के खिलाड़ी 4थे स्थान पर रहे, देश के लिए मेडल जीते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल नीति लाकर यह व्यवस्था बनाई है कि जो भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतेगा उसको सीधे सरकारी नौकरी देंगे। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर प्रदेश पुलिस में डिप्टी SP तक का पद खिलाड़ियों को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत शीघ्र अगले महीने के अंदर फिर से 500 पदक विजेता खिलाड़ियों को यूपी पुलिस और अन्य विभागों में नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के जो खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं उनको 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और ब्रांज मेडल जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए यूपी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ओलंपिक में प्रतिभाग करने पर 10 लाख और कॉमनवेल्थ और एशियाड में 5-5 लाख की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खेल की संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ समाज को जुड़ना होगा, स्वयं सेवी संगठनों को जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि निजी एकेडमी कोई चलाएगा तो सरकार उसको सहायता प्रदान करेगी क्योंकि वह युवाओं को तराशने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के जिस भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग

0: करेगा राज्य सरकार की खेल नीति उसमें सहयोग करने की है। उन्होंने गाजीपुर की खेल संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि ओलंपिक में देश के लिए मेडल प्राप्त करने वाले दो खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल गाजीपुर के ही एक निजी स्टेडियम से ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
1: पुराने खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, पुराने उस्ताद हैं, ये कोचेज हैं, इन्होंने अपने जीवन को तपाया है, खपाया है, अलग विषय है और उनके समय में संसाधन नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था, अन्यथा उनको भी प्रोत्साहन और संसाधन मिलता, वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम आगे कर सकते थे।
0: गोरखपुर जिले में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर धागा बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की और भाई से अपनी रक्षा का वचन लिया। इसके साथ ही सावन मास का समापन भी हो गया। सावन मास के दौरान विभिन्न शिव मंदिरों में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का बड़े ही आस्था भाव के साथ जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, विषय है एंटीबायोटिक्स और पर्यावरण। आलेख और वाचन है श्रीमती नीलिमा शर्मा का।

बीमार होने पर जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो वह हमें बीमारी की दवा के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करने अथवा खत्म करने के लिए ही बनाया गया रसायन है। तभी तो डॉक्टर कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स लेना चाहिए। सबसे पहला एंटीबायोटिक 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन, जिसे बुखार में उपयोग में लाया जाता है। यह पहला रसायन पदार्थ था जिसमें एंटीबायोटिक के गुण पाए गए थे। एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ट्यूबरक्लोसिस में हुआ। टीबी के मरीजों में इसका बहुत फायदा हुआ और वह इससे ठीक भी हुए। इसका उपयोग टीकाकरण में भी होता है। जो टीके अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए लगाते हैं, उनमें जो दवा या रसायन होता है वह एंटीबायोटिक ही है। साधारण भाषा में यह कहा जा सकता है कि बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने अथवा उसकी वृद्धि को कम करने के लिए एंटीबायोटिक का आविष्कार किया गया था, ताकि जीवों को जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। एंटीबायोटिक का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाना चाहिए, लेकिन आज कुछ डॉक्टर बिना सोचे समझे इनका प्रयोग बीमारियों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। मरीजों को इनका ओवरडोज दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मरीज और खराब हालत में पहुंच जाता है या अपनी जान से ही हाथ धो बैठता है। आज बढ़ते समय के साथ साथ ऐसे एंटीबायोटिक बन गए हैं जिनका प्रयोग जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने में और जानवरों में जेनेटिक ऑर्डर ठीक करने में होने लगा है। मानव अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के चलते और अपनी इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के चक्कर में इन एंटीबायोटिक्स का प्रयोग असीमित मात्रा में करने लगा है। बहुत से डॉक्टर किसान और जानवरों के डॉक्टर इनका प्रयोग करने के लिए कह देते हैं, लेकिन इनमें यह एक गलतफहमी है कि एंटीबायोटिक अपने आप ही एक समय सीमा के बाद नष्ट हो जाते हैं। यह केवल एक भ्रम ही है। वास्तविकता तो यह है कि यह एंटीबायोटिक अपना असर बहुत ही ज्यादा समय बाद और बहुत ज्यादा मुश्किलों से छोड़ते हैं, इसलिए इनको पर्यावरण में डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है। अब लोग इनका प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ने के कारण यह पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये एंटीबायोटिक पानी में जाकर उसे इस हद तक दूषित कर देते हैं कि उनमें जलीय जंतुओं का रहना असंभव हो जाता है, क्योंकि इनकी उपस्थिति के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। एंटीबायोटिक की बनावट बहुत ही कठोर होती है, जिसके कारण पानी अपनी

स्वयं शुद्धिकरण की प्रक्रिया तक खो देता है। और सबसे बड़ी हानि इससे यह होती है कि अनजाने में ही जब हम वह पानी पीते हैं तो उससे खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज। यह जमीन में जाकर जमीन के नीचे भूजल को भी प्रदूषित करते हैं। यह जल को तो प्रदूषित करते ही हैं, जमीन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब किसान इन एंटीबायोटिक्स और वृद्धि नियामक

0: शरीर की रेजिस्टेंस को तो बढ़ाते हैं, शरीर के अंदर की बीमारी के कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? यह एंटीबायोटिक सामान्य सर्दी जुखाम और वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करते, किसी वायरस के ऊपर भी यह असरकारी नहीं है। फिर भी हमें सामान्य जुखाम में एंटीबायोटिक दे दिए जाते हैं और हम उन्हें डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं। इसलिए अब हम सबको जरूरत है कि हम इनका उपयोग सही मात्रा में अथवा कम मात्रा में करें। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार किसी भी चीज की अति केवल जहर ही साबित होती है। इसलिए पर्यावरणविदों के अनुसार जितना हो सके हमें प्राकृतिक खाद व प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे शरीर व पर्यावरण दोनों स्वस्थ रह सकें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था एंटीबायोटिक्स और पर्यावरण। आलेख और वाचन था श्रीमती नीलिमा शर्मा का। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति है सुरभि शर्मा की और संयोजन है OP सिंह का।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं आप बड़ी बेसब्री से इंतजार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी। श्रोताओ, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमारे समीप आता जा रहा है। संपूर्ण ब्रज ही नहीं, संपूर्ण देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव को लेकर अति उत्साहित है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके किसी भी जीवन के पड़ाव को देख लीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा ही मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश तो उन्होंने अर्जुन जी को दिया था, वो हर व्यक्ति के जीवन में इतना मायने रखता है कि अगर वो उसका पालन करे तो निसंदेह उसके जीवन से सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएं। भगवत गीता का श्लोक है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भर्म ते संगोस्व कर्मणि। अर्थात कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे अपना कर्म पूरे मनोयोग से करना चाहिए। अगर आप ये सोचकर कार्य करेंगे ऐसा होगा कि वैसा होगा, आपको कितना नफा नुकसान होगा, तो आप पूरे मनोयोग से अपना परिश्रम, अपना कर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं कि आप अच्छा बुरा सोचने लगते हैं, ऐसा कार्य करने से वैसा होगा या ऐसा होगा, कहीं ना कहीं आपके मन में दृढ़ विश्वास में कमी आ जाती है। अगर आप पूरे मनोयोग से अपनी ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे तो निसंदेह फल की चिंता किए बिना कर्म करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आप उनसे बहुत जल्दी पार पा जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति का कर्म है कर्म करना।

0: श्रोताओं, हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, उनका प्राकट्योत्सव समीप आ रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान में इसको लेकर सभी बड़े ही उत्साहित हैं। कई तरह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, इसी विषय में हमने बातचीत करी। हमारे साथ हैं
1: गोपेश्वर चतुर्वेदी, यहाँ कृष्णनवमी ट्रस्ट में व्यवस्था में हूँ।
0: ये बताइए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है?
1: ऐसा है कि चूंकि पूरे विश्वभर के कृष्ण भक्त श्री कृष्णनवमी पर आयोजित कार्यक्रमों का दर्शन या श्रवण करके अपना पुण्यार्जन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उसी भव्यता दिव्यता से यहाँ सभी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जन्माष्टमी चूंकि हमारी अब 4 सितंबर को मनाई जानी है, उसको सबसे पहले जो शुभारंभ होगा वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पधारेंगे, और जो उनका कार्यक्रम उसमें सबसे पहले गौ पूजन करेंगे।
0: क्या ये प्रातः वेला से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी?
1: नहीं, प्रातकाल तो जो है जो हमारा पंचायत अभिषेक वगैरह होंगे, निमित्त भजन कीर्तन ये सब चालू होंगे, लेकिन मुख्य जो पर्व जिसका जो है शुभारंभ मानते हैं आप, तो शुभारंभ में जैसे आपके माननीय योगी जी पधारेंगे, सबसे पहले गौ पूजन और गोदान करेंगे यहाँ।
0: कितने बजे?
1: ये 9:55 का कार्यक्रम है उनका, और
0: रात्रि वेला में
1: नहीं, सुबह।
0: अच्छा, सुबह
1: 9:55 तो उनका आगमन है, और उसके बाद लगभग 40 मिनट वो जसवंतान परिसर में यहाँ रहेंगे। गौ पूजन के बाद में जैसे परंपरा है वो केशवदेव जी मंदिर वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद योग माया जी में पूजा करेंगे, फिर घर घर पधारेंगे, और उसके बाद में जो मुख्य हमारा जहाँ आयोजन होता है श्रीमद भागवत भवन में, वहाँ श्री राधा कृष्ण का पूजन करेंगे, आरती करेंगे, पुष्पार्चन करेंगे, और संकल्प के साथ में वह इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और संकल्प का आपके जो विषय रहेगा मुख्य रूप से वह रहेगा गोरक्षा राष्ट्र रक्षा, इसलिए शुभारंभ भी गौ पूजन और गोदान से हो रहा है।
0: आपने संकल्प शब्द पर ज्यादा ध्यान दिया, जोर दिया, ऐसा क्यों?
1: नहीं, वो संकल्प आपके देखिए कि पूरे भारतवर्ष में गो सम्मान आह्वान अभियान चला हुआ है। वैसे बड़ा कहना दुखद है कि अपेक्षा थी कि जब देश आजाद होगा तो जो है संपूर्ण भारतवर्ष में गोवंश की हत्या बंद हो जाएगी। गांधी जी बराबर आजादी की लड़ाई में जगजी आंदोलनों में ये घोषणा करते थे, तो एक संतोने का आह्वान चलाया है इस समय पूरे भारतवर्ष में, और यही मांगे गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, क्यों हमारी संस्कृति का आधार जो है मथुरा गोपाल की जन्मभूमि है। भगवान के 24 अवतारों में भगवान ने गोपाल के रूप में जन्म यहीं लिया है, गोचारण किया है, गौ की पूजा की है, इसलिए यहाँ इसका विशेष महत्व है। इस बात को लेकर के तो माननीय योगी जी वैसे ही बड़े परम भक्त हैं, आप देखते हैं कि और प्रांतों अपेक्षा उत्तर से बड़ी शक्ति से गोवंश का संरक्षण हो रहा है, गोवंश के निर्यात पर पाबंदी है, गोवंश हत्या का अक्षरशः पालन कराया जा रहा है बंद करने का, और जगह जगह गौशालाएँ खुलवा करके जो निश्चित रूप से जो दुखद है कि लोग लावारिस गऊ छोड़ देते हैं, उनको भी जगह जगह गौशाला खुलवा करके गोरक्षण उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर कराया जा रहा है। लगभग 15-16 लाख गऊ जो है आज उत्तर प्रदेश की सरकारी गौशालाओं में है, तो उस भावना से चूंकि सबसे इसमें अग्रणी भूमिका माननीय योगी भारतवर्ष निभा रहे हैं, और वो उनका गौ प्रेम और गोभक्ति सर्वत है, इसलिए गौ पूजन के साथ में और संकल्प भी यही है कि गौ की रक्षा होगी। तो गौ एक केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, यदि गौ आधारित खेस कैसी होगी ये बात यूट्यूब के और सब जानते हैं कि गौ दुग्ध की महिमा पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, कि वैज्ञानिक मान रहे हैं जो विशेषता गौ दुग्ध में और गौमूत्र में वो और किसी जो है में नहीं है। तो उस दृष्टि से भी कि हमारे पूर्वजों ने कितनी शोध की होंगी उस दृष्टि से, धार्मिक बात तो है ही है कि गौ माता में सब देवता का निवास माना गया है पहले से ही, और जन्म से लेके मृत्यु तक पालन उसके बाद हम लोग मानते हैं कि बैतरणी पार गौ माता ही कराती है, तो वो हमारा विषय है वो है। उसके अलावा भी जीव माता का कल्याण करती है, और वैज्ञानिक दृष्टि से जो चिकित्सीय खोज हो रही हैं उसमें उनके

0: दूध और गोमूत्र ये सब चीजों से लोग मानते हैं कि सबसे यदि अच्छी गोदुग्ध की यदि कोई जो है यानी किसी भयंकर रोगी को या छोटे बच्चे को जिसका माँ का दूध मिले उसको गौमाता का दूध मिले तो उसमें कोई वो परेशानी नहीं होती है। उस दृष्टि से भी गौमाता का सम्मान पूरे देश का स्वास्थ्य भी है, देश की आर्थिक प्रगति भी है। तो इस दृष्टि से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, संपूर्ण देश में गोवंश हत्या का निषेध हो और गो संवर्धन हो, तो ये आपके संकल्प लेकर शुभारंभ होगा। वाणी योगी संकल्प लेंगे पूजन के बाद में, उसके बाद में निर्वाध दर्शन हमारे खोलेंगे रात्रि को जैसा परम 10 बजे से हमारे जो है भागवत में वैसे सब मंदिरों में अभिषेक होता है, घर घर में विषय आपके अभिषेक होगा होता हर समय, लेकिन चूंकि घर घर में पत्रकार बंधु वगैरह नहीं जा पाते हैं तो आपके हमने एक लाइव टीवी स्क्रीन लगवाई है घर वगैरह के लिए भी कि वहाँ से जो है जो लोग क्यों घर वगैरह सब लोग नहीं जा पाते, वो बहुत छोटी जगह है और सभी लोगों का आकर्षण होता है घर वगैरह जो मुख्य स्थान है, क्यों घर वगैरह एक ऐसा स्थान है जो खुदाई में निकला, तो वो स्थान जो है जहाँ पहले विराजमान थे ठाकुर जी वह उसको हम गर्व कहते हैं, तो उस स्थान पर सब लोग नहीं जाना चाहते नहीं जा सकते, वो छोटी जगह तो वहाँ एक लैब कैमरे की व्यवस्था की गई और बड़ी स्क्रीन पर सब लोग वहाँ दर्शन जो भी श्रद्धालु जन्मी परिसर में आएंगे वो गर्व के अभिषेक के और गर्व के भी दर्शन करते अब के विशेष व्यवस्था की गई है।
1: घर बैठे श्रद्धालु उसके दर्शन कर सकते हैं टीवी पर लाइव या किसी ऐप में लाइव,
0: ऐसा है कि हम जो भी टीवी चैनल मांगेंगे उन सबको देंगे, वो हमने जो व्यवस्था की है वो जो भी चैनल मांगेंगे उनको भी वो व्यवस्था हम देंगे, क्योंकि सब चैनल एक इंटरनेशनल मीडिया होता है उस रोज यहाँ, तो वो तो केवल भागवत मंदिर तक सीमित रहता है, यहाँ पर्याप्त जगह है, वो सिस्टम है वहाँ लगा हुआ, लेकिन वह भी जो चाहेंगे उनको जन्मस्थान व्यवस्था उनको भी देगा जिससे लोग घर बैठे भी उसके दर्शन कर सकें, तो वो चलेगा। और फिर यह सत्सार्चन होता है हमारे यहाँ, देव स्तुति वेद स्तुति आदि सब चलते हैं, और फिर 12 बजे भगवान का प्रकट होता है और 12 बजे से लगभग 40 मिनट तक फिर पंचामृत अभिषेक और ये सब स्तुतियों का कार्यक्रम होता है, और उसके बाद में 1:30 बजे तक दर्शन खुलेंगे। उस दिन रात को सुबह 5:30 बजे से मंदिर में प्रवेश चालू हो जाएगा, और उस दिन प्रभु के चरणों में क्षमा मांग लेते हैं भक्तों के वजह से कि हम दिन में भी भगवान के पट बंद नहीं करते हैं, शयन नहीं कराते हैं, केवल जिसमें भोग रखते हैं उस समय जो है पट बंद होते हैं, क्यों उसका कारण है कि हमारे यहाँ वन वे व्यवस्था होती है, और आदमी जो 2-3 घंटे में वन वे में आ रहा है यहाँ वो यहाँ रुक नहीं पाएगा, तो वो यदि आकर के जाएगा लौट जाएगा उसको दर्शन फिर नहीं होते हैं, तो ये है कि भाई जो यहाँ आए और देश विदेश से जहाँ लोग आते हैं तो एकदम प्रभुचरणों में प्रार्थना सेवा अपराध के लिए मांग लेते हैं, यहाँ का उस दिन हम दिन में प्रभु के पट बंद होते हैं 4 घंटे बंद नहीं करते हैं, और नित्य पति से 1 घंटे पहले दर्शन खुल जाएंगे, और जैसे हम रात को 9 बजे दर्शन बंद करते हैं उस दिन रात को 1:30 बजे तक जो है दर्शन होंगे, जिससे कि जो भी भक्त आए मथुरा और वो मुख्य आकर्षण होता है जन्मभूमि के दर्शन करने का, जन्माष्टमी पर जो भी श्रद्धालु पधारते हैं उनका मुख्य आकर्षण होता है श्री कृष्ण पर जन्मस्थान का दर्शन करने का, तो ये पूरा प्रयास होता है कि वो सुविधा के साथ में सुरक्षा के साथ में व्यवस्था के साथ में यहाँ ये भी है कि वो आए बिना परेशानी के बिना किसी उसके मतलब व्यवधान के बिना धक्का मुक्की के, ये हमारा पूरा प्रयास रहता है, और भगवान की ऐसे कि यहाँ लाखों लाखों श्रद्धालु आते हैं और वो सुविधा से दर्शन करके इस तरह की अब व्यवस्था करते हैं, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन भी उसमें पूरी मदद करता है अभी से लगे हुए, पूरा नगर निगम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ये पूरा जो है सहयोग में पहले से लगा हुआ है, उस समय जब तक ये जो है हमारी सहन नहीं हो जाती है मतलब 1:30 बजे भी मंदिर पट पट होंगे तो 2-2.5 बजे तक पूरा प्रशासन मुस्तैद रहेगा, बड़े अधिकारी स्वयं जो है यहाँ खड़े होकर मॉनिटर करेंगे जैसे कि जहाँ कोई भी ऐसी चीज ना हो कि परेशानी किसी को हो जाए, हालांकि पूरी व्यवस्था एम्बुलेंस रहती है मेडिकल कैंप रहते हैं खोया पाया रहता है,

0: पूरी अपेक्षा हम करते हैं कोई श्रद्धालु यहाँ मोबाइल मोबाइल कैमरा ये सब लेके या निषेध एनजीओ का, और संघ में ये भी आग्रह करते हैं कि भाई आप जूते पहन के भी ना आए, तो कारण के बनबे में एक बार जूते उतर के तो दोबारा आप लेने के लिए नहीं आ सकते, तो फिर वो पूरे हम कारपेट बिछाते हैं पूरा जम्मू के भीतर और जम्मू के बाहर कारपेट बिछाते हैं कि किसी को कोई जो है सुविधा ना हो, और बहुत बड़े बड़े हम सामान घर भी बनाते हैं, चिकित्सा कैंप सामान घर खोया पाया केंद्र जन्मुई के परिसर के बहुत बड़े बड़े अब बार भी बनवाते हैं, भंडारे भी लगते हैं, नगर निगम भी एक आध्यो केंद्र बनवाता है, तो पूरी सुविधा रखती है, लेकिन ये अपेक्षा होती है कि जन्मुई परिसर में आप प्रतिबंध सामान या फिर बिना जूता चप्पल के बाहर हैं, जिससे फिर आपको किसी ने असुविधा, क्योंकि यदि आप ऐसा सामान लेके आए नहीं तो आप लौट के जाएंगे, यदि आप मोबाइल या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले आए तो आपको जो है प्रवेश नहीं होगा, आपको वापस जाना पड़ेगा, पहले वहां जाएंगे आप सामान घर में फिर लौट करके आएंगे, तो पहले उनसे निवेदन करते हैं कि हमने जगह जगह बहुत दूर बनवा रखे हैं तो आप वहां जमा करके आए, जो वहां लॉकर हैं सब व्यवस्था करके आए, जिससे आपको यहाँ दोबारा लौट करके न जाना पड़े और आपका सामान सुरक्षित रूप से प्राप्त आपको हो जाए। तो अच्छा अभिषेक के बाद में, क्यों बहुत से वक्त ऐसे होते हैं कि अभिषेक के बाद पंचामृत तो प्रसाद लेके अपना व्रत जो तोड़ते हैं, तो हम प्रद स्तर पर प्रसाद और पंचामृत वितरण की व्यवस्था अभिषेक के बाद में जहां से लोग निकास होता है उनका, जो जहां लोग भक्त दर्शन करने निकलते हैं वहां ये भी व्यवस्था कराते हैं कि जो भी भक्त प्रसाद या पंचामृत प्रभु का लें अभिषेक का, उनको वो प्राप्त सुविधा के साथ में हो सके, जो पितृ निकास जाए, जिससे वो ग्रहण करके अपने व्रत का प्रारण करें और वो अपने माने कि हमारी ये यात्रा और दर्शन पूर्ण सफल हो गई। तो ये पूरा अपनी तरफ से व्यवस्था होती है कि जहाँ जो भी श्रद्धावान वहाँ से श्रद्धालु पधारे हैं उनको पूर्ण तन्मयता के साथ में वो प्रभु के दर्शन कर सकें, और स्क्रीन भी जगह जगह बड़ी लगा, एक जगह नहीं बड़ी बड़ी स्क्रीन कई जगह लगाते हैं, जहाँ जैसे लाइन में लग रहे हैं उनको देर हो रही है, भाई मंदिर में तो अब बहुत समय तक आदमी रुक नहीं पाता है, बंद में चलते रहते हैं, तो जो लाइन में लगे हुए हैं वो भी स्क्रीन पर दर्शन अभिषेक के कर सकें, जिनको विलम्ब हो रहा है भीतर जाने में तो वो भी सोचे हाँ हमको सामने अभिषेक के, तो इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं ये हो रही हैं, और निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था किसी को कोई असुविधा नहीं होती है यहाँ, क्योंकि हमारा बहुत फैला हुआ परिसर है, इसलिए यहाँ कोई किसी को दर्शन में असुविधा नहीं होती है, और कोई स्टैम्पेड या धक्का मुक्की की भी कोई ऐसी संभावना नहीं रहती है, क्योंकि बहुत समय से हम लोग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तालमेल बैठा करके और ये सब व्यवस्थाएं करते हैं, और उसी भावना से विगत काफ़ी समय से चाहे वो निगम हो, जगह ही आप देखते हैं कि वो निगम जो है सजावट भी कर रहा है, सड़कों की मरम्मत हो रही है, लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है, साफ सफाई हो, पूरा निगम लगा हुआ है, जिला प्रशासन नहीं जो है जगह जगह आपने कहा मिस्टरों की ड्यूटी लगाई है, और पुलिस पर 4,000 तो पुलिसकर्मी बाहर से बुलाए गए हैं, तो ये सभी व्यवस्थाएं सब सभी विभागों सरकारी विभागों के साथ में जमुई ट्रस्ट के तालमेल के साथ में, तो कितने मनोयोग से सब लोग गए हुए हैं, और प्रभु कृपा के ये प्रार्थना होती है जो भी वक्ता हैं वो सकुशल यहाँ से सम्मान से दर्शन करके यहाँ से पधारें, और निश्चित रूप से ऐसा विश्वास है कि प्रभु पहले भी सब कृपा करते रहे, इसी भावना से वह भक्तों को दर्शन दे के कृतार्थ करेंगे और उनकी यात्रा सानंद पूर्ण होगी, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है।
1: रात के समय जो अभिषेक होता है क्या विशिष्ट अतिथि आएंगे या माननीय
0: मुख्यमंत्री? नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री सुबह आएंगे केवल,
1: मंचों पर भी कुछ प्रस्तुतियां होती हैं उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन?
0: नहीं ऐसा है कि वो मंची प्रस्तुति हमारी कल से चालू 1 तारीख की चालू हो जाएंगी,
1: अच्छा
0: हमारी लीला मंच है उसमें हमारी धार्मिक लीलाएं कल से ही 1 तारीख से चालू हो जाएंगी,
1: 4 तारीख तक
0: 5 तारीख तक रहेगी, 5 तक रहेगी,
1: 5 दिवसीय
0: पंचदिवसीय हर साल होता है तो यथावत होगा, वो तो प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम वो यथावत चलेंगे, उसमें कोई जो है नहीं है, तो वो चूंकि भक्तों का ना कल से ही चालू हो जाएगा, एक तारीख से ही चालू, एक कल से ही चालू हो जाएगा, तो वो अभी देखते हैं भीड़ तो अभी भी पर्याप्त है, आते हैं पूरी सजावट हो चुकी है लगभग लगभग, कि जो आकर्षण केंद्र लोग देखते हैं कि सजावट है ये सब व्यवस्था हमारी पूरी हो चुकी है, और कल से तो हम विधवत जो कार्यक्रम हमारे चालू हो ही जाएंगे, भाई लीला प्रारंभ का वाला वाले कार्यक्रम कल से 1 तारीख चालू हो जाएंगे, तो वो तो सब व्यवस्थाएं होगी, और निःशुल्क से जो आएंगे श्रद्धालु उनको अच्छा अनुभव, वो पहले से अच्छा अनुभव होगा, हर साल प्रयास

0: करते हैं कि पिछले जो वर्षे दी दर्शन करने आए जो इस साल आए उनको लगे और कोई अच्छा यहाँ वातावरण प्राप्त हो रहा है और ठाकुर के विशेष दर्शन और जहाँ सजावट जन्म के बाहर और आसपास सुविधाएं ज्यादा हो रही हैं तो पूरा प्रयास करेंगे।
1: अश्वतमा जन्माष्टमी का पावन पर्व आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य को लेकर सभी मंदिरों में पूरे जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। प्राचीन केशवदेव मंदिर में भी काफी जोर शोर से आयोजन किए जाएंगे, पूरी तैयारियां की जा रही हैं। इसी विषय पर हमने बातचीत करी, हमारे साथ हैं।
2: मेरा नाम गिरिराज शरण गोस्वामी, सेवाधिकारी प्राचीन मंदिर श्री ठाकुर केशवदेव जी महाराज। हमारे यहाँ 4 तारीख को जो उत्सव मनाया जाएगा उसकी तैयारी अभी से चल रही है। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर को सजाया जा रहा है। उस दिन तरह तरह के फूल बाहर से आएंगे, उनसे बंगला बनाया जाएगा, तोरण द्वार बनाए जाएंगे। उसके अलावा पूरे दिन जो है शाम को हमारे यहाँ 7 बजे से और रात्रि 12 बजे तक श्री कृष्ण सामूहिक संकीर्तन मंडल द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़े बड़े भजन गायक आएंगे और ठाकुर जी का 10 से 11 बजे तक अभिषेक होगा, जिसमें ठाकुर जी गर्भगृह से बाहर आएंगे और बाहर आकर रजत जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर सभी गोस्वामी समाज जो है परिवार जो है वो उनका अभिषेक करेंगे, जिसमें जो है 151 किलो दूध, 1 क्विंटल दही, बूरा, शहद, ये आज से अभिषेक होगा, वो ओपन अभिषेक होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ठाकुर जी के 2 जो दिवस होते हैं, एक तो जन्माष्टमी पे 24 अवतार के दर्शन होंगे। श्री कृष्ण जो हैं, हमारे केशव जो हैं, इनके अंदर 24 अवतार हैं, वो सिर्फ साल में 2 बार उनके दर्शन हो पाते हैं। ये ओपन जो अभिषेक होगा तो उसमें ठाकुर जी की जन्माष्टमी पे होंगे 10 से 11 बजे तक। और एक अक्षय तृतीया को चंदन श्रृंगार जब होता है तो उसमें 24 अवतार के दर्शन होते हैं। तो उस दिन जो हमारा जय सहायक आकाशवाणी के माध्यम से अगर भक्तियाँ आ सकें तो बड़ा अच्छा है, आनंद लें उसका, और नहीं तो अपने उससे माध्यम से जो है प्रचार माध्यम से उसका आनंद लें। 12 बजे रात्रि को धन के दर्शन होंगे और उस दिन जो है खूब मेवा फल फूल मिठाई पाक पंजीरी वितरण होगा।
1: कार्यक्रमों की शुरुआत 4 तारीख को प्रातः बेला से शुरू हो जाएगी,
2: जो सुबह से ही कार्यक्रम चलेगा।
1: क्या विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होगा 4 तारीख को?
2: 4 तारीख को सुबह से ही यहाँ बधाई गायन है, तुम्हारे शहनाई वादन है, यहाँ भजन कीर्तन जो है सुबह से ही चलेंगे जी।
1: प्रातः कितने बजे से?
2: ये प्रातः जो है 6 बजे मंगला दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, उसके बाद ये सब आनंद होता है। 12 बजे शयन हो जाएगी ठाकुर जी की, फिर 4 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे
1: जी। आपने जैसे बताया कि ठाकुर जी का जो दुग्धाभिषेक होगा रात्रि बेला में, कितने बजे ठाकुर जी का दुग्धाभिषेक होगा?
2: रात्रि को 10 से 11 बजे तक 4 सितंबर को होगा ये, और ठाकुर जी बाहर आके अपने रजत सिंहासन पर विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन देंगे, तभी अभिषेक का जी 1 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद ठाकुर जी गर्भगृह में जाके उनका श्रृंगार किया जाएगा और 12 बजे जन्म के दर्शन होंगे। 5 तारीख को हमारे यहाँ जो है वो नंद उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें ठाकुर जी झूले में विराजेंगे और यहाँ बधाई गायन वो होगा, तरह तरह के मेवा खिलौने तरह तरह के मिटाए जाएंगे और भजन जो है बधाई गायन होंगे।
1: यानी जिस प्रकार एक बच्चे के जन्म के समय जो परंपरा निभाई जाती है वही परंपरा मंदिर में निभाई जाएगी?
2: जी हाँ, जन्म के समय में ऐसा आना कि वैसे हमारे यहाँ पहले 1 दिन पहले जन्माष्टमी मनती थी
1: जी।
2: उसका कारण ये था कि जैसे घर में कोई बच्चा होता है तो उसकी सारी गतिविधि मालूम रहती है, तो यहाँ जैसे ही जन्म हुआ था तो उत्सव उसी टाइम से शुरू हो गया था। जब इतने प्रचार माध्यम नहीं थे, नेट का जमाना नहीं था, तो जब जब जिसको आगे मालूम पड़ती गई तो वो कृष्ण जन्मोत्सव मनाते चले गए। अब के कुछ ऐसा है कि रोहिणी नक्षत्र द्वितीया वो तृतीया जो है तिथि जो आ रही है वो 4 तारीख को आ रही है, इसलिए आज अब की बार 4 तारीख को ही हमारे यहाँ भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी
1: जी। क्या कहना चाहेंगे सभी श्रद्धालुओं से?
2: सभी श्रद्धालुओं से जी हैं कि मंदिर में आवें और इस उत्सव का आनंद लें, जो बार बार नहीं मिलता है, इस अनुभूति को अपने आके आनंद लें, बड़ा बड़ा आनंद आएगा। भजन कीर्तन गायक खेल खिलौने सब तरह का जो है उस सब में ठाकुर जी के में भाग लें, अगर हो सके तो आने का प्रयास करें, नहीं है तो अपने प्रचार माध्यम से घर से आनंद लें।
3: अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लीला मंच पर गूंजी माखनचोर की लीला। श्री कृष्ण जन्म स्थान के लीला मंच पर सोमवार को 5 दिवसीय पारंपरिक श्री कृष्ण लीलाओं का शुभारंभ हुआ। रासाचार्य स्वामी देवकीनंद महाराज की मंडली ने माखनचोरी लीला का जीवंत मंचन किया। 7 जोन 35 सेक्टर में बांटा शहर, होल्डिंग एरिया बढ़ेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने पर की जन्म

भूमि की सुरक्षा व्यवस्था। 30 सितंबर को आएंगे सीएम योगी, शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग, चाक चौराहे सब सचकर तैयार। यातायात व्यवस्था के लिए भी बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि जन्माष्टमी पर मथुरावृंदावन में सुरक्षा कड़ी रहेगी। इस दौरान 8 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ पीएसी की फ्लड प्लाटून, सादे वस्त्रों पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। अभिसूचना तंत्र को भी सक्रिय किया गया। जन्मभूमि के आसपास के होटलों, धर्मशालाओं के संचालकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में 1:45 बजे होगी मंगला आरती, सिर्फ 600 श्रद्धालुओं को मिलेगा प्रवेश। जन्माष्टमी के मध्यरात्रि के बाद होगी विशेष आरती, पूरी रात ठाकुर जी देंगे दर्शन। श्री बांके बिहारी मंदिर में कार्यक्रम किए जाएंगे जिनमें 4 सितंबर को जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे ठाकुर बांके बिहारी मठ का दिव्य महाभिषेक किया जाएगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यमुना जल, गुलाब जल, केवड़ा, नवरत्न, जड़ी बूटियों और औषधीय सामग्री से अभिषेक होगा। औषधीय सामग्री से ठाकुर जी को पाक, पंजीरी, फल, मेवा, दूध से बने मिष्ठान का भी भोग लगाया जाएगा। श्रद्धालुओं को गाइड करेंगे होटल संचालक। पुलिस ने जारी किए निर्देश, कर्मचारियों का ब्यौरा पुलिस को देना होगा। रोशनी से निखरी कान्हा की नगरी, लुभा रहे भक्ति स्तंभ, कन्नौज के तरह से जगमोहन का देरी का पूजन करेंगे श्री योगी जी। ब्रज के लोकगीतों से गूंजेगी धरा, नभ से गिर बिखरेगी कान्हा की छटा। जन्माष्टमी पर पहली बार बॉट लैब डायमेनिक स्लाइड शो में 500 ड्रोन दिखाएंगे कृष्ण लीला, 1000 कलाकार देंगे प्रस्तुति। अब डालते एक नजर आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। आज के दिन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वहीं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद औपचारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए जिससे युद्ध समाप्त हुआ। 1945 में वियतनाम को जापान फ्रांस के कब्जे से स्वतंत्रता मिली। वहीं 1789 में अमेरिकी वित्त विभाग की स्थापना की गई यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। वहीं 1666 में लंदन में भीषण आग लगी जिसे लंदन की महान आग यानी ग्रेट फायर ऑफ लंदन भी कहा जाता है। क्या करे क्या ना करे के अंतर्गत बातचीत करते हैं विषयों के बारे में जो होते हैं आम बन जाते हैं खास। पैक्ड फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, देखा जाए तो आज के समय में बच्चों की ये प्राथमिकता होती है। आप उनको भोजन मत दीजिए, रोटी मत दीजिए, सब्जी मत दीजिए, दाल चावल कुछ मत दीजिए, लेकिन पैक्ड फूड दे दिए, चिप्स दे दीजिए, कुरकुरे दे दीजिए, बर्गर दे दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स दे दीजिए, जिसमें वो अति प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ये उनके स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर डालता है जिसका उनको अंदाजा भी नहीं होता। शरीर का कोई भी हिस्सा हो, चाहे आंखें हो, चाहे आपका हृदय हो, आपका लीवर हो, चाहे आपका पेट हो, इन सब के दुष्प्रभाव आपके शरीर को झेलने पड़ते हैं। हर रंग पर ये बड़ा बुरा असर करते हैं। आज विश्व नारियल दिवस भी है। विश्व नारियल दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे नारियल के स्वास्थ्य लाभ और कृषि में इसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नारियल पानी जब भी आप पीते हैं तो आपके अंदर एकदम से एनर्जी का संचार होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। शुद्ध नारियल से अगर आप नारियल जल पिएंगे, नारियल पानी पिएंगे, तो वो आपके लिए अमृत का काम करेगा। वहीं पैक्ड नारियल पानी कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि सब में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव जरूर मिले हैं। नारियल की खेती से जुड़े किसानों को, उद्योगों को आर्थिक सुधार भी आ सकता है और वैश्विक स्तर पर नारियल उत्पादन में भारत का एक प्रमुख स्थान है। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट भी रखता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रदान करता है। तो नारियल पानी का सेवन न केवल आपके स्वास्थ्य को गति प्रदान करता है बल्कि हमारे देश के लिए भी जीविका एक अच्छा उद्योग का साधन भी बन जाता है। अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें, सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। हमेशा ये प्रयास कीजिए कि आपका कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे दूसरे को परेशानी हो। हमारे कृष्ण कन्हैया का प्राकट्य उत्सव बिल्कुल समीप आ चुका है। दूर दूर से सभी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। आपसे भी यही विनती है कि शहर को साफ रखें और पूरे मनोयोग से श्रद्धा भाव से पर्व मनाएं। और सभी श्रद्धालुओं से भी ये अपील है, पूरे मनोयोग से श्रद्धा भाव से पर्व मनाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति थी सुरभि शर्मा की और संयोजन था ओपी सिंह का। ये

अपने पराये फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना यशुदास और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था योगेश ने और धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला।

खयाम के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म त्रिशूल में। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। और आइए आप सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत उमराव जान फिल्म से।

शहरयार का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे तलत अजीज की आवाज में। धुन बनाई थी खयाम ने और फिल्म का नाम था उमराव जान। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में घर फिल्म का ये गीत, लिखा था गुलजार ने।

नाइट इन लंदन। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत को लिखा था आनंद बख्श ने और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गुलशन बावरा के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। आवाजें थी किशोर कुमार, अमित कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम था कस्मे वादे। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है किसान भाइयों, आज बुधवार दिनांक 2 सितंबर को शाम 6:50 पर 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार का विषय है बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा। किसान भाई, पशुपालक भाई, बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग जैसे खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव की जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे डॉक्टर अनुज कुमार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565, ये कोड नंबर है, फ़ोन नंबर रहेगा 2530135, इस पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर अनुज कुमार से। कार्यक्रम का समय होगा आज बुधवार दिनांक 2 तारीख को शाम 6:50 पर। सूचना समाप्त हुई और आइए जारी रखते हैं अपने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को इस गाने के साथ।

ऊंचे लोग। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाजें थी किशोर कुमार और सलमा आगा की। गीत को लिखा था अनजान ने और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

बड़े दिल वाला। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाजों में। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

साथी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्तचोर फिल्म से, गाया है यशुदास और हेमलता ने।

ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
2: हम जाने पहचाने श्रोता बोल रहे हैं, विपिन कुमार, गांव छोली से।
1: क्या बात है, छोले खाकर?
2: और क्या, अब तो सेमई चावल खाए थे।
1: अब तो सेमई चावल खाए थे, तो छोले अभी नहीं खाए। हाँ
2: छोले अभी नहीं, छोले वाले दिन करेंगे छोले।
1: चलिए, और अभी तो फिर जन्माष्टमी आने वाली है, तो फिर उसके हिसाब से खाना पीना होएगा घर में।
2: उसके साथ तो वो बनती है पंजरी, तो पंजरी का भोग लगता है, उसी से बांटते हैं, उसी को खाते हैं।
1: चलिए, तो धनिये की पंजरी बनेगी, आटे की पंजरी बनेगी,
2: जैसी घर के पसंद करते हैं ऐसी बना लेते हैं, सबकी पसंद होती है उसी को बनाते हैं।
1: चलिए, पसंद के साथ में, आनंद के साथ में जन्माष्टमी का पर्व मनाइए, ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। बता दीजिए क्या सुनेंगे
2: आज। ओ राधा तेरे बिना श्याम है आधा, फिल्म का नाम तो पता नहीं है।
1: फिल्म का नाम पता नहीं है? अच्छा, पता नहीं है फिल्म कब रिलीज हुई थी, कुछ पता है आपको?
2: अरे गाने के बोले, ओ राधा तेरे बिना श्याम है आधा।
1: ओ अच्छा, ऐसा। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: कुछ श्रोताओं के नाम और लेना चाहेंगे हम,
1: अवश्य लीजिए।
2: जैसे बिसावर से विजय कुमार कश्यप जी है, और एक अशोक यादव है अड़िंग सी।
1: ठीक है,

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: दीदी बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हो दीदी और हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है?
0: आकाशवाणी टीम भी बढ़िया, हम भी बढ़िया। और इसी के साथ अपना परिचय भी दे दीजिए।
1: दीदी मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अशोक यादव बोल रहा हूँ, अड़ीन से। मैम
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं अशोक जी?
1: दीदी बहुत अच्छा हूँ, और जब आपसे बात कर लेता हूँ यानी मतलब आकाशवाणी पे फोन लग जाता है तो दीदी एकदम और स्वस्थ और मस्त हो जाते हैं मैम।
0: बस ऐसे ही प्रसन्न चित्त रहिए, आनंदित रहिए, खूब खुश रहिए, बस खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में आती रहें, आप मुस्कुराते रहें और गुनगुनाते रहें हमारे रेडियो सेट पर आप ही की पसंद का बजने वाला गीत भी। बताइए क्या सुनेंगे?
1: दीदी सबसे पहले तो दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए ये शब्द बोले, शायद हम इसके लायक नहीं है लेकिन आकाशवाणी हमें इतना स्नेह देता है इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।
0: देखिए कन्हैया सबको एक दृष्टि से देखते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, और हम कन्हैया के हैं, कन्हैया हमारे हैं। तो ये भावना हमेशा रखिएगा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है ना?
1: दीदी जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है और मथुरा प्रशासन बहुत अच्छी सजावट कर रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रहा है, तो हमारे जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और जन्माष्टमी का जुप्त उठाने मथुरा प्रदेश में आए और दर्शन करके जाए कान्हा जी के।
0: बिल्कुल, वो हमेशा आते हैं और आते ही रहेंगे। बताइए अब क्या सुनेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है सौदागर और इसमें एक गीत है, नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, परिचय दे दीजिए अपना।
1: ग्राम नूला का चैन पोस्ट औरंगाबाद जिला पाचगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह से आपसे बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं रूप सिंह जी?
1: बढ़िया हैं, आप सुनाइए।
0: हम भी बढ़िया हैं, कार्यक्रम में फोन करते रहते हैं
1: जी,
0: और पसंद भी पूरी होती रहती है
1: जी। बिल्कुल, कार्यक्रम अच्छा ही लगता है
0: जी। बस कार्यक्रम आपको ऐसे ही अच्छा लगता रहे, आप फोन करते रहे और हम आपको सुनवाते रहे आपकी पसंद का गीत। तो बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जीने की राह फिल्म का नाम है, एक बंजारा का जीवन के गीत सुनाए।
2: सुनो एक तराना नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी। दीदी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी मैं आपका नियमित श्रोता ब्रजी रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह ग्राम नगला राणा सिहोरा मथुरा से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: स्वागत है कार्यक्रम में महेंद्र जी, और कैसे हैं आप?
1: एकदम स्वस्थ हैं दीदी, आप बताएं हमारी समस्त आकाशवाणी टीम कैसी?
0: हमारी आकाशवाणी की टीम बिल्कुल बढ़िया है, और साथ ही साथ आपको जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती है।
1: जी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को और समस्त आकाशवाणी परिवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यानी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ पसंद बता दीजिए अपनी।
1: दीदी आपसे एक बात पूछूं?
0: पूछिए।
1: हम ऑल इंडिया रेडियो से हर वर्ष यानी श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का आंखों देखा हाल सुन के आए हैं, क्या इस बार भी हमारी आकाशवाणी टीम तैयारियों में लगी हुई है?
0: बिल्कुल लगी हुई है, बिल्कुल आप हर वर्ष की तरह इस बार भी सुनेंगे।
1: धन्यवाद, बस यही जानना चाहता था। दीदी फिल्म का नाम है छोटी बहू, किशोर दा का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसके बोल है ओरे कन्हैया हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मई।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं ब्रज रेडियो श्रोता में सांवरिया गांव खैरावर तहसील कुमेर जिला डीग राजस्थान।
0: जी, तो खैरावर में सबकी खैर रहती है कि नहीं सांवरिया जी, आपके होते
1: हाँ,
0: हुए
1: सबकी सभी की खैर है जी,
0: सबकी
1: सबकी
0: खैर।
1: कृपा है, ईश्वर कृपा।
0: चलिए, और क्या सुनना चाहेंगे?
1: पसंद आप सुनवाओ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं, बधाई।
0: आपको भी बधाई।
1: और कोई ये संजो फिल्म का गाना सुनवाइए साहब।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की थी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का चंद्रा खत्री के साथ। नमस्कार साथियों, जय श्री।

देविका चंद्रा खत्री के साथ। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। राधे जी का प्रेम, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियों का रास, इन्हीं से मिलकर बनता है जन्माष्टमी खास। जी हाँ साथियों, भारत परंपराओं का देश है, भारत संस्कृति का देश है, और आज हमारी ब्रज की धरा बिल्कुल दुल्हन की तरह सज चुकी है, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है। जी हाँ साथियों, लल्ला का जन्म हर घर होने वाला है। बिल्कुल, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी कृष्ण कन्हैया बनाकर उनके जब मुख को देखा जाता है ना, तो बिल्कुल लगता है कि हाँ लल्ला ही है। तो साथियों, हमारा जो ब्रज है ना, यहाँ की हर चौराहे पर, हर गली में बस इतना भव्य सजावट है ना, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा ब्रज दुल्हन की तरह सजा है। ब्रज की चौराहे ही नहीं, हर गली, मंदिर, घाट, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारे, और पारंपरिक ढोल नगाड़े से गूंजते हैं। भव्य सजावट दिखती है, मंदिरों में फूल, रोशनी, मनमोहक झांकियों से सजे हुए मिलते हैं। श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमारी ब्रज की जो धरा है ना, यहाँ की जो मिट्टी है, इसमें लल्ला की खुशबू है, आज भी महकती है। और यहाँ जो घाट पर, वृंदावन में, गोकुल में जो रास हमारे लल्ला ने किए हैं ना, तो राधा रानी आज भी गाती हैं,

जी हाँ साथियों, कार्यक्रम में आज विशेष जन्माष्टमी, क्योंकि जन्माष्टमी बिल्कुल करीब है, आने वाली है। और जन्माष्टमी केवल एक दिन का उत्सव नहीं, हम तो हर दिन अपने लल्ला का उत्सव बनाते हैं, तो क्यों ना जन्माष्टमी को भी एक विशेष बनाया जाए। जी हाँ बिल्कुल, इस दिन हमारे ब्रज में तो बहुत अच्छी परंपरा है कि हर चौराहे पर दही की जो मटकी होती है, माखन की जो मटकी होती है, उसको लटकाया जाता है और कहीं ग्वाले बाले एक दूसरे पर चढ़कर उस मटकी को फोड़ते हैं, आनंद उठाते हैं। हर एक जो हमारी बाला है उसमें राधा रानी का रूप नज़र आता है और बड़े ही साज सज्जा के साथ हमारा ब्रज सज जाता है। श्रद्धालुओं के आने का जब समय आता है ना, तो ब्रज की गली गली में यही शोर सुनाई देता है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो साथियों, हमारा जो लल्ला है ना, वो है ही कुछ ऐसा, क्योंकि उसने जो है माखन चुरा कर खाया और बंसी बजा कर नचाया, तो उसके जो जन्मदिन की खुशियां हैं वो हम क्यों ना मनाएं, उन्होंने तो हमें प्रेम का रास्ता दिखाया।

जन्माष्टमी हम एक उत्सव की तरह मनाते हैं, और क्यों ना मनाएं। हमारे लल्ला का जन्मदिन होता है, लल्ला ने इस दिन जन्म लिया था और बड़ी सहजता से नहीं, बड़ी कठिनाइयों से लिया था। जी हाँ साथियों, बड़ी ही इस जन्म की भी बड़ी कथाएं हैं। और आज के दिन यानी कि आज छठ के दिन कई जगहों पर ठंडा आज बनाया जाएगा और कल सातम के दिन खाया जाएगा, तो ये भी एक परंपरा हमारे देश में चल रही है और बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। काफ़ी कम्युनिटीज़ के बीच में हमने ये देखा है कि आज के दिन बनाएंगे और कल के दिन खाएंगे, शीतला माता की पूजा करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी परंपराओं से और बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ में हमारे देश में बहुत सारी अच्छी संस्कृति परंपराएं पनपती हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम उसको निभाते हैं। आज के समय में भी हम उसे निभाते हैं। और बात जब चल रही है जन्माष्टमी की, तो जन्माष्टमी पर खाने की जो बात आती है ना, तो पाग जरूर हमें याद आ जाता है, क्योंकि हमारे ब्रज में तो भाई बड़े ही श्रद्धा के साथ भगवान का ये जो भोग लगता है ना पाग का, इसमें बड़े ही पंच मेवा के साथ नारियल की बर्फी बनाई जाती है और घर घर बनाई जाती है। इतने स्वाद में भी अच्छी होती है और न्यूट्रिशियस भी होती है, क्योंकि इसमें सारे के सारे मेवा डले हुए होते हैं। क्योंकि अब कान्हा का जन्म है तो दही की हांडी भी होगी, बारिश की फुहार भी होगी, और जब बारिश की फुहार में लल्ला माखन चलाने आएंगे तो फिर क्या बात होगी। जी हाँ साथियों, जब हमारे लल्ला का जन्म होता है ना, तो घर घर दही की हांडी होती है, माखन की हांडी होती है, और पाग बनता है, मीठा बनता है, सबको बड़ा ही स्वाद आता है। और जो हमारे श्रद्धालु बड़ी दूर से हमारे ब्रज धाम में आते हैं ना, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर गली से बस उन्हें हमारे राधिका के घुंघरुओं की भी आवाज़ आती है। क्योंकि आज भी सच में निधि वन में आप जाकर देखिए तो बिल्कुल एक ऐसा लगता है सजीव चलचित्र।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के उत्सव की। जी हाँ, रात्रि के 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते

0: करते हैं तो हमारा जन्मभूमि पर द्वारकाधीश मंदिर पर बड़ी ही महाअभिषेक विशेष आरती होती है, जिसका आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से हमारे लल्ला का जन्म देखते हैं। कितना ही अच्छा दृश्य होता है, कितना ही अच्छा संगम होता है, सभी लोग आते हैं बाहर से और गली गली में बस लल्ला को निहारते हैं, क्योंकि बाल रूप है सबको भाता, माखन वो चोर वो कहलाता। आला आला गोविंदा आला, बाल ग्वाल ने शोर मचाया, झूम उठे हैं सब खुशी में, देखो मुरली वाला आया। जी हाँ साथियों, क्योंकि हमारा जो लल्ला है ना, उसके कई सारी रूप हैं, मोहन मदन, हर अलग अलग जगह पर उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया। सबसे पहले उनको श्री कृष्ण कन्हैया लाल बोला गया, लल्ला बोला गया, नंदलाल बोला गया, तो अनेकों नाम से हमारे लल्ला को जाना जाता है। और जब उनकी महिमा तो अपरंपार है, योग के तो वो गुरु हैं, तो इस तरीके से योग गुरु कहलाए, ब्रह्मा विष्णु सभी उनको प्रणाम करते हैं और हम भी श्री कृष्ण प्रभु को प्रणाम करते हैं।
1: प्राण तांधा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे है, जनन जनन जनन जनन जनन प्राण प्राण प्राण धाता। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे है, जनन जनन जनन जनन जनन मोर मुकुट सर कान मुकुंदन कर में मुरली जा मुरली जा मुरली जा।

शरमाय रही श्री सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह

बजने लहरी बजने लहरी बजने लहरी। लंबा सा घूंघट कार लिया बंसी के धुओं पर झूम गई हर तरफ गगरिया मोहनी मोहन की और ही धुम किता धुम किता धुम किता धुम किता।

ने पुकारा हाय गई कोई आओ सखी कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ बोली कहाँ कृष्ण है तुम रह पर ना दूंगा डगरिया छोड़।

0: कुछ घात हुई। इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जादू की। दोनों में कलाती जादू की, हाँ धा तय कै सूंदा, धागे दे कैसा धाधिंता।
1: अपनी चंचल शरारतों से मंत्र मुग्ध करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियां हो चुकी हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सबका प्रणाम।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

तेरे बिना इस फिल्म में भी आपने सुना अभिजीत को। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म अमर प्रेम से। इसे अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

फिल्म अमर प्रेम से लिया ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म युग पुरुष से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है रविंद्र साठे ने।

0: युग पुरुष। अभी आपने सुना रविंद्र साठे को इस फिल्म में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं डोरीलाल गोला।

0: हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रज लोक गीतों के कार्यक्रम में डोरीलाल गोला के गाए लोकगीतों का।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रज लोक गीतों के कार्यक्रम का। आज के कलाकार हैं डोरीलाल गोला। तो आइए सुनते हैं इनका गाया एक और प्यारा सा लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोक गीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे डोरीलाल गोला। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्डिस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल

0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली एनसीआर में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विदुषी कावेरीकर का ख्याल गायन राग भूपाली और माल कौंस में। तबले पर संगत होगी श्री अब्दुल सलाम की, सारंगी पर होंगे श्री हरि बाबू कौशिक।

हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम, समय रहेगा संध्या 6:50। विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। वार्ताकार विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अनुज कुमार।

बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग दोपहर 1:15 से। अपने सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय रहेंगे विश्व नारियल दिवस, नशे से दूर रहें स्वस्थ रहें। इसी के साथ आप सुन सकेंगे कल्पना सारस्वत की लिखी कहानी टूटते सपने। युवा साथी फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। ब्रज काव्य सुधा क्रम में कवि गोपाल प्रसाद गोप का काव्य पाठ आप सुन सकेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा 2:30। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा 7:30।

एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 से आप सुन सकेंगे। चर्चा का विषय है रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 से।

अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए करते हैं अपनी मातृभूमि को नमन।

संवेद सुरों में अभी आप सुन रहे थे देश गान। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

वनिता लोक सुन रही सभी बहनों को भावना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं बहनें मेरी सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छी हों। तो बहनों, आपसे जैसे कि बात करते ही हैं हम कोई ना कोई विषय लेके, तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी बहनों से महिला स्वास्थ्य और पोषण के बारे में। तो बहनों, महिला स्वास्थ्य और पोषण किसी भी स्वस्थ परिवार और समाज की नींव है। महिलाओं का स्वास्थ्य केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार और आने वाली पीढ़ियों के विकास पर भी सीधा सीधा असर डालता है। पोषण महिलाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार में दालें, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दूध, दही, मेवे, अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ

पर्याप्त प्रोटीन, पर्याप्त आयरन, पर्याप्त कैल्शियम, ये सभी कुछ होना ज़रूरी है। तो याद रखें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें अपने आहार को लेके ध्यान रखना है। तो सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं, नियमित शारीरिक गतिविधियां करें जैसे कि योगासन आदि। व्यक्तिगत स्वच्छता और मासिक धर्म स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी है नींद, नींद भी पर्याप्त लें, आराम करें। समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी जांचें करवाएं, अगर कोई समस्या आती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। अच्छा स्वास्थ्य किसी बीमारी मुक्त होना नहीं है कि हमको कोई बीमारी नहीं है हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से स्वस्थ होना ही एक अच्छा स्वास्थ्य की निशानी मानी जाती है। महिलाएं अक्सर अपनी बीमारियां छुपाती हैं और ये हर घर में होता है। हम सभी अपनी बीमारियों को नहीं बताते, पर वो समय समय पर हमको इलाज नहीं कराना होता है या जो भी रीज़न होता है, हम उस दर्द को सहते रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बुरा साइन होता है, क्योंकि बीमारी बढ़ने में देर नहीं लगती और नतीजा आप जानते ही हैं, नतीजा उसका क्या होता है। तो बहनों, नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, छोटी सी भी परेशानी हो तो ज़रूर दिखाएं। हर एक पदार्थ शरीर में आपको, आपके शरीर को बनाने के लिए कार्य करता है। जैसे आयरन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है, कैल्शियम की कमी होती है तो शरीर की हड्डियाँ और दांतों में परेशानी होती है, जो कि दांतों के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है। फाइबर की बात करें तो फाइबर आपके पाचन के लिए ज़रूरी है। तो जो भी हम आहार लेते हैं उसमें जो जो तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा, तो वो सभी चीज़, उन सभी चीज़ों का इनटेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो चीज़ ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे सामने बीमारी को लेकर के सामने आती हैं। तो बहनों, अब से आपको अपना ध्यान रखना है। जब हम स्वस्थ हैं ना बहनों, तभी हम अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश स्वस्थ परिवार और सशक्त राष्ट्र की नींव है। तो अब इस चर्चा को विराम लगाते हुए, तो खुशी में क्यों ना सुन लिया जाए एक गीत।

0: तो बहनों, अभी आप ले रही थी आनंद इस गीत का। अब हमारी जो अगली पेशकश है, कुछ ही पलों में हमारी बहनें आनंद ले पाएंगी कुछ कविताओं का। और आज की हमारी कवित्री हैं प्रिया माहेश्वरी। तो चलिए सुनते हैं ये काव्य पाठ।
1: सावन भादो में बरखा की रिमझिम लड़ियाँ संपूर्ण वातावरण में एक अलग सा आनंद प्रदान करती हैं, जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में एक अलग सी स्फूर्ति भर देता है, जिससे हमारा प्रकृति को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। भूमि से उठने वाली सौंधी सौंधी मिट्टी की गंध भी हमें चंदन की गंध के समान लगने लगती है, फिर हम अनायास ही गा उठते हैं।

0: चलिए, बारिश की रिमझिम के बाद अब हम देश प्रेम के रंग में भीजते हैं। ऐसा प्रेम जो अक्सर हम सभी में कहीं ना कहीं सो जाता है, हाँ समय समय पर जोश के साथ जाग भी जाता है। इसी जोश व देश के प्रति समर्पण की भावना को चिर जीवित रखने का आह्वान कर रही हूँ अपनी इस रचना में। यूं तो हर वर्ष हम गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं पर क्या वास्तव में देश के प्रति शुद्ध भावनाओं को जगा पाते हैं? उत्तर पूछेंगे तो शायद नहीं में ही पाएंगे। आखिर कब तक हम अपने वजूद में नहीं समाएंगे? वह वजूद जो हमें मिला अपनी माटी से, नेहरू के आदर्श व बापू की लाठी से। कितने संघर्ष कुर्बानी के बाद हमने आज़ादी को पाया कितने भगत सिंहों व चंद्रशेखरों ने अपना खून बहाया। क्या आज भी वे जज्बात हमारी रगों में दौड़ते हैं या खून बना है पानी, खंड खंड में खुद को जोड़ते हैं? देश प्रेम की भावना सिर्फ खेलों तक ही सिमटती है धोनी युवराज के पीछे आज की जनता मर मिटती है। देश की माटी पर मुझको तभी गर्व आता है जब अभिनव बिंद्रा जैसा लाल स्वर्ण पदक लाता है। पर चलो खेलों के बहाने ही सही हमारा राष्ट्र प्रेम तो छलकता है। जाति धर्म का भेद भुलाकर भारतीय होने का जज्बा दिखता है। इसी कारण से ही सही एकता तो नजर आती है, तब पूरे देश की जनता जनगण मन तो गाती है। जुनू व जोश ही सही हम में देश प्रेम तो जगता है, वरना आज का युवा तो सिर्फ पश्चिम के पीछे भगता है। अंग्रेजियत के रंग में रंगकर हिंदी भाषा बोलता है, सफलता व असफलता के तराजू में देश को तोलता है। पर क्या सोचा है कि देश की खातिर हम क्या करते हैं जबकि हम इस भूमि से बहुत कुछ पाने का दम भरते हैं। अपेक्षाओं का बोझ ले सिर्फ व्यवस्थाओं को कोसते हैं पर क्या राष्ट्र उत्थान की दिशा में हम भी सोचते हैं? गांधारी बन मतलब की पट्टी आंखों पर ओढ़ते हैं, देश को धृतराष्ट्रों के हवाले कर भगवान भरोसे छोड़ते हैं। क्या हमारा राष्ट्र प्रेम सिर्फ जश्न में शामिल दिखता है? नैतिकता के नाम पर स्वार्थ आवरण में दुबकता है? देश प्रेम का ठेका सिर्फ सीमा पर खड़े जवानों का ही नहीं है, खेल के मैदानों में उतरते खिलाड़ी नौजवानों का भी नहीं है। यह दायित्व तो हर उस नागरिक का है जो हिंदुस्तान में बसता है, किंतु जिम्मेदारी व जागरूकता से कोसों दूर भगता है। राष्ट्र को सफलता के सोपानों पर हम तभी चढ़ा पाएंगे जब हम देश प्रेम की भावना को रोजमर्रा के जीवन में अपनाएंगे। तभी हम सच्चे भारतीय कहलाएंगे और शान से मातृभूमि के चरणों में गा पाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
1: ये थी प्रिया माहेश्वरी और अभी इन्होंने कुछ कविताओं का पाठ किया। अभी आप सुन रहे थे इनकी कुछ कविताएं। तो बहनों, मौसम खूबसूरत हो रहा है, बाहर बारिश की टिप टिप आवाज़ सुनाई दे रही है। आप कहेंगी कहाँ, तो सुनिए ना बहनों, आपके लिए है ये गीत।

0: वही वही नज़र आए, और ये हर महिला की ख्वाहिश होती है। आप शादी में देख लें, पार्टी में देख लें, कहीं भी देख लें, एक बालों में एक अलग ही स्टाइल की बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है। तो आज का जो विषय है वो भी यही है कि बालों का आधुनिक श्रृंगार, ये हम आपको सुनवा रहे हैं, और वार्ताकार हैं सोनम त्यागी। तो चलिए सुनते हैं।
1: इस बदलते वक्त में सुंदरता के मायने भी बदल गए हैं। अब आकर्षक दिखने के लिए खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है। उसके साथ और भी कई सारी चीजें जुड़ जाती हैं, मसलन आपका हेयर स्टाइल, आपकी खूबसूरती और स्मार्टनेस को बढ़ाने में हेयर कट और कलर का महत्व योगदान है। अगर आपने अपने बालों को हल्का सा भी चेंज करा लिया तो आपकी लुक बदल जाएगी। औरतों की खूबसूरती बालों से ही महत्वपूर्ण लगती है। पहले लंबे और काले बालों का फैशन था, लेकिन समय के साथ साथ बदलते फैशन में दुनिया में होने वाले तमाम बदलावों की तरह बालों के फैशन में भी चेंज आ गया है। अब बालों के कट में होने वाले बदलावों के साथ उसके रंगों में भी बदलाव का दौर चल गया है। अब नेचुरल कलर के बालों का फैशन नहीं रह गया है। आप चाहें तो अपने बालों में कलरिंग करा सकती हैं, अपने हेयर स्टाइल को एक नया लुक दे सकती हैं, और कलरिंग कराने के बाद स्टाइल को एकदम चेंज करवा सकती हैं। अगर आज का फैशन जरूरत और मौके के अनुसार नहीं ट्रेंड पर निर्भर करता है, अगर बालों के फैशन और ट्रेंड की बात की जाए तो इसके लिए हेयर कट से लेकर हेयर कलरिंग तक सारी चीजें आ जाती हैं। खुद को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए बालों को डिफरेंट तरह के कट दिए जाते हैं, परमिंग और स्ट्रेटनिंग कराई जाती है। यह जरूरी नहीं कि आप अपने पूरे बालों में कलर कराएं, बालों की एक लट में भी कलर करा सकती हैं। पहले सफेद बालों को रंगने के लिए कलर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कराने और खुद को फैशन के मुताबिक चलने के लिए किया जाता है। बालों को कलर कराने के लिए आपकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो जाती है, लेकिन एक सच ये भी है, अगर घटिया क्वालिटी के कलर का यूज किया जाए तो आपके बाल खराब हो सकते हैं। इसलिए जब भी बालों का हेयर कलर कराएं, किसी हेयर स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर ले लें। इसके अलावा अच्छी कंपनी के कलर ही यूज करें ताकि बालों को कोई नुकसान ना हो। एक ध्यान रखें, अगर बाल एक बार खराब हो जाते हैं तो उन्हें पहले जैसी अवस्था में लाने के लिए काफी समय लग जाता है। खराब क्वालिटी के कलर से सिर की स्किन को इन्फेक्शन हो जाता है। बालों को मनचाहे रंगों में ढालने के लिए हेयर कलर का यूज किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाती है। इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि आज कलर का इतना फैशन चल रहा है, इसलिए भी हेयर कलरिंग कराई जाती है। लेकिन हेयर कलर करवाने से पहले अपने कॉम्प्लेक्शन और पर्सनैलिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम जो कलर कराते हैं वो हम पर सूट नहीं करते। इसलिए अपने लिए वही कलर चूज करें जो कि आपके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सहायक हो, ताकि आपका मजाक नहीं उड़ा सके कोई। फिर कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन पर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। अगर आपका सांवला कलर है तो गोल्डन ब्राउन कलर से बचें। अपने बालों में कलर कराने से पहले यह तय कर लेना जरूरी है कि आप परमानेंट हेयर कलर करवाना चाहती हैं, टेम्परेरी या फिर परमानेंट टेम्परेरी। कलर्स की खास बात यह है होती है कि टेम्परेरी कलर्स इसलिए सही होते हैं कि ये वाटर बेस्ड कलर होते हैं, इसलिए हाईलाइट कलर किए गए बालों पर चढ़े कलर कोट को आप शैम्पू करके हटा सकती हैं। अगर आप पहली बार कलर करा रही हैं तो यह सबसे बढ़िया और कारगर तरीका है। पसंद नहीं आने पर बाल धोने पर फिर जैसे हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने ऊपर करने वाले कलर का चयन भी करने के लिए कर सकती हैं। सेमी परमानेंट कलर्स, यह ऑप्शन उनके लिए है जो फैशन के अनुसार चलना चाहते हैं और अपने लुक में बदलाव करने के लिए समय समय पर प्रयोग करते रहते हैं। ये कलर कुछ समय तक ही रुकते हैं। परमानेंट कलर्स, ये कलर्स ऑक्सीडेंटेशन डाई होती है जो 6 सप्ताह में कलर्स को रिटच करवाना पड़ता है, जिससे एक जैसा कलर बालों पर बना रहता है। सुंदर दिखने के लिए जैसे कपड़ों और मेकअप की जरूरत

बहनों, इसके बाद अब हम आपसे बात करते हैं बालों की। बहनों, आजकल बालों को स्टाइल से बनाना एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। हर कोई, किसी को भी देख लीजिए, चाहे वो किसी भी उम्र की महिला हो या कोई लड़की हो, लड़कियां तो खैर बनाती ही हैं, लेकिन कोई भी महिला हो वो अपने बालों को इस तरह से बनाना चाहती है कि वो सिर्फ

0: होती है, उसी प्रकार हेयर स्टाइल का भी एक मेन रोल होता है। कॉम्बिनेशन भी बेहद जरूरी है। ये हेयर कलर्स बालों, आंखों, आईब्रो और त्वचा के रंग से मेल खाने होने चाहिए। बालों का काला रंग सिर्फ भारतीय महिलाओं में ही देखने को मिलता है और बालों के इस रंग के साथ ज्यादातर औरतों की त्वचा का रंग सांवला और गेहुआ होता है। गेहुए और सांवले रंग के लिए ब्राउन, डार्क ब्राउन हेयर कलर्स ज्यादा अच्छे रहते हैं। यदि आपके बालों का रंग भूरा और आपका रंग गोरा है तो आप अपने बालों में गोल्डन डाई करा सकते हैं या हाइलाइट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपने बालों में गोल्डन कलर करवा सकते हैं या फिर हल्के रंग से हेयर कलर्स से लेयर भी करवा सकती हैं। बरगंडी कलर सबको सूट होता है।
1: तो हमारी बहनों ने अभी सुना बालों के आधुनिक श्रृंगार को लेकर के, और जानकारी दे रही थी सोनम त्यागी। तो बहनों, कार्यक्रम का समय समाप्त हो उससे पहले हम कुछ देंगे घरेलू टिप्स। तो बहनों, सबसे पहला है कि आलू को उबालना सभी के लिए, सब घरों में आम बात है, लेकिन अगर जल्दी उबालने हैं तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए तो वो जल्दी उबल जाएंगे। दूसरा है, अदरक लहसुन को ग्राइंड करते समय उसमें थोड़ा सा तेल या फिर नमक डाल दें और फिर उसके बाद उसे स्टोर कर लें, फ्रिज में लगा दें, लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है। सब्जियां काली ना पड़ें इसके लिए आप सब्जियों को हमेशा जैसे ही लाएं तो नमक के पानी में रख करके आप रखें, तब उसको थोड़ा सा उसका पानी पोंछ करके तभी फ्रिज में लगाएं। और अगर लास्ट जो आपका टिप है वो बहुत ही अच्छा है, भटूरे का सभी को शौक होता है, छोले भटूरे, तो भटूरे का आटा जिस वक्त आप गूंथती हैं उसमें दो आप ब्रेड डाल करके माड़िए आटे को, तो भटूरा बहुत ही फूला फूला बनता है। अगला है, अगर पूड़ी का तेल काला हो गया है तो उसमें एक अदरक का टुकड़ा जरूर डाल दें। तो बहनों, आज का हमारा वनिता लोक का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होगा। आपसे चाहते अनुमति, फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक एफएम 102.2 मेगाहर्ट्स पर, यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले के युगल सुरों में लिया ये गीत।

फिल्म देवदास से लिया ये गीत अभी आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति और के युगल सुरों में। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म पद्मावत से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है नीति मोहन ने।

मिति मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म पद्मावत से। इस गीत के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे

0: दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का पांचवां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
1: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की

0: स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्राव में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनूघाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की

0: पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चूस को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT व CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नुंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजीत जी, बात तो सच

0: सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
1: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की

0: हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया है, मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
1: जी।
0: आप कहेंगे ये ठीक भी है क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
1: श्रोताओं, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
0: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
1: जी।
0: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
1: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
0: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
1: जी।
0: लेकिन यह जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
1: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
0: जी हाँ श्रोताओ, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था?
1: जी,
0: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओ, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
1: जी।
0: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
1: जी हाँ श्रोताओ, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है।
0: जी श्रोताओ, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर
1: जी,
0: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारी आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मशीनों को रिटायर करने की जापान की एक छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
0: तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए
1: जी,
0: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
1: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
0: श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
1: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप NCERT के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न है,
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: CIET NCERT प्रेजेंट्स द प्रोग्राम द स्मार्ट मंकी।
3: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag एंड फरीदाबाद

0: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
4: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
5: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
4: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
5: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
4: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खांट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
5: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
4: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
6: अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
4: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजा मंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना

0: कूट कूट कर भर रहे थे।
1: काली बाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। काली बाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
0: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
1: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
0: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
1: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
0: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
1: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
0: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
1: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
0: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूं तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
1: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
0: साहब ये पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
1: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु

0: चारा के लिए घास काट कर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
1: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
0: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
1: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
0: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
1: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भागकर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
0: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
1: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
0: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
1: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
0: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
1: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
0: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
1: कालीबाई, तुम्हें हमारा
0: सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोता, आपके लिए कार्यक्रम से संबंधित सूचना। आज शाम 6:50 से 30 मिनट की अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आएंगे, बरसात के मौसम में पशु में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर अनुज कुमार। किसान भाई, पशुपालक भाई, बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग जैसे कि खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोंटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव की जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-25-30-135 पर फोन करके या फिर मोबाइल नंबर 9412-255-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय रहेगा आज शाम 6:50 से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम आज के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपनी संध्याकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

0: युवा है तो जोश होगा, जोश है तो बदलाव होगा, हाथों में पौधे होंगे, आसपास स्वच्छता होगी और जीवन में नशे के लिए कोई जगह न होगी। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं बातों और विचारों के साथ हम हैं हाजिर लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, आज हम आपके कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं अपने युवा साथियों से मुलाकात के लिए। और दोस्तों, जीवन की असली खूबसूरती है हरियाली, जीवन की असली ताकत है स्वास्थ्य, और एक बेहतर समाज की पहचान है स्वच्छता और जागरूकता। लेकिन आज हमारा युवा जीवन दो बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, एक ओर पर्यावरण का संकट और दूसरी ओर नशे की बढ़ती प्रवृत्ति। जरा सोचिए, जिस युवा के हाथ में पौधा हो वो भविष्य को हरा भरा बनाता है, और जिस युवा के हाथ में नशा हो वो अपने ही भविष्य को धुएं में उड़ा देता है। इसलिए आज जरूरत है एक ऐसे संकल्प की, पेड़ भी लगाएंगे, नशा भी भगाएंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और एक सुंदर भारत बनाएंगे। हरियाली केवल धरती की सजावट नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की सांस है। पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं, पर्यावरण की संतुलन बनाए रखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार तैयार करते हैं हमारे पेड़। लेकिन केवल धरती को हरा भरा करना ही काफी नहीं, हमें अपने जीवन को भी बुरी आदतों और नशे के अंधकार से मुक्त करना होगा। नशा चाहे किसी भी रूप में हो, वो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, सपनों और भविष्य को कमजोर कर देता है। युवा शक्ति का नाम नशे के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ना है, यही तो युवाओं की पहचान है। तो आइए आज एक नई सोच अपनाएं, नशे को ना, जीवन को हाँ, गंदगी को ना, स्वच्छता को हाँ, पेड़ों की कटाई को ना, और हरियाली को हम कहेंगे हाँ। और आज इसी सकारात्मक सोच व जीवन से प्यार करने वाले संदेश के साथ सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।
1: वह समय निराश करता है

0: कोई मित्र नशे की गिरफ्त में है तो उसे अकेला छोड़ने की बजाय प्यार, समझदारी और सही मार्गदर्शन के साथ जीवन की ओर वापस आने में मदद कीजिए। और क्योंकि आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से मना भी रहे हैं विश्व नारियल दिवस, तो दोस्तों आइए आज युवाणी के माध्यम से हम सब मिलकर एक संकल्प लें, हम धरती को हरा भरा बनाएंगे, अपने घर और आसपास को स्वच्छ रखेंगे, नशे से स्वयं दूर रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि जब युवा जागेगा देश संवरेगा, जब हर आंगन में पौधा होगा भारत निखरेगा, नशे से दूर स्वच्छता से प्यार, यही है युवा भारत का असली श्रृंगार। और युवाओं के हर हुनर को सलाम करता हमारा ये कार्यक्रम युववाणी, तो चलिए आपको लिए चलते हैं अपने युवा साथी रेखा चौधरी की इसी लेखन के हुनर की ओर, यानी सेगमेंट सफलता की कहानी की ओर, और आपको सुनवाते हैं उनकी लिखी कहानी प्रतिकार का विष।
1: वह समय निराश करता है जो अनुकूल नहीं होता, वे बातें खिन्न करती हैं जो भरोसे को तोड़ती हैं, वे विषय डराते हैं जिन पर न कुछ कहना अच्छा लगता है और न सुनना। वह स्थिति विचित्र होती है जब सांत्वना की जरूरत होती है, पर जुटाई जा रही सांत्वना दोष नहीं देती। वे संबंध कितना तोड़ते हैं जो संबंध हीनता पर टिके होते हैं, और ये कितना भयानक होता है कि जिन रिश्तों पर भरोसा किया जाता है वे ही खतरनाक निकलते हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र होता है कि किसी को हम जितना जानते हैं उतना ही नहीं जान पाते। क्या जिंदगी के संतरास यहीं से शुरू होते हैं? तकिए में मुंह छुपाए रोती राधिका समझ नहीं पा रही थी कि वो किस पर विश्वास करे। एक तरफ समाज था तो एक तरफ अपने सगे संबंधी। राधिका अपने माता पिता से दूर रहकर हॉस्टल में पढ़ती थी और उसके मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे। उसके पिताजी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक ईमानदार प्रोफेसर थे। हर विद्यार्थी चाहता था कि वह शुक्ला जी से पढ़े और इसे वह बड़े गौरव की बात समझते थे। उनकी सज्जनता के चर्चे राधिका के हॉस्टल में भी होते रहते थे। एक दिन रात्रि भोजन के पश्चात शाम को सभी लड़कियों ने मनोरंजन के लिए टीवी चलाया तो देखा कि राधिका के पापा को पुलिस ने हिरासत में ले रखा था। जानकारी करने पर पता चला कि राधिका के पापा ने कॉलेज की एक स्टूडेंट के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है। ये देख सभी लड़कियों की नजरें राधिका पर टिक गईं, मानो सभी बहुत से प्रश्न पूछना चाहती हों। इतनी देर में मंजू ने टिप्पणी की, किसी दूसरे की बेटी को बुरी नजर से देखना घोर पाप है। विद्यालय में हम अच्छे संस्कार सीखने जाते हैं तथा हमारे शिक्षक हमारे पिता के समान होते हैं, लेकिन अगर वे ही ऐसे अशोभनीय कार्य करेंगे तो समाज का क्या होगा? और सारे कमरे में ये कौतूहल मच गया। लड़कियां एक दूसरे से कुछ कह रही थीं। इतनी देर में वार्ड मैम ने आकर सभी को चुप किया और सभी लड़कियां अपने कमरे में चली गईं। राधिका अपने नजरें झुकाकर चुपचाप कमरे में जाने लगी। तभी मैडम ने राधिका को बुलाया और कहा, देखो बेटा, इन सब की बातों को दिल में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस बात में कोई सच्चाई ही न हो, क्योंकि मीडिया वालों का काम है अपनी बातों को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना, इससे उनके चैनल की टीआरपी जो बढ़ती है, उन्हें तो सिर्फ अपने चैनल की पब्लिसिटी से मतलब होता है, उन्हें क्या मतलब कि इससे किसी की निजी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। राधिका ने जब मैडम की सारी बातें सुनी तो उसे कुछ सांत्वना तो मिली, लेकिन फिर भी उसके मन का कौतूहल शांत नहीं हो रहा था। वह नहीं समझ पा रही थी कि वह इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। उसने बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर गेट बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या वो लड़की किसी की बेटी नहीं है? वह नहीं समझ पा रही थी कि वो समाज से नजरें कैसे मिलाएगी और लोगों की प्रतिक्रिया का क्या जवाब देगी। मोबाइल पर साहिल का कॉल आ रहा था, लेकिन राधिका चाहते हुए भी उसे नहीं उठा सकती थी। उसे पता था कि अब तक तो ये खबर सभी ने टीवी पर देख ली होगी और शायद साहिल भी उसे इसी बात को पूछने के लिए कॉल कर रहा है, और इसका उस पर कोई जवाब भी नहीं था। पूरी रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई जो थम

दोस्तों, गीत की ये पंक्तियाँ हमें याद दिलाती हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो जीवन की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। नशे जैसी बुरी आदत से दूर रहना भी एक मजबूत निर्णय है और पर्यावरण व स्वच्छता के लिए आगे बढ़ना भी हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि आज हम युवाणी कार्यक्रम में आज की बात सेगमेंट में बात कर रहे हैं नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें विषय पर। तो युवा साथियों, बदलाव किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। आज एक पौधा लगाइए, अपने आसपास सफाई रखिए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कीजिए और यदि आप

0: बच्चे का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उसे अपनी मम्मी की याद आई। उन पर क्या बीती होगी जब उन्होंने पापा के इस रूप को देखा होगा। उनकी तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। और कैसे वह इस सब का सामना कर पा रही होगी। राधिका ने अपने आंसुओं को रोकते हुए सामान पैक करना शुरू कर दिया और पहली गाड़ी पकड़कर घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि अब उसमें यहाँ रुककर उन कौतूहल भरी निगाहों का सामना करने की क्षमता नहीं थी जो हजारों सवालें पूछ रही थी। उसने अपनी मैडम से परमिशन ले सुबह की गाड़ी पकड़ी और दिल्ली के लिए रवाना हो गई। गाड़ी में बैठकर भी वह उन बातों को नहीं भूल पा रही थी और बार बार उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, पापा आपने ऐसा क्यों किया, मैं किस पर विश्वास करूं? एक तरफ वो इंसान है जिसने मुझे चलना सिखाया और जीवन की हर परेशानी से हंसकर सामना करना सिखाया, तो दूसरी तरफ उस लड़की के आंसू और उसके माता पिता जिनके साथ आपने ये सब किया। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आप मेरे पिता हैं। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी और स्टेशन के शोर शराबे ने उसे फिर झकझोर दिया। बाहर देखा तो उसका शहर आ चुका था। उसने सामान उठाया और गाड़ी से नीचे उतर गई। ऑटो रिक्शा लेकर घर पहुंची तो घर का नजारा बड़ा विचित्र सा था। घर में मातम सा छाया हुआ था, मानो किसी की मौत हो गई हो। लेकिन ये मातम औरों से अलग था। इस मातम में आस पड़ोस और रिश्तेदारों की सांत्वना नहीं थी। घर में चारों तरफ सन्नाटा व खामोशी पसरी हुई थी। बस कमरे के एक कोने से रोने की आवाज आ रही थी। अंदर देखा तो उसकी मम्मी रो रही थी। राधिका दौड़कर अपनी मम्मी से लिपट गई और रोने लगी। माँ ने कहा, बेटा हम इस सब की जांच करवाएंगे, तुम्हारे पापा निर्दोष हैं, वो ऐसा अशोभनीय कार्य नहीं कर सकते। माँ की बातें सुन राधिका ने भी इसकी जांच का मन बनाया। जांच करने पर पता चला कि जिस लड़की ने उन पर ये आरोप लगाया है वो एक धनी बाप की बेटी है। उसके पापा शहर के नामी बिजनेसमैन हैं। उनकी बेटी पढ़ने में बहुत कमजोर थी, लेकिन उसे सिर्फ अपने पैसों का घमंड था। वह सोचती थी पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, तो चाहे वह पढ़ाई ही क्यों ना हो। वह बीएससी सेकंड वर्ष की छात्रा थी। उसके फिजिक्स में नंबर कम आए थे, इसलिए उसने शुक्ला जी पर नंबर बढ़ाने के लिए दबाव भी बनाया। लेकिन शुक्ला जी तो एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने पैसे लेकर कार्य करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे वह लड़की चिढ़ गई और उसने शुक्ला जी को फंसाने के लिए प्रतिकार स्वरूप ये अशोभनीय कार्य किया, ताकि डर से शुक्ला जी उसके नंबर बढ़ा दें। जब इस बात का पता राधिका को चला तो उसे दोबारा अपने पापा की ईमानदारी पर गर्व होने लगा और उसे उन सब सवालों का जवाब मिल गए जो उसे विचलित कर रहे थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि समाज का दर्पण कहे जाने वाले मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये किसी घटना को प्रसारित करने से पहले घटना की वास्तविकता को जाने और फिर उसे प्रसारित करे।
1: सफलता की कहानी सेगमेंट में रेखा चौधरी की लिखी ये कहानी प्रतिकार का विष हमें संदेश देती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, कोई भी प्रतिकार का हम सामना कर रहे हों या कोई भी कठिनाइयां आए, उसे हम चुनौती समझकर स्वीकार करें। बिल्कुल नारियल के फल की तरह, वो चुनौती बाहर से कठोर क्यों ना हो, पर हमारे भीतर सकारात्मक ज्ञान और संस्कारों का जल यदि भरा हो तो हम जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। आज 2 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व नारियल दिवस हमें दार्शनिक रूप से भी यही संदेश देता है।

और अब वक्त है आप सबको संगीत की दुनिया में ले जाने का। तो सुनवाते हैं आपको हिट स्टोरी 2 फिल्म में केके की आवाज में गाया ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह की तो ज़िंदगी हो गई है युवाओं की। कभी हम सफलता पाने के लिए अखबारों के पन्ने पलट रहे हैं, तो कभी किताबों के अंदर छिपी स्याही को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह हम सफल होना चाहते हैं, बस सफल होना चाहते हैं। सफलता पाना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और होना भी चाहिए। लेकिन सफलता हमेशा तालियों से शुरू नहीं होती, उसके पीछे होती है असफलताएं, इंतज़ार, मेहनत और कई बार ऐसे दिन भी आते हैं दोस्तों जब लगता है कि शायद अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन याद रखिए, धीरे चलना असफलता नहीं, रुक जाना असफलता नहीं। असफलता तब है जब हम कोशिश करना छोड़ दें। युवा दोस्तों, अपनी जीवन को किसी दूसरे की घड़ी से मत चलाइए। आपकी मंजिल आपकी है, आपका रास्ता आपका है और आपकी सफलता का समय भी आपका अपना होगा। आप बस एक संकल्प लीजिए दोस्तों कि मैं दूसरों से नहीं, कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं जल्दी के बजाय सही दिशा चुनूंगा। मैं असफलताओं से डरूंगा नहीं और सबसे बढ़कर अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जीवन में चाहे जितने रास्ते आए, किसी भी रास्ते से हमें जाना पड़े, हम ज़रूर गुजरेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे, फिर रास्ते बदलते रहें लेकिन लक्ष्य ना बदलें। उस लक्ष्य को पाने के लिए हम जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। ऐसा मन में अगर विश्वास रखेंगे तो अपने लक्ष्य पर एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन हाँ युवाओं, अगर बार बार अपने रास्ते बदलते रहेंगे और साथ में अपने संकल्प को यानी अपने लक्ष्य को भी बदलेंगे, तो हम इस तरह न अपने लक्ष्य को पा सकेंगे और न ही रास्तों का सही आनंद ले सकेंगे। तो आज के कार्यक्रम युवाणी के माध्यम से हम बस यही संकल्प लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे अपने जीवन में और उसी को पाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। रास्ते बदलेंगे, लक्ष्य नहीं। तो इन्हीं बातों और विचारों के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो साथी चंद्रिका कुमार को अनुमति दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, विचारों को खिलने दीजिए। नमस्कार।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम की 6 बजने को हैं आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ाना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। यहां दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। साथ ही ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 374 अंक गिरकर 76,570 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 141 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जिन और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और साथ

0: विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें, हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों के संबंध में। अब से कुछ देर में यानी शाम 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत आप सुनेंगे कवि गोपाल प्रसाद गोप को। कार्यक्रम का समय याद रखिए शाम 6:15। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। 6:50 का समय रहेगा कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम का। विषय होगा आज के इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। इस विषय पर जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा।

शाम 7:30 का समय रहेगा संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम का शाम सुहानी। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। कार्यक्रम चर्चा का विषय है, ये प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इस कार्यक्रम का समय याद रखिएगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 10:30 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का। आज के कलाकार होंगे विदुषी कावेरीकर का ख्याल गायन, राग होगा भूपाली, तबला पर संगत होगी अब्दुल सलाम की, सारंगी पर संगत होगी श्रीराम हरि बाबू कौशिक की। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 का समय रहेगा अंग्रेजी समाचारों का। रात्रि 11:10 का समय रहेगा हमारी दूसरी सभा के समापन का। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी।

यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनते हैं। किसान भाइयों, इस बुधवार यानी 2 सितंबर 2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा। किसान भाई एवं पशुपालक भाई, बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग जैसे खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव की जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-25-30-1355 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर अनुज कुमार से। कार्यक्रम का समय होगा बुधवार दिनांक 2 सितंबर 2026 शाम 6:50 तक।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए संवेद स्वरों में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल प्रसाद गोप का ये काव्य पाठ।
1: अभी समूचे ब्रज मंडल में महाराष्ट्र की छटा बिखरी हुई है, तो मैं यही परिवेश के कछु मुक्तक छंद और गीत प्रस्तुत करूं हूं। धरी अधरा पे बंशी श्याम की बाजी सरस मधुबन, धरी

आनन जो भूली धाम ब्रिज की बाम एक ठौरी सकल कीन्ही ये चंचल मन प्राण तन श्याम के चरणन में भो अर्पण ये चंचल मन प्राण तन श्याम के चरणन में भे अर्पण। एक सखी बंशी को संबोधित करते हुए कहे नीलज जी श्याम की वंशी अहर निश बाजती दीखे नीलज जी श्याम की बंसी अहर निश बाजती दीखे डगर महलन ओ जमुना तट बाग में गाजती दीखे न दिन में चैन ये लेवे न दिया रात में पावे

दिखे, सदा अधरा को संग पावे, स्वर्ण सो साजती दिखे। बजे जब शब्द मुरली को तो मन बेसुध सो कर डारे।

0: रो उरते जगत सिगरो जु पचिहारे ननिक रे सावरो उरते जगत जगरो जु पचिहारे श्याम पद कंज के मकरंद को लोभी भयो हे मन जगत के फंद सब छूटे रहित सब द्वंद है गोमन कन्हैया की मधुर स्वर तान में उलझो भयो डोले कन्हैया की मधुर स्वर तान में उलझो भयो डोले जाट क्यों है जगत के जाल में स्वच्छंद भयो है मन नाट क्यों है जगत के जाल में स्वच्छंद है गोमन।
1: बंसी की ध्वनि सुन के ब्रजगोपिन की स्थिति कैसी भई, धोने बा

और चली, और कैसी जा रही हैं वो वंशी की ध्वनि सुन के, रासमंडल में कौन सी स्थिति में जा रही हैं, वाको या छंद में वर्ण। मन तो भयो है निज कान, मन तो गयो है निज कान के चरण पास, और चली तन उल्टे से आभूषण डारे के, बिछुआ कुमुदरी सो धार ही मोदे तो है, ओ पायन पायल कु कंगन के रूप हाथ धारे के, चुंदरी कु कटी में लपेट जान लहंगा है, ओ लहंगा कु चुंदर सो बांध बख्य पे संभार के, चुंदरी कु कटी में लपेट जान लहंगा है, ओ लहंगा कु चुंदर सो बख्य पे संभार के, एक चली बेणी पुष्प गुच्छ भांति भांति खोस, एक चली बाबरी सी मूड़ को उघारे के, एक चली बाबरी सी मूड़ को उघारे के। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो ठाकुर जी ने महाराज की हो, वाके संदर्भ में एक गीत प्रस्तुत कर रहे हूं। ये शरद रेन है दिव्य रस ते भरी, रास रस को अनूठो सो संगम भयो। ये शरद रेन है रास रस ते भरी, रस को अनूठो सो संगम भयो। ब्रज के आंगन में अति झर रही चांदनी, धाम जग में सकल मंगलम है गयो। ब्रज के आंगन में अति झर रही चांदनी, धाम

धर्यो शंभु नारद यहाँ। वृंदावन में सरस यह समागम भयो।

शीश पे, कोई कान्हा के चरणन में चित दे रहे, कोई ब्रजराज को कर धरे शीश पे, माधुरी रूप नैनन सौंपी वे कोई, माधुरी रूप नैनन सौंपी वे कोई।

भयो, रास रस में पगे भाव मन आत्मा, रास रस में पगे भाव मन आत्मा, ब्रज की प्रकृति सबई रसमयी है गई, रास रस में पगे भाव मन आत्मा, ब्रज की प्रकृति सबई रसमयी है गई, राधिका ब्रज की गोपी जो ही रास में।

गयो ये शरद रेन है दिव्य रसते भरी रास रस को अनूठो सो संगम भयो ब्रिज के आंगन में जर ब्रिज के आंगन में अति झर रही चांदनी धाम जग में सक

अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत कवि गोपाल प्रसाद गोप का काव्य पाठ।

मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा ईश्वर का विश्वास है। जब सब साथ छोड़ दें तब भी प्रभु का हाथ साथ रहता है। स्वामी विवेकानंद।

मन को जीत लेना ही संसार की सबसे बड़ी विजय है। गौतम बुद्ध। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या की 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

दिन भर की आपाधापी और सांसारिक उलझनों के बीच जब मन थकने लगे तब प्रभु स्मरण ही उसे शांति और संबल देता है। कहते भी हैं जीवन की हर राह आसान हो जाती है जब हृदय में हरि का नाम बस जाता है। नाम सुमिरन में ऐसी अद्भुत शक्ति है जो व्याकुल मन को भी शीतल कर देती है और जीवन को भक्ति के प्रकाश से सराबोर करती है। तो आइए इसी भाव के साथ अपने मन को प्रभु चरणों में समर्पित करें और आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा और हिमलता के स्वरों में गाया चिंतामणि सूरदास फिल्म का ये भक्तिमय भजन।

हरि सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं। मिट्टी की रज में उनका निवास है, तो वहीं हिमालय की पावन गोद में भी विराजते हैं भगवान बद्री विशाल के रूप में, जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के आधार है। संध्या की इसी पवित्र बेला में हम श्रद्धा से झुकाएं अपना शीश और प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए अपना मन। सुनते हैं सोनू निगम के स्वर में गाया चार धाम फिल्म का ये भजन।

श्रोताओं, जब जीवन की राहों में विश्वास डगमगाने लगे, तब माँ का स्मरण ही मन को नई शक्ति और नई आशा देता है। वो जगत जननी है, ममता भी, शक्ति भी और भक्तों की अटूट आस्था भी। माँ शब्द से जुड़ी इसी आस्था के साथ सुनते हैं माँ जगदम्बे की महिमा का ये भक्तिमय गान, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में, गंगा की लहरें फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, आज बुधवार दिनांक 2 सितंबर 2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा। किसान भाई एवं पशुपालक भाई, बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग जैसे खुरपका, मुंहपका, अफरा, गलघोटू, पशुओं का आहार एवं आवास व्यवस्था, टीकाकरण, मच्छर मक्खी से बचाव की जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565253015 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप संदेश भेजकर भी इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9412225575। इस पर जानकारी देने के लिए उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अनुज कुमार। कार्यक्रम का समय होगा आज दिनांक 2 सितंबर 2026 को शाम 6:50 तक। सूचना समाप्त हुई। शाम के 6:50 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: अपने पशुओं की देखभाल की कि इनको कोई रोग ना सतावे। भैया बरसात को मौसम जहाँ हरियाली और खुशहाली लेके आवे हैं वहाँ पशुपालकन के लिए बरसात को मौसम है जहाँ हरियाली और खुशहाली लेके आवे हैं वहीं पशुपालकन के लिए ये मौसम कछु सावधानी बरत को भी होवे है। बारिश के कारण चारों ओर नमी कीचड़ और गंदगी बढ़ जाए है। ऐसे वातावरण में पशु में अनेक प्रकार के संक्रामक और परजीवी रोग एवे की संभावना बढ़ जाए है। भैया बरसात में पशु में खुरपका मुँहपका गलघोंटू लंगड़ा बुखार थनेला और पेट के कीड़ान जैसी समस्या देखने को मिल सके हैं। गंदो पानी पीवे और दूषित चारों खाएवे थे पशु को स्वास्थ्य प्रभावित है सके है। संग ही मच्छर मक्खी और दूसरे परजीवी भी कई बीमारियों को फैलावे को काम करे हैं। इन रोगों के बचाव के लिए सबसे पहले पशु के रहवे की जगह को साफ होना चाहिए, सूखा और हवादार रखना चाहिए, बाड़े में पानी जमा ना होने देना चाहिए। यानी बरसात के मौसम में पशुपालक स्वच्छता संतुलित आहार साफ पानी टीकाकरण और नियमित निगरानी पर ध्यान दें तो पशु को अनेक बीमारियों से बचाया जा सके है। भैया और पशुपालक भैया को यही कहना है हमें कि स्वस्थ पशु ही स्वस्थ परिवार और बेहतर आमदनी को आधार है। जाले बारिश के मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल करें और बीमारी के लक्षण दिखाई दे में तो पशु चिकित्सक की सलाह लें। पर भैया जब आप पशु को अपने को लेके जाओगे पशु चिकित्सक के पास दूर पड़ेगा और समय भी चाहिएगा। पर आज आपको मालूम ही है कि बुधवार के दिन हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में फ़ोन के माध्यम से घर बैठे ही आपकी समस्याओं को समाधान है जाए है। तो हमारी फ़ोन लाइन खुल चुकी हैं। विषय आपको मालूम ही पड़ गया है कि बरसात के मौसम में पशु में है बीमारी रोग और इनकी रोकथाम आधारित है। 25 30 135 हमारा फोन नंबर है और मथुरा दे बाहर के श्रोता 0565 कोड जरूर लगा ले मैं। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अनुज कुमार। आपकी जो भी समस्याएं भैया तुरंत डायल करो और पाओ समस्याओं को समाधान।
1: हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनवे वाले सब किसान भैया बहनन को दिलीप यादव की राम राम। किसान भैया जैसे कि नीलमणि आपको बता ही चुकी है आज को विषय बरसात के मौसम में पशु की देखभाल रोग नियंत्रण यह विषय पे आज को हमारा हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम है। और आज के कार्यक्रम में आपकी जो समस्या है पशु से जुड़ी हुई जो बीमारी है जो दिक्कत है उन पे आप सीधे सीधे कॉल कर सको। फ़ोन नंबर आपको बता ही चुके हैं आपको मालूम ही है। तो आप कॉल करके हमें अपना सवाल अपनी समस्या हम तक पहुँचा सको। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है
2: जी, धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब देखो किसान भैया हमें कॉल करें वैसे पहले ही हम शुरुआत करें या समय लंपी नाम की जो बीमारी है वो फैली हुई है और चूंकि बीमारी फैल चुकी है सरकार ने टीकाकरण की व्यवस्था की है बचाव के उपाय करे हैं। शुरुआती दौर में यहाँ एक बड़ी समस्या रही कि गोट पॉक्स यानी कि बकरी की जो प्लेग है वाकई टीकान के माध्यम से या रोग को नियंत्रित करने को प्रयास उत्तर प्रदेश का राजस्थान में भी सब जगह करी गई और 1 ml वैक्सीन लगाई गई। ये अलग विषय है क्योंकि कौन ने वाकई संस्तुति करी। तो अब जो वर्तमान जो स्थिति है वहाँ टीका या के विकसित है चुके हैं टीका आ चुके हैं तो लंपी रोग से बचाव कैसे करें पशुपालक या विषय से हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं।
2: देखिए लंपी जो बीमारी है जानवरों में जिसमें खाल में गांठे जैसी बन जाती है ये एक वायरल इन्फेक्शन विषाणु के द्वारा होती है और इसके बचाव के लिए चूँकि ये विषाणु का इन्फेक्शन है तो इसमें टीका जैसे आप बता रहे थे गोटपोक्स का टीका वही इस्तेमाल किया जाता है और जिससे हम इसके इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। जहाँ तक इस बीमारी की फैलने की बात है तो ये जो बारिश का मौसम है गर्मी और बारिश इसमें हम जानते हैं कि कीट पतंगों का प्रभाव बढ़ जाता है और लंपी बीमारी ज़्यादातर मच्छर या कीलनी के काटने से फैलता है पशु में और एक पशु में इन्फेक्शन होने के बाद पशु द्वारा दूसरे पशु में ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है ये भी महत्वपूर्ण है। तो इन्फेक्शन होने के बाद इसमें ज़्यादातर जो लक्षण होते हैं पशु में बुखार हो सकता है तेज़ बुखार भी हो सकता है कुछ पशु में कुछ में बुखार नहीं भी होता है और कुछ में खाल में गांठे जैसी पड़ जाती हैं और वो बाद में फूटने भी लगती हैं उसमें मवाद जैसा शराब निकलता है। जहाँ तक इसके इलाज की बात है तो इसमें जो बुखार अगर है तो पैरासीटामोल का इंजेक्शन हमारे पशुपालक भाई इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उससे बुखार कम हो जाता है और एविल जो एंटी एलर्जी जो हम भी टैबलेट खाते हैं जब हमें एलर्जी होती है उसका इंजेक्शन लगाएं 10 ml 3 से 4 दिन तक। तो पशु में जो

कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भैयान को राम राम। भैयाओं, जैसे कि आप सभी जाने हैं कि बरसात का मौसम है और जब बरसात के मौसम में पशु को अनेक प्रकार के रोग है जाए हैं और पशुपालक भैयान को ज़रूरत है।

0: खाल में जो गांठें हैं वो कम हो जाती है और वो पशु ठीक हो जाता है।
1: जी भैया लाइन पे जुड़ रहे हैं एक किसान भैया। हेलो,
2: हेलो दिलीप जी भैया, नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: राम राम जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन बोल रहे
2: सर, आपका ब्रज रेडियो से राजू लवानिया खंडौली से बोल रहा था।
1: हैं? राजीव लवानिया जी खंदौली से। कहाँ सवाल है आपको लवानिया जी? स्वागत है
2: मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जैसे आजकल बरसात का मौसम है
1: जी।
2: और यह मौसम में पशुअन में ज्यादातर गंदगी की वजह से बीमारियां हो करे हैं,
1: बरसात के मौसम में गंदगी से हो, ठीक बात है।
2: तो हमें ये बताओ कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं और जो गंदगी से फैले हैं और उनका कहाँ बचाव हमें करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया।
0: देखिए देखिए, गंदगी की जहाँ तक बात करते हैं, अगर दुधारू पशु की हम बात करें, ज़्यादातर थनैला एक बीमारी है अगर पशु के आसपास गंदगी है। ये भी एक महत्वपूर्ण रोग है पशुओं का, दूध देने वाले पशु का, गाय हो या भैंस हो। तो पशु का जैसे हम दूध निकालते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि दूध निकालने के बाद थन की जो नली होती है वो कुछ समय तक के लिए खुली रहती है, पूरी तरह से बंद नहीं होती है। और पशु अगर बैठ जाता है और गंदगी है उसके आसपास, तो उसके जो नली है थन की, दूध जो निकलता है उसमें इन्फेक्शन चला जाता है ज़्यादातर केस में, या दूध दुहाने में हमने पशु को थन को ठीक से साफ नहीं किया है, धुलाई नहीं किया है, उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। थनैला बहुत महत्वपूर्ण बीमारी इसलिए है क्योंकि एक बार दूध में इन्फेक्शन हो जाए तो उसका फिर इलाज करना बड़ा
1: असंभव
0: मुश्किल होता है, दवाइयाँ भी महंगी आती है और दूध में जो इन्फेक्शन है वो बहुत
1: जी।
0: अच्छे तरीके से उसमें ग्रो
1: एक भैया
0: करता
1: और
0: रहता है।
1: लाइन पे जुड़ रहे हैं।
0: उनका भी
1: हेलो
0: सवाल ले लेते हैं।
1: जी। हेलो,
2: हेलो बाबू जी, नमस्ते।
1: नमो राम राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
2: हम बिल से बोल रहे हैं,
1: डी राजस्थान
2: बीरेंद्र उपाध्याय।
1: जी। उपाध्याय जी, कहाँ सवाल है आपको?
2: कोई है तो वो कदमपट्टी पे फोड़ा से और पड़िया के।
1: कनपट्टी पे आपकी पड़ी आके फोड़ा है वो, ठीक है। तो ये टाइट है या मुलायम है?
2: अब तो एक महीना से है वो टाइट है नरम सो।
0: ये भैंस की पड़िया है ना, कितने दिन की है?
2: ऐसी है 8 महीना सी।
0: 8 महीने की। देखिए जो बता रहे एब्सेस, ये फोड़ा हम बोलते हैं, जबड़े पे हो जाता है जो कह रहे हैं, उसमें ये मैग्नीशियम सल्फेट मैगसल्प एक आता है बाजार में, 400 ग्राम का पैकेट आएगा, उसके हल्के निवाए पानी में डाल के उसकी उसकी सिकाई करनी है। तो फोड़ा
2: अच्छा
0: जो है वो पूरी तरह से मैच्योर पक जाएगा, और पक के फूटने से उसके अंदर मवाद रहती है, और जैसे ही वो फूट जाए फट जाए तो उसको मवाद को निकाल करके, आप तो नहीं कर पाएंगे, जो भी नज़दीकी आपके जो पशु चिकित्सा की या जो हमारे सेंटर हैं एलियो सेंटर होते हैं, वो उसको चिमटी पे एक गोज लगा करके उसको अंदर से थोड़ा कुरेद देते हैं, जिससे कि वो उसकी झिल्ली टूट जाती है और वो फोड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
1: जी। एक भैया और लाइन पे हैं। हेलो,
2: हेलो डॉक्टर, नमस्कार।
1: राम राम जी, कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
2: मैं भसावा से बोल रहा हूँ सर, देवी सिंह।
1: देवी सिंह जी ने रेडियो पे सुन रहे हैं, मोबाइल पे, यानी दूर कर लो जैसे आपकी आवाज़ ठीक सुनावे। विसावर से बोल रहे हैं
2: हाँ
1: जी?
2: जी,
1: जी,
2: हमारी एक गाय है साहब, 2.5 साल की है।
1: 2.5 साल की गैया है आपकी, ठीक है। देसी है, दोगली
2: उसके
1: है, जर्सी है, कैसी है?
2: साहिवाल है,
1: साहीवाल। कहाँ से लाए? अच्छा
2: ये गांव में से ही ली थी, मतलब एक और के पास थी, उसके पास बछिया ली है।
1: ठीक है।
2: उसके लम्पी की गांठें सी हुई हैं
1: अच्छा,
2: और एक गांठ फूट गई है, उसका घाव बढ़ गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे?
0: देखिए अभी जब हमने शुरुआत की, अगर आप सुन रहे हैं, आजकल लंपी बीमारी फैली हुई है, जो गांठ बन के फूट गई है उसमें आप, मैं घरेलू उपाय बताऊं, जो हल्दी का, हल्दी है आपके पास पाउडर, उसमें नारियल जो तेल होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो मिला करके आप लगा सकते हैं उस पर। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, आप एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बीटाडीन, सिप्लाडीन, हम आप सब जानते हैं बेटनोवेट आती है, वो क्रीम भी लगा सकते हैं, तो हल्दी से लगा के वो ठीक हो जाएगी, उसमें कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है। एक एविल का इंजेक्शन लगाएं 2-3 दिन तक, और अगर बुखार भी है उसमें बछिया में, तो बुखार के लिए पैरासीटामोल लगा सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन है, ये विषाणु से होता है, 2-3 दिन में अपने आप ही फिर धीरे धीरे करके गांठें ठीक हो जाती हैं, कोई ऐसी खतरे की बात नहीं
1: जी।
0: है।
1: एक भैया और लाइन पे। हेलो हेलो, ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
2: हेलो ब्रजवाणी, पहचाना
1: जी स्वागत है कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं?
2: नहीं क्या सर?
1: अच्छा, कुमेर से बोल रहे हैं, खान साहब।
2: नासिर खान बोल
1: हाँ नासिर जी, बताओ कहाँ सवाल है आपको?

0: कामा जी को गांव मनियारा से।
1: हाँ कामा, मैं कुमेर बोल रहा हूँ, कामा से बोल रहे हैं जी। बहुत दिन के बाद आपको फोन आया हो।
0: आज क्या करें, मैं सी अब काम में बिजी चल रहे हैं, आज दवाई लेकर आए भरतपुर से।
1: जी कहाँ सवाल है, कहाँ समस्या है आपके पशुन में?
0: जी समस्या ये है जी, मतलब ये बता दो मुझे, मतलब पशुओं को मतलब चौमासा के टाइम में कैसे बड़े कर रखे और कैसे उनकी सुरक्षा कर दी क्या बड़े कर।
1: आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहो पूरे आधा घंटा, यही विषय पे चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, ठीक है?
2: चौमासे में जो आप पूछ रहे हैं, ज़्यादातर हमें मच्छर और कीड़ों से बचाना है क्योंकि लंपी फैली हुई है, और साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना
1: जी। एक और भैया लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो ब्रज ग्रामीण।
3: हेलो डॉक्टर राधे राधे।
1: राधे राधे जी, राम राम, कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
3: डॉक्टर मैं टीटू भगत जी बोल रहे हैं, गाँव अड्डा से,
1: के पास से। टीटू भगत जी गाँव अड्डा।
3: हाँ जी
1: जी, कहाँ सवाल है आपको भगत जी?
3: फिलहाल जो है डॉक्टर साहब के जेंगरी है हमारे पास, साहिवाल।
1: साहिवाल जेंगरी, ठीक है।
3: हाँ जी, तो बाकी लंपी की बीमारी, भाई लंपी बीमारी तो हमने इलाज कराया हुआ है।
1: अब भगत जी हो तो साहिवाल गैया ही रखोगे।
3: हाँ जी हाँ जी, तो लंपी बीमारी का मैंने इलाज कराया डॉक्टर साहब से, वो कुछ सही है गई है, कुछ बाकी हल्की हल्की बाकी रह गई गांठ है
1: जी।
3: तो अब बहाल रुकने की संभावना ना बननी, कैसे बहाल रुकेगी?
1: तो लंपी कितने दिन पहले भेजिए आपको?
2: लंपी धीरे धीरे करके गांठें ठीक हो जाएंगी। अब आपका सवाल है, क्या वो गाभिन गर्मी में नहीं आ रही है?
3: हाँ जी गर्मी में नहीं आ रही।
2: कितनी उम्र है?
3: उम्र मान लो ढाई और तीन, पौन तीन साल की होगी।
2: वजन कितना हो गया है लगभग?
3: वजन का अंदाजा तो नहीं, पशु है।
2: साहिवाल की बछिया है, देखिए 60% वजन बछिया का होना चाहिए, जब मैंने इसलिए सवाल पूछा है। जो बड़ी गाय होती है साहिवाल, तो उसका मतलब है कि ढाई से ढाई क्विंटल या तीन क्विंटल के आसपास उसका वजन होना चाहिए। और अगर वजन ठीक है, आप उसको दाना चारा ठीक दे रहे हैं, तो एक कीड़ों की गोली उसको एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल आती है 3 ग्राम की, नज़दीकी जो पशु चिकित्सा केंद्र है वो लेकर के खिलवाएं। और मिनरल मिक्सचर जो पाउडर आता है मार्केट में भी या सरकारी अस्पतालों में, 50 ग्राम उसको डेली खिलवाना है 15 से 20 दिन बाद। अभी तो चूंकि लंपी भी इसको हुई थी, थोड़ा उसका भी असर रहेगा। 1 महीने तक आप ये करें, थोड़ा दाना दें उसको, वो गर्मी में आ जाएगी, निश्चित रूप से गाभिन रुक जाएगी। लंपी बीमारी का इस पे गाभिन गर्मी में ना ना रुकना का कोई ऐसा डायरेक्ट प्रभाव नहीं है जी।
1: एक भैया डीग से उनको फोन आया हो कि भाई हमारे बाकी जबड़े पे गांठ है गई, और आपने मैग्नीशियम सल्फेट की बात,
2: वो सिकाई की मैंने बात की।
1: ये 400 ग्राम मैग्नीशियम कितने दिन में सिकाई करनी है?
2: ये 5-6 दिन तक थोड़ा उसको सिकाई कर देंगे निवाए पानी डाल के कपड़े से। तो वो क्या करता है ना, वो जो एप्सिस है, जो फोड़ा बना है, उसको पकाने का काम करता है
1: जी। हेलो
3: हेलो जी, राधे राधे जी।
1: राधे राधे जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? बोल कौन रहे हैं आप?
3: मैं रनवारी से बोल रहा हूँ, छाता के पास रनवारी है, कल मेरी सुन लो ना गौर से साहब।
1: हाँ आपकी सुन लेंगे, छाता के पास रनवारी से बोल रहे हैं, का शुभ नाम है आपको?
3: ये एक पद बता रहा हूँ, बाज गाय दूध दे जी।
1: पद गाय के सुना रहे हो?
3: हाँ एक सुन लीजिए गौर से, मेरी हाथ जोड़े निवेदन है।
1: अपनो नाम तो बता दो, पद है तो सुन लेंगे, तुम्हारे कोई बात ना है।
3: नाम मेरा वो है जी ठाकुर भगवान सिंह।
1: अच्छा ठाकुर साहब सुना दो फटाकते।
3: हाँ कल प्रपंच प्रसार देखा
1: जी
3: है जी।
1: हाँ
3: जहाँ सुई की गत नहीं, तामूसल प्रचार
1: जी,
3: रसवती युवती बसन गए करण चाहे तो धार
1: जी,
3: नकली जन में पैट बोले करो लोग सुधार
1: जी,
3: काम देनु बिस्कही और कैसी बांध गाय सुधार
1: जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब आपने बताई कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो 50 ग्राम से 70 ग्राम के आसपास रोजाना
2: पानी में डाल के उसको कपड़े से उसकी सिकाई करनी है।
1: तो ये और मतलब जबड़े के अलावा और कहूँ अगर शरीर में फोड़ा हो तो
2: वो लगा सकते हैं। एक सुमैग आपने सुना होगा, पीले रंग की डब्बी भी आती है, सुमैग लोशन, वो भी इसको फोड़े फुंसी को पकाने के काम में आता है। तो पकने के बाद क्या है, उसमें वो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें फट भी जाता है कई बार अपने आप से, अंदर से उसमें मवाद निकालना है अच्छे तरीके से, और इसमें एक झिल्ली होती है फोड़े में अंदर।
1: और लाइन पे जुड़ रहे हैं
2: जी।
1: हेलो जी, संपर्क
2: जब तक उस झिल्ली को, हम मैंने बताया था चिमटी पे एक

0: गोज जो पट्टी लपेट के के बाद उसके घाव के अंदर उसको कुरेदते नहीं है, तो ये क्या है ना, फोड़ा दोबारा से एप्सिस बन जाता है। तो झिल्ली का तोड़ना ज़रूरी है, उसके बाद उसमें दवाई क्रीम भर देते हैं जगह के हिसाब से, और फोड़ा पूरी तरीके से परमानेंट तरीके से ठीक हो जाता है।
1: मतलब कुल मिला के पट्टी में दवाई मिला के बाबा
0: पट्टी में
1: भरवो
0: दवाई मिला के
1: जरूरी है
0: अंदर भरना है अगर बड़ा साइज है, अगर
1: जी।
0: छोटा साइज है तो फिर पट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है,
1: तो
0: लेकिन झिल्ली का तोड़ना अंदर से ज़रूरी है। जब तक झिल्ली नहीं टूटेगी वो दोबारा से फिर मवाद बन जाती है, वो फिर से फोड़ा बन जाता है।
1: जी एक भैया और लाइन पे जोड़ रहे हैं। हेलो, तो अब बात जैसे गंदगी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और गंदगी पे थनेला की बात आई कि थनेला एक ऐसी समस्या है जो गंदगी के चलते फैले। और गंदगी तो अक्सर देखो क्योंकि पशु गोबर करे, पेशाब करे, वहाँ मीथेन और कई तरह की जहरीली गैस, जब बाड़े में गंदगी रहेगी तो वो सांस के माध्यम से पशु में बा को जो प्रभाव है वो वहाँ पर स्वास्थ्य पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो गंदगी तो हमें चाहे घर हो या पशु बाड़ा हो,
0: हाँ
1: बाकी साफ
0: बिल्कुल,
1: सफाई रखनी ही
0: वो हर
1: चाहिए।
0: तरीके से हमें जो पशु द्वारा जो गंदगी है, जैसे उसका गोबर है पेशाब है, उसकी भी इसीलिए कहते हैं हमें नियमित रूप से उसकी सफाई करती रहनी चाहिए। कीचड़ में खासकर जो गीली मिट्टी में अगर बांधते हैं पशु को तो थनेला रोग की संभावना ज़्यादा रहती है।
1: और भैंसिया तो या समय बरसात को सीजन है, अगर बाहर बांध दी और पानी है तो वो तो कीचड़ में लुढ़
0: उसके लिए
1: जाएगी।
0: मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया था अभी, दूध निकालने के बाद कुछ देर तक जो थन की जो नली होती है वो खुली होती है, इसलिए पशुपालक भाई एक बात का ध्यान रखें कि दूध निकालने के बाद चारा उसको डालें और थोड़ा दाना या जो आटा है वो भी डाल सकते हैं कि पशु आधे घंटे तक खाने में लग जाए, वो बैठे ना जमीन पे। तो होता क्या है, उस बीच जो थन की नली वो बंद हो जाती है, अगर उसके बाद बैठता आधे पौन घंटे बाद तो फिर इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। और दूसरा जो लाल दवा हम सब जानते हैं KMNO4 छोटा पैकेट आता है, चुटकी भर उसको लेके 1 लीटर पानी में मग में डाल के उसकी थन की धुलाई करनी है दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद, तो भी फिर इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है।
1: जी एक और भैया लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: नमस्कार सर, डॉक्टर
1: राम राम जी
2: साहब,
0: जी बताएं।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: मैं साहब तोस से बोल रहा हूँ, देशराज सिंह ठाकुर।
1: गांव तोस से देशराज जी, कहाँ सवाल है आपको?
2: साहब हमारी एक पढ़िया है तो
1: जी
2: साहब, वो है अभी 2 साल की, तो
1: ठीक है, 2 साल की है।
2: साहब आने मतलब हमने सुनी सुनी वो अभी अच्छी खातिर करी तो वो जग गई, तो हमने डॉक्टर बुला के वो करा दी साहब। तो
1: ठीक है,
2: फिर साहब 15 दिन बाद फिर वो पलट गई साहब।
1: 15 दिन बाद पलटी कि 20-21 दिन बाद पलटी?
2: हाँ इतने हो गए होंगे, 20-21 दिन हो गए होंगे साहब, पलट गई वो।
1: ठीक है, यानी जो छटाव दियो 20-21 दिन बाद,
2: हाँ साहब,
1: वो मवाद जैसो, यानी दूध जैसे रंग को दियो कि बिल्कुल बर्फ जैसो एकदम ट्रांसपेरेंट जो होता है
0: पानी
1: सफेदी?
0: पानी जैसा, जैसे पारदर्शी।
2: पानी जैसा हो साहब।
0: देखो 2 साल उम्र बता रहे हैं, वजन कितना है?
2: सर वजन तो खूब अच्छी है गई है, खूब खिला पिला रहे हैं, चुनी फुनी खूब अच्छी है साहब,
0: खिलाई
2: और
0: पिलाई
2: अभी
0: तो
2: तो
0: अच्छी,
2: 2 साल
0: चूंकि
2: की है। और साहब सर
0: बताइए
2: जी
0: बताइए।
2: वो जग गई फिर दोबारा साहब, तो अब के डॉक्टर पे ना कराइए, अब के भैंसा पे कराइए साहब।
0: कितने दिन हो गए कराए अभी?
2: अभी है गए साहब 8 दिन।
0: 8 दिन हो गए तो कोई बात नहीं, आप 21 दिन का जनन चक्र होता है उसमें थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि दोबारा तो नहीं लौट रही है। और
2: अच्छा
0: दूसरा
2: सर,
0: आपको ध्यान रखना है कि जो जीरी डालती है वो पारदर्शी पानी की तरह होनी चाहिए। तीसरा जो ध्यान रखना है आपको, गैविन कराने का समय, ज़्यादातर पड़िया भैंस आप जानते हैं गांव में रहते हैं, सुबह सुबह गर्मी में आती है, उसको सही उचित गैविन कराने का समय है उस दिन शाम को। और अगर शाम को गर्मी के लक्षण दिखा रही है तो अगले दिन सुबह, यानी कि 12 घंटे के बाद आपको गैविन कराना है, ये भी महत्वपूर्ण है।
2: ठीक है साहब। तो अब
0: तो
2: वो भैंसा से करा रही है, तो वो भैंसा से जैसे कराई है तो दूसरे दिन वाले ऐसी जेरी सी गई है खूब, तो वो भैंसा वालों आयो, मैंने पूछी भैया ये काहे मैंने पैसा लिए, तो वो कह रहे कि ऐसे पक्ष डाल रहे, बाकी चिंता मत करो तुम, और ऐसी कोई बात ना है भैंस तो।
0: वो कोई बात नहीं, एक आध दिन जेरी आ
1: इक्कीस दिन
0: जाती है,
1: बाद
0: लेकिन लगातार जेरी नहीं आनी चाहिए आगे। अभी अब आप उसको 8 दिन बीत गए हैं तो 12 दिन बाद जरूर ध्यान रखें जो मैंने बताया है, और उसके बाद ही उसको, बल्कि जांच करवाएं गर्मी की भी, कृत्रिम गर्भाधान से करा सकते हैं, तो उसमें पता भी लगा जाता है कि सही तरह से गर्मी पे है कि नहीं और बच्चेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं है।
1: तो रक्षा ये इनकी जो समस्या ही वो अपनी जगह पे ठीक ही, अब इनने गाभिन तो कराई दी, 21 दिन बाद अगर वो रुक गई है तो वो गर्मी के लक्षण नहीं दिखावेगी।
0: इनके केस में जो मुझे लग रहा है, उम्र चूंकि 2 साल है, हम लोग भी जानते हैं, हालांकि

0: कि 2 साल में भैंस की पड़िया गर्मी में आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर केस में इस एज में इनका वजन भी हो सकता है कम हो। और जब पहली बार पशु गर्मी में आता है, पड़िया या बछिया गाय की पहली बार आती है, तो थोड़ी हीट उसमें लक्षण नहीं आते हैं, वो चुप्पे से गर्मी में आती है तो पता भी नहीं रहता है। हो सकता है इनका गैविन कराने का समय ना रहा हो ठीक, लेकिन शरीर में अगर वजन है, जैसे मैंने बताया 60% है अपने बड़े पशु का, पहली बार जब गर्मी में आता है तो पशु निश्चित रूप से गैविन रुक सकता है। तो वजन भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उम्र से ज़्यादा वजन है, और समय से अगर गैबिन कराएंगे और डिस्चार्ज सही है, झीरी इन्फेक्शन नहीं है, दूसरा पॉइंट ये है, तो उसके गैबिन रुकने के चांस ज़्यादा रहेंगे।
1: जी रक्षक, तो ये चर्चा रही कृत्रिम गर्भाधान की और जो प्राकृतिक गर्भाधान की बात आपने बताई। कृत्रिम गर्भाधान में एक दिक्कत आवे कि समय से हमें जो पशु चिकित्सक हैं या पैरा बैठे हैं वो ना मिल पावे। बीज की गुणवत्ता कैसी है, बीज नाइट्रोजन कंटेनर में ठीक सो रखो कि ना, डारवे वारो कितनों काबिल है, ये सब चीज़ दिक्कत आवे। जी
0: ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं जो आपने कहा है। कृत्रिम गर्भाधान में हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन हमारी हो सकती हैं, हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है कि फार्मर जो किसान है हमारे, उसके दरवाजे पे हम कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं प्रदान करती हैं। उसमें हमारे पशुपालक की भी जिम्मेदारी बनती है कि पशु को गर्मी में जो आता है उसको सही टाइम पे पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: होता क्या है, कई बार पशुपालक को पता ही नहीं लगता है कि पशु गर्मी में कब आया, समय निकल जाता है। कई बार पशुपालक को दूसरा अपना खेत पे कार्य रहता है, वो सोचता है कि आज नहीं कल गाभिन कराएंगे। और दूसरा जो कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है, निश्चित रूप से उसको तकनीकी ज्ञान कितना है। सीमन की गुणवत्ता भी इस बात पर निर्भर करती है कि जब सीमन का एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाते हैं या कंटेनर बदलते हैं, उस समय भी गुणवत्ता उसकी खराब हो सकती है। तकनीकी ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल कम ट्रेनिंग, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, अगर वो कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है तो निश्चित रूप से कृत्रिम गर्भाधान की सफलता कम हो सकती है।
1: जी एक और भैया लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो
0: हेलो
1: जी, कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
0: सर जी,
1: राम राम
0: नमस्कार,
1: जी।
0: मैं महेंद्र बोल रहा हूँ, काम सुरीर से साहब।
1: सुरीर सो महेंद्र जी।
0: हाँ ये सुरीर,
1: हाँ हाँ
0: तहसील
1: बिल्कुल,
0: माट जिला मथुरा।
1: हाँ, सुरीर नौजील टैंटीगाम बाजनो सब
0: हाँ
1: सुने
0: जी, हाँ
1: जी।
0: जी सर जी, हम पर 4 बकरी हैं।
1: चार बकरी हैं, कौन सी
0: हाँ,
1: नस्ल
0: एक
1: की?
0: बकरी अटका, चारों कम पकड़ रही है।
1: अच्छा, कौन सी नस्ल की बकरी है जी?
0: वो है दो वाला अटका है।
1: अच्छा,
0: चारों में ये समस्या है, किसी एक में है?
1: एक
0: ना ना, चार ही ने कम पकड़ रही है। चारा कम पकड़ रही है, तो
1: एक
0: आजकल
1: केवल एक बकरी है।
0: एक बकरी है जो कम खा रही है, हाँ जी, एक गाभिन है वो,
1: हाँ, ग्यावन है 2 महीना की।
0: 2 महीने की गाभिन है। आजकल जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये बारिश और गर्मी का मौसम है, तो वायरल इन्फेक्शन जो फैला हुआ है जानवरों में भी होता है, उसको आप पैरासीटामोल का बोलस आता है बड़ा, जो जानवरों में आता है, आधी गोली सुबह शाम दें, और
1: जी
0: एक
1: सर,
0: भूख की गोली आती है फ्लोराटोन नाम से, या दूसरी और
1: जी सर,
0: भी जो भूख बढ़ाने के लिए, एक एक गोली
1: हाँ
0: वो दे सकते हैं, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी।
1: ठीक है सर, धन्यवाद सर।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो चारों छोड़ो पशु जैसे ही बीमार हो, चारों पानी छोड़े सबसे पहले।
0: ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। पशु अगर चारा छोड़ता है, इसका मतलब पशु के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत है। और जागरूक हमारे पशुपालक होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि आज पशु का व्यवहार सामान्य नहीं है, आज इसने चारा कम खाया है, और अलर्ट नहीं है, मतलब जैसे एकदम देखने में जो जानवर सुस्त पड़ जाता है। ये 2-3 लक्षणों पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और इसी हिसाब से जो नज़दीकी जो भी हमारा पशु चिकित्सा केंद्र है, उससे पशुपालक भाई को हमारी उनसे मदद या इलाज करवाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, गर्भाधान से जुड़ी भाई समस्या बहुत आम है, सबसे ज़्यादा फेरावट की, समय से गर्मी में ना आवे की, और एक एक लाख रुपए की भैंस कूड़ों का वाड़ा है जाए, कट्टी तक में लोग उनको कटानी पड़े, तो ये जो समस्या है वो कम से कम पैदा हों, वाकई का जो कहा सुझाव हमारे पशुपालकन को आप देना
0: देखिए,
1: चाहें।
0: बहुत अच्छा सवाल है। 2-3 चीज़ें हमारे पशुपालक भाई ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, खान पीन है हमारा, जो न्यूट्रिशन हम देते हैं पशुओं को, ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है, हमारे प्रदेश में भी या पूरे देश की बात करें, तो दूध देने वाले पशुओं में दूध उत्पादन के हिसाब से हम बैलेंस जो राशन हमें मिलना चाहिए वो पशु को नहीं मिल पाता है,
1: जी
0: ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है। जैसे हमारा कोई 10 लीटर वाला गाय या भैंस है, हम उसके हिसाब से अगर उसकी पूर्ति नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से अगली बार जो ब्यांत जो गाभिन होना है पशु

0: उसमें दिक्कत करता है। तो जैसे दाना है, हरा चारा है, मिनरल मिक्सचर है, ये नियमित रूप से कैल्शियम है, सभी का पशु प्रजनन में रोल है। इसके अलावा कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें बच्चेदानी में इन्फेक्शन संक्रमण रहता है, जिसको एलवा, ब्रज की भाषा में एलवा बोलते हैं। अगर जीरी साफ नहीं है पानी की जैसी, तो इन्फेक्शन रहता है, उसका हमें इलाज कराना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि गर्मी के लक्षण को समय से पहचानना और समय से गैबिन
1: जी, एक
0: कराना।
1: भैया लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
2: हेलो जी,
1: जी,
2: डॉक्टर साहब, राधे राधे।
1: राम राम जी, राम राम, कौन बोल रहे हैं
2: बरौली से बोल रहा हूँ, छाता के पास बरौली है जो,
1: जी? कहाँ, शुभ नाम है आपको?
2: मान सिंह।
1: मान सिंह जी, सवाल कहा है आपको?
2: सवाल ये है जी, भैंस हमारी 5 बार बदल गई है। हाँ
1: आपकी भैंस 5 बार बदल गई,
2: जी,
1: गर्मी में
2: हाँ
1: कितने दिन पे आती है बदलने में?
2: हाँ तो वो ही आवे 22-23 दिन में।
1: 22 दिन का, ठीक है, 21 से 18 से लेके 24 तक। दूसरा ये बताइए, जीरी कैसी आती है? अभी हम चर्चा कर रहे थे, अगर आप रेडियो सुन रहे हैं, जीरी
2: हाँ
1: साफ पानी
2: तो
1: की तरह है, पारदर्शी कि
2: साफ
1: दूध दही
2: आती है,
1: जैसा है?
2: पतली
1: जी,
2: पतली पारदर्शी आवे, पतली और
1: पारदर्शी
2: ज्यादा
1: है।
2: आवे।
1: गैबिन कहाँ पे करा रहे हैं आप?
2: पे इन पे करवाते हैं ये डॉक्टर, ये रूगी धरे कहाँ है?
1: एक ही डॉक्टर हर बार एक ही से करा रहे हैं कि बदला भी है बीच में आपने?
2: नहीं ये तो हमारे कई साल चल रहे हो, कम से कम 8-10 साल से। दूध
1: अच्छा, 8-10 साल से। दूध कितना दे रही है भैंस?
2: तो यार टाइम तो ऐसा दे रही होगी मुश्किल से 4 किलो।
1: बच्चा दिए कितना दिन हो गए इसको?
2: बच्चा दिए है साहब इसको 1 साल है, वे बारी है 10 महीना है गे। हाँ
1: हाँ, 1 साल हो गए लगातार दूध दे रही है। तो दाना और चोकर इसमें आपको बढ़ाना है और थोड़ा हरा चारा देना है। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो जिस तरह का जो ये अभी पशुपालक भाई हमें बता रहे हैं, निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी।
3: दिलीप भैया, देखो समस्या अपने किसान भैया की बहुत है, पर क्योंकि हमें समय को भी ध्यान रखना है, आज हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का विषय तो बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और इनकी रोकथाम। वार्ताकार विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुज कुमार, और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को दें यहीं विराम। सब
1: सब
3: बहन
1: बहन
3: भैया
1: भैया
3: को
1: को राम
3: राम
1: राम।
3: राम।

0: hisztek né.
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों को समर्पित हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ, कहा प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को मिलेगा उनका अधिकार। रिटायर्ड एयर

0: मार्शल जितेंद्र मिश्रा होंगे अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ। गोविंद देव गिरी को बनाया गया ट्रस्ट का महासचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 13 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाएंगी 25 वर्षों के सेवा काल की उपलब्धियां। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आउटसोर्स कर्मियों को उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में तय हुई उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा इन्हीं कार्मिकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मी हैं। इस नई व्यवस्था में 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आकस्मिक इलाज के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर एक जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ दिया है।
1: डबल इंजन की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लागू, उसे तकनीक दिया, उसे बाजार दिया और उसे मार्केट के साथ जोड़ने का काम आज परिणाम हमारे सामने है। कारीगर के हाथ में जो कला थी, जब उसे बाजार दिया गया, बाजार मिला तो उसका हुनर प्रदेश में रोजगार बना, रोजगार बढ़ा तो वही कारीगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बने।
0: पश्चिमी वायु कमान के पूर्व कमांडर सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को आज अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में अयोध्या की मणिराम दास छावनी में आयोजित ट्रस्ट की बैठक के बाद घोषित की गई। सीईओ ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और श्रीराम मंदिर परिसर से संबंधित प्रमुख परिचालन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए जिम्मेदार होंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंदका और शिकोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ निर्मला यादव शामिल हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पश्चिमी वायु कमान के पूर्व कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
2: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उस ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका में कमांड करते उस हिजा को उसके लीडर थे।
0: अंतरिम महासचिव ने बताया कि गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के नए महासचिव होंगे और महेश भागचंद का नए कोषाध्यक्ष होंगे।
2: मैंने इस काम के लिए हमारे श्री गोविंद देवगिरी से प्रार्थना किया, महाराज जी ने उसको स्वीकार कर लिया और आज से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के पद के पर महाराज जी कार्यरत है। महाराज जी के पास में कोषाध्यक्ष का भी दायित्व था, तो महाराज जी ने ये कहा कि कोषाध्यक्ष जो है वो महेश भागचंद का, जिसके बारे में मैंने बताया है, वो इस दायित्व का निर्वहन करे। नहीं,
0: श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावरे शामिल थे। सीईओ पद के लिए 5,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: एक माह के इस व्यापक अभियान में 13 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास और जन भागीदारी की कहानी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। आशीर्वाद का दिया, 25 करोड़ बच्चों के सपनों का

0: भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, वडनगर से वाराणसी यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, रंगोली राष्ट्र एवं घर घर से राष्ट्र तक, राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज और जन सेवा महाकुंभ इसके प्रमुख कार्यक्रम होंगे। कल अभियान की कार्ययोजना पर उच्च स्तरीय चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर शाम 7 बजे आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम से अभियान की शुरुआत हो। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित परिवार अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन प्रमुख कार्यक्रमों के साथ प्रदेश के ऐतिहासिक और लोकप्रिय स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर नमो सेवा की थीम पर लेजर शो आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी पर्व को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मथुरा में इस बार जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। वहीं आज वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम मंदिर से श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में जन्मोत्सव के लिए उपहार सामग्री भेज दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पर्व के मद्देनजर बसों और बस स्टेशनों पर सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अपरिमेय श्याम प्रभु जी ने बताया कि पर्व को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं।
2: तो ये कृष्णा नाइट, इसमें आपको बहुत सारा भगवान का सुंदर श्रृंगार, फूल बंगला, अभिषेक, दूध दही शहद, 1008 तीर्थों के जल से अभिषेक दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक चलने वाला है। और इसमें आप सब भगवान का दर्शन पा सकते हैं, इस सेवा को कर सकते हैं और सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है।
1: सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए प्रदेश में विशेष HPV टीकाकरण अभियान कल से 17 सितंबर तक चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित होने वाले इस अभियान के दौरान 14 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ NB सिंह ने पात्र किशोरियों से टीकाकरण कराने की अपील की।
3: 14 से 15 साल के बीच की बच्चियों को HPV वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। ये जो टीका है उनके CS सर्विक्स या बच्चेदानी के कैंसर का बचाव का एकमात्र तरीका है। HPV वैक्सीन का टीका लगवा के अपनी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रखें।
1: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर, बलिया में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार बाढ़ राहत को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं।
4: जहाँ जहाँ बाढ़ का प्रकोप है उसे निपटने के लिए हमारी सरकार ने SDRF, NDRF और जिला प्रशासन को सक्रिय कर रखा है। चित्रकूट मंडल में लगातार मंदाकिनी नदी का प्रवाह बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, वहाँ सतर्क रहने कहा गया है और सभी जो भी जहाँ बाढ़ आई थी सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और बाढ़ राहत कार्यक्रम लगातार चल रहा है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को मिलेगा उनका अधिकार। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा होंगे अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए CEO। गोविंद देव गिरी को बनाया गया ट्रस्ट का महासचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 13 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाएंगी 25 वर्षों के सेवा काल की उपलब्धियां। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें। हम

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 7:31 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी।

श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम शाम सुहानी में। और आज के इस कार्यक्रम में जो साथी हमसे नए जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें, वो भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको करना है बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजना है। और अपना मैसेज हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो श्रोताओ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लीजिए जिस पर आपको भेजना है व्हाट्सएप संदेश, 9412225575। और हमारे आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे कौन से श्रोता साथियों ने हमें व्हाट्सएप संदेश किया है, जानते हैं उन साथियों के नाम। आज का पहला गीत सुनने के लिए हमारे जिन साथियों ने हमें व्हाट्सएप संदेश दिया है उनका नाम है मोदाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। इसी गीत को पसंद किया है बुलडाणा बड़शिंगी महाराष्ट्र से। पसंद करता है अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और अशोक कुमार। बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं इस गीत के पसंद करता सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेद कुमार। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी, ये साथी हमें संदेश भेज रहे हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता और इनके परिवार के सदस्य। इसी गीत को पसंद किया है आज के कार्यक्रम शाम सुहानी में गांव फरांसी जिला हिसार से। पसंद करता है राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गुन्नू लाल रजक, मुनरी छत्रिय। गांव अढ़ागर नीमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कुमार, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर। सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, ये साथी हैं ग्राम पजौनिया जिला जाजौन से। अहमद भाई फूलबाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, आमना आसमा परी, इकबाल अहमद फूलबाले, इमरान अहमद फूलबाले, ये साथी हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से। मारहरा दरवाजा एटा से पसंद करता है इस गीत के नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सभिया अंजुम खान। इसी गीत को सुनना चाहा है व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजकर रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से।

विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, दिलीप भाई परदेसी, मुन्ना परदेसी, पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरेशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरेशी, बेबी अरिबा हबीबा, कुम्भार गली कोलवाल से पंडू चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडू रंगा कुम्भार। आज के कार्यक्रम शाम सुहानी में इसी गीत के पसंद करता है हमारे अन्य श्रोता साथी, जिनमें शामिल है हरिशंकर सैनी, द्रौपदी रानी और इनके परिवार के सभी सदस्य। साथी हैं अंबिका।

असते। पंडू चंदन, उषा राणी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडू रंगा कुंभार। आज के कार्यक्रम श्याम सुहानी में इसी गीत के पसंद करता है हमारे अन्य श्रोता साथी, जिनमें शामिल है हरिशंकर सैनी, द्रौपदी रानी और इनके परिवार के सभी सदस्य। के साथी हैं अंबिका आवास कॉलोनी फेज एक बरेली उत्तर प्रदेश से, नई बस्ती गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागनी रिया, रेणु दिव्यांशी, आराधना रोनिका यादव, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, यांश कुमार चंदन, हेयांश सौंगा, मगरलोड छत्तीसगढ़ से। राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा, ये साथी हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। तो श्रोताओं, सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। फिल्म है राम तेरी गंगा मैली।

श्याम सुहानी कार्यक्रम के अगले गीत को पसंद किया है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर ने। बुल्लाड़ा बडूशिंगी महाराष्ट्र से पसंद करता है अमोल मानकर, शोभा ताई, दीपाली और श्लोक कुमार। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनजय कटनकर, शमशुल खान, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, ताबिश आबाद, उरहान खान, ये साथी हैं हमारे राहीनगर गंज डुंडवारा से। यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष, अंश साहू, कर्मा चौक लोहारडी से इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इसी गीत के पसंद करता है ग्रामनगर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगड़कर, साखर बाई कंगड़कर, परमेश्वरी रोहिणी और श्रावणी ईश्वरी कंगड़कर। आसलगांव बाजार से राजू माठे, गजानंद, ज्ञानेश्वर माठे, संजय माठे और प्रकाश दांगड़े। पालिका पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी टीवानशी, वाणी आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बकू। इसी गीत को पसंद किया है ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से पसंद करता है प्रवीण, योगिता, प्रियाली, पार्थ हागड़े और इनके परिवार के सभी सदस्य। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एमएफ फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सायमा सरफराख शेख, गुलफराज और बीबी मुस्कान। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतनमाला एमपी से जगदीश, रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। साधुश शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। इसी गीत को सुनना चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजकर बेबी मुस्कान, अलम अली, गुड्डू परिवार के सभी सदस्य। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू ने हमें संदेश भेजा है और इसी का संदेश हमें भेजा है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, मोहाली से टीडी मल्होत्रा, कालका से शुभ सुंदर, ग्राम शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मनमीत, मंजीत, करणवीर, दीपिंदर, कुलदीप, सीमू, दमन और अभिजीत, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कोसर, मोहल्ला

वाहियान शेरकोट जिला बिजनौर से। पोषण चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोर ग्राम पहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनवाला ओम कुमार और आरती कुमारी। सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्वनी मंगला बैन साहा राजेंद्र साहा पद्मा टॉकेज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। खड़क सिंह छंचोर एडवोकेट प्रकाश नगर मथुरा से। शंभुदयाल खटक विमला देवी अमरजीत खटक सुंदरलाल खटक योगेश कुमार दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ये साथी हैं हमारे गांव जाखौद राजस्थान से। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से इस गीत को पसंद कर रहे हैं। वजेंद्र विश्वकर्मा सोनाली सोनम आशीष विश्वकर्मा भन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकड़ मध्य प्रदेश से। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पटेल और ऊषा पाटिल इस गीत को सुनना चाहती हैं। बरली मुंबई से नवाब खान इशरत जहां मास्टर अजहर खान और अजीम खान। सुधाकर राजे जाधव देशमुख डॉक्टर प्रशांत जगुताई राजे जाधव कुमार सचिन संचित प्रथमेश सर्वद कल्पना सानवी और इनके परिवार के सदस्य मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगोरी जसबीर कौर महीप्रीत और सहिज प्रीत। महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे मोनिका तिवारी और रानू मैडम। गंगाधर सावनकर विजया लक्ष्मी सावनकर राजेश राकेश ऋषिता कुंडलवाली महाराष्ट्र से। मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशी गोस्वामी शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी ये साथी हैं उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएन सिन्हा निर्मला नवाणकर विशाल नवाणकर मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले सोपान ताइडे और आशीष मुन्हेकर। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ मंजुला विशाल और निशा। कमल बालूजा मधु बालूजा सागर और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक माही मलिक। जॉन डिकेस्ट्रो रॉजी पर्ल और विलस डिकेस्ट्रो ये साथी हैं जनकापुरी सहारनपुर से। जिला पीतल नगरी ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से पसंद करता है मुकेश कश्यप शीतल सोनू राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह। फरमाइश करता है इसी गीत के दुर्गा प्रसाद सैनी अनीता सैनी गौरव सैनी ये साथी हैं शनि मंदिर चौक खंडवा से। उत्तम कुमार बघेल रुखमनी बघेल साहिल भारती लघान पडरिया छत्तीसगढ़ से। नादीड़ से प्रकाश जैन लातूर से संगीता जैन सूरज और पीआर जैन। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया जय देव तामोरिया तुषार देव तामोरिया डॉली बेबी पूजा तामोरिया राधिका और प्रभा देवी तामोरिया पोस्ट मास्टर अल कबीर। वजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली सोनम आशीष। तो ये सुनवाते हैं आप सभी साथियों की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। फिल्म है राज़।

कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाएंगे आप सभी की पसंद पर पसंद करता है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा मनोहर भाई बागरी प्रभुलाल बागरी बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से ये गीत पसंद कर रहे हैं। इस गीत को पसंद किया है गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमशी रजनी आकाशदीप अनहर और इनके परिवार के सदस्य। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज नवेद सुहेल अनफ अनम रशीद वारसी किदरई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान सबीहा अंजुम खान झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा रजत और मयंक भाटिया। सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। बहुत सारे साथियों ने हमें संदेश भेजे हैं और उन सभी के नाम हम शामिल नहीं कर सकते, तो उन सभी की भावनाओं को पसंद करते हुए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसे गाया है मितु चौहान ने मोहित चौहान ने और फिल्म है जब वी मेट।

मोहित चौहान की आवाज में गाए जब वी मेट फिल्म के संगीत के साथ ही कार्यक्रम श्याम सुहानी से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का ये गीत। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म है सैनिक।

अभी आपने सुना कुमार सानू और आशा भोसले को फिल्म सैनिक में। लीजिए अब सुनिए ये अगला गीत फिल्म संगीत का, अमाल मलिक और अरिजीत सिंह की आवाजों में। फिल्म है सलामत सरबजीत।

सरबजीत फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अमाल मलिक और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। और जब सुनिए फिल्म संगीत में उदित नारायण और अलका याग्निक को।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाए फिल्म ऐतराज़ किसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में देश का गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी 3 सितंबर 2026 में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मानसिक स्वास्थ्य, कारण, लक्षण और निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-25-30-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य, कारण, लक्षण और निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मानसिक स्वास्थ्य, कारण, लक्षण और निदान। श्रोताओं, यदि आप मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे लंबे समय तक उदास रहना, अत्यधिक गुस्सा या मूड में अचानक उतार चढ़ाव, सोने में परेशानी या बहुत समय सोना, भूख का कम या ज्यादा होना, अरुचि और अलगाव जैसे दोस्तों और पसंदीदा गतिविधियों से दूर रहना, तनाव ना संभाल पाना, भ्रम या असहज विचार जैसे कि मानसिक वास्तविक दुनिया से कटाव महसूस होना या अजीब बातें सोचना जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 3 सितंबर 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम याद करेंगे वर्ष 2003 में आई भावनाओं, प्रेम और रिश्तों से सजी फिल्म दिल का रिश्ता।

फिल्म की कहानी है जय और टिया की, जिनकी मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसा मोड़ लेती हैं कि दोनों के रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। एक दुर्घटना के बाद टिया अपनी याददाश्त खो बैठती है और यहीं से कहानी में भावनाओं, त्याग और प्रेम की एक नई परीक्षा शुरू होती है। जय अपने सच्चे प्रेम के साथ टिया की जिंदगी में फिर से खुशियां और पुराने रिश्तों की पहचान लौटाने की कोशिश करता है। क्या उनका प्यार फिर से एक हो पाएगा? यही है फिल्म दिल का रिश्ता की भावनात्मक कहानी। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

जोड़ने की चाह, इन सभी भावनाओं को समेटे फिल्म दिल का रिश्ता आज भी अपने संगीत और संवेदनशील कहानी के कारण याद की जाती है। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ प्रस्तुत है इस फिल्म का एक और गीत।

इस गीत को गाया है जसपिंदर नरवाला ने, गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

प्रिय श्रोताओ, रिश्ते वही नहीं होते जो सिर्फ नाम से जुड़ते हैं, बल्कि सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो दिल की गहराइयों में बस जाते हैं। इसी संदेश के साथ यही समाप्त होता है इस फिल्म का सीन, और आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का जाते जाते ये अगला गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म दिल का रिश्ता के कुछ गीत। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र

0: ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

0: न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोप के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
2: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
3: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और

0: बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: बम्बई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
1: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे की ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक $136 अरब का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। New Delhi sends 5th tranche of emergency material to flood hit Nepal. Death toll rises to over 1,200, with over 4,000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over $136 billion US dollar inflows till August 31st. Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Max de Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. Talks on trade, defence, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the 5th tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the 5th

सुहाने तराने कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गाया गुलाम फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना वो दौर जब रेशम के धागों और मसालों के काफिले मध्य एशिया के बीहड़ रास्तों से गुजरा करते थे। ताशकंद से बिश्केक तक फैली वो धरती जहां इतिहास के पन्नों ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा। लेकिन आज 21वीं सदी के नक्शे पर वही मध्य एशिया सिर्फ इतिहास की किताब नहीं बल्कि ग्लोबल पावर प्ले का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। ऊर्जा का अकूत खजाना, यूरेनियम के भंडार और भू राजनीति का नया केंद्र, चीन की उठती इमारतें, रूस का पारंपरिक दबदबा और अफगानिस्तान के मुहाने पर सुलगती अशांति, इन तमाम चक्रव्यूहों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक के सरजमी पर। 4 दिनों की ये महायात्रा सिर्फ 2 देशों का दौरा नहीं थी, ये ताशकंद में यूरेनियम की डील से भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को लॉक करने की पटकथा थी। ये बिश्केक से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अल्टीमेटम था। ये कदम था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से व्यापार के नए रास्ते खोलने का। ये शंखनाद था मध्य एशिया के दिल में भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को एक नए युग में ले जाने का। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे कुछ बड़े सवाल भी हैं। क्या भारत सेंट्रल एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का नया अध्याय लिख रहा है? क्या ये चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच भारत की अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश है? इन बेहद महत्वपूर्ण सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद।
1: चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से उज्बेकिस्तान के साथ रिश्ते पहुंचे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। 2030 तक व्यापार को $5 अरब से ज्यादा ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कनेक्टिविटी, यानी सहयोग का दायरा अब सिर्फ कूटनीति की मेज तक सीमित नहीं है। और फिर बिश्केक SCO के मंच से भारत का स्पष्ट संदेश, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। त्रिगुणायत जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला है। चीन और रूस के पारंपरिक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत का ये कूटनीतिक कदम सेंट्रल एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्या लगता है आपको?
2: देखिए आनंद जी, 2012 से हमने अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को स्थापित किया है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 5ों सेंट्रल एशियन कंट्रीज में विजिट किया और उनके साथ में हमारे जो BRICS C5+1 या दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्ते बना पाए और प्रगाढ़ कर पाए, उसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि सेंट्रल एशिया जो है इस वक्त ग्रेट गेम के अंदर में लगा हुआ है। आज की डेट में वहां पर जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रूस का है वो पुराना है, क्योंकि ये सारे कंट्रीज रूस के रिपब्लिक्स थे 1991 से पहले, और उसके बाद से चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस वहां पर जियो इकोनॉमिक्स के रूप में उभरा है। और रूस और चीन ने बीच में ये एडजस्ट किया है कि जियो पोलिटिकली रशिया अपना स्थापित करता रहेगा लेकिन चीन को जियो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक एंगेजमेंट के साथ उनको बढ़ावा देते रहेंगे, तो वो दोनों के बीच हो रहा है। तो यूरेशियन कनेक्टिविटी की बात वहां पर चल रही है। उधर अमेरिका उनका एक थर्ड नेबर बन के उभरा है, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भी अपना C5+1 और ये इस तरह के काफी वहां पर कोशिश की है, इसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया में। क्योंकि आज की डेट में जब हम सेंट्रल एशिया को देखते हैं तो सेंट्रल एशिया को कॉकेशस के साथ मिलाकर के देखा जाता है, तो उस सब के अंदर में भी अमेरिका काफी वहां पर है। चौथा कंट्री जो है वो वहां पर है टर्की। टर्की ने अपना वहां पर काफी जो उनका टर्किक लैंग्वेजेस का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है उसके चलते उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी को वहां पर काफी बढ़ाया है। तो ये चारों कंट्रीज और गल्फ के कंट्रीज भी कुछ इन्वॉल्व हैं इस तरह से, मेनली यूरोपियन यूनियन भी काफी वहां पैसा लगा रहा है। आप विश्वास मानेंगे कि आर्मेनिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो उस रीजन की सबसे बड़ी एम्बेसी है और आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट इस वक्त हुई है वो दो संदर्भ में हुई। एक तो ये कि बायलैटरल है हमारा उज्बेकिस्तान के साथ में, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जैसे आपने कहा कि उसको हमने कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है, जिसका मतलब सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, या न्यूक्लियर डोमेन के अंदर हो गया, डिफेंस में हो गया, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारी सेंट्रल एशिया के साथ रही है वो है कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी के लिए हमने जो है, जब डायरेक्ट हमारा पाकिस्तान के थ्रू नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रहे, सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहे थे, तो भारत ने चबहार पोर्ट के जरिए जाना शुरू किया। लेकिन अभी चबहार पोर्ट भी जो है अमेरिका की काटसा सेंक्शंस और आजकल तो बमबारी चल रही वहां पर, तो ये सब करने की वजह से भारत को थोड़ा वहां चबहार पोर्ट में हमारे को कंट्रोल प्रॉब्लम हुई है। उसी के चलते वहां पर जो आपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसमें भी चबहार पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो समस्याएं इस वक्त जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन की वजह से, खासतौर से अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो है बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, और उसमें भारत ने कोशिश ये की है कि किस तरह से हम उनको इम्यूनाइज कर पाए उन प्रॉब्लम से, ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस आगे बढ़ सके। तो किस तरह हो सकता है, एक तो एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब आप ये देखिए कि अभी प्रधानमंत्री को हमारे जो जाना पड़ा 7.5 घंटे लग गए, जबकि ये 2.5 से 3 घंटे के बीच हमारे कंट्रीज हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जिस तरह का एक अपना नजरिया दिखाता है, हमारे जो दुश्मनी के ताल्लुकात उनके साथ हैं, उसके चलते ये समस्या सबसे बड़ी आई। तो मैं समझता हूँ कि काफी सारे एरियाज में बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत बड़ी है। दूसरा, उज्बेकिस्तान भी जो है ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री है, तो उनके जो लीडर हैं शवकत मिर्जियायेव, वो भी भारत आएंगे। जब हम भारत इस बार जो है ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है, तो वो सब उसके अंदर जो ऑल्टरनेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो SCO हो,

0: नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ब्रिक्स है, और बायलैटरली भारत ने पूरी कोशिश की है कि इन सब देशों के साथ मिलकर के किस तरह से हम और आगे बढ़ा सके अपने जो हमारे रिश्ते हैं, हिस्टोरिक और
1: जी
0: सिविलाइजेशनल टाइज है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहां पर भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। आप अगर जाकर देखें वहां पे कल्चरली लोग जो है वो काफी अलाइंड है भारत के साथ। लेकिन इस वक्त में प्रधानमंत्री की विजिट से काफी, मैं समझता हूँ,

0: की विजिट से काफी मैं समझता हूँ एक ये जो रिश्ते हैं और आगे बढ़ेंगे और प्रगाढ़ होंगे।
1: जी प्रोफेसर जोशी, भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2030 तक आपसी व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान व्यापार
0: अच्छा
1: आंकड़ों को देखते हुए ये लक्ष्य
0: अच्छा
1: कितना व्यावहारिक है और इसमें फार्मा, आईटी, माइनिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों की क्या भूमिका रहने वाली है आपके नजरिए से?
0: देखिए, ये देखना इस बार बड़ा सुखद रहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने उज़्बेकिस्तान की यात्रा की तो उनको न सिर्फ वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच जिस प्रकार के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं, बहुत लंबे पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं टेंजिबल आउटकम्स में, जब हम दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो उसमें व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो उसमें एक जो अभी व्यापार का हम वॉल्यूम दोनों देशों के बीच में देखते हैं वो कम है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को $5 बिलियन तक करने का लक्ष्य रखा है। और हम ये भी ध्यान में रखें कि जब हम उज्बेकिस्तान की ओर देखते हैं तो भारत को क्रिटिकल मिनरल्स और विशेषकर यूरेनियम सप्लाई करने वाला देश है, तो जब हम इस ट्रेड टारगेट को देखते हैं तो फिर इसमें एक प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात भी आती है, ताकि कन्वेंशनल जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कट किया जा सके और दोनों ही देशों के जो निवेशक हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फायदा हो सके। तो एक तो एक टारगेट सेट किया गया $5 बिलियन का, प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात दोनों देश कर रहे हैं, ताकि जितने भी टैरिफ से जुड़े हुए और नॉन टैरिफ से जुड़े हुए जो बैरियर्स हैं और जो निवेश में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हुए, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स हुआ, उसके पार्ट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हुए, मोबाइल फोन्स हुए, ये तमाम, और कुछ खाद्य पदार्थ जो है उज्बेकिस्तान को भेजता है। वहीं जब हम उज्बेकिस्तान की ओर नजर डालते हैं तो फल और सब्जियां, फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि यूरेनियम शामिल है वो भारत को प्रोवाइड कराता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक का ऐसा नया क्षेत्र उभर के आता है आनंद, जिसमें विशेषकर एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में सहयोग को आगे ले जाने की, कई गुना व्यापार बढ़ाने की बात की जा रही है, जो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो ये नोवीस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, विशेषकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और AI है, इसको लेकर के भी दोनों देश और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात करते हुए नजर आए। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के जो अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो, कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको हमने कल प्रूफ भी किया, हमारी क्वार्टरली ग्रोथ 7.8% की रिकॉर्ड हुई है GDP की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हर्ष का विषय है। और वहीं दूसरी ओर भारत की जो तकनीकी ग्रोथ है उसकी भी उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने तारीफ की थी जब ये बायलेटरल ऑफिशियल टॉक्स हुई। और इसमें फिर मैं कहती हूँ कि न सिर्फ हम सेंट्रल एशिया की ओर, भारत जब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट करता है दूसरी तरफ जाकर, तो वहां पर भी जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं, फिलीपींस जैसे देश हैं, वो भारत की ओर देखते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें व्यापार में फिर जो है एक पूरा सामरिक क्षेत्र आ जाता है, जिसमें डिफेंस से जुड़े उपकरण, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ये तकनीक को लेकर के सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो
1: जी
0: ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो व्यापार को 5 बिलियन करने की बात की गई है,
1: जी
0: उसमें जो ये तमाम जो नवाचारी क्षेत्र हैं इनका भी उल्लेख है, इसमें दोनों देश साथ में काम करेंगे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तर पर, ये दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
1: जी त्रिगुनायक जी, जो ताशकंद वार्ता रही उसमें जो सबसे बड़ा टेकअवे रहा वो उज्बेकिस्तान से भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा तय होना रहा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समझौते के रणनीतिक महत्व को आप कैसे आंकते हैं?
0: देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और भारत एक लीडर के रूप में निकला है जहां तक कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन की बात है, या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने की बात है। तो भारत ने अपना जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नया आयाम किया है, उसी तरह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इस तरह के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी तरह भारत ने अपना लक्ष्य जो है न्यूक्लियर एनर्जी का रखा है, लगभग 100 GW बाय 2047। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए आपको जो है यूरेनियम की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाईज,
2: उन सबको करना होता। अभी हम सिर्फ कजाकिस्तान से खरीदते हैं यूरेनियम।

0: और भारत चूंकि ब्रिटिश जैसे अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था और इस वक्त में अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत काफी कुछ चीजों में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में जो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन किया है येलो केक या जिसको बोलते हुए लेंगे वहां से, तो ये हमारी जो ऊर्जा के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, देखिए इस वक्त हमने देखा है जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है उसमें जिस तरह चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाबर मंदब हो, जब उनके बंद होने से एनर्जी सप्लाईज में बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, तो ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है जैसे INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस सब की वजह से क्या है आपको अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो है फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कैसे और आगे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी जान रहे हैं कि UPI 10 से ज्यादा देशों में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में भारत के फिनटेक और IT सेक्टर के प्रवेश के जो अवसर बन रहे हैं उसे आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर का नया हथियार बन रहा है?
2: आनंद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री की पिछली इंडोनेशिया यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खुल के तारीफ की थी और विशेषकर भारत की इलेक्टोरल सिस्टम और जिस प्रकार से हमने EVMs के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को सहज सरल ट्रांसपेरेंट बनाया, डिजिटाइज किया, उसकी तारीफ करते हुए एक महत्वपूर्ण MOU जो है वो भारत के साथ इंडोनेशिया ने साइन किया। तो इसी प्रकार से आप अपने आसपास के जब तमाम देशों को देखते हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देश हो, साउथ एशिया के देश हो, ईस्ट एशिया के देश हो, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, आज भारत की जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है पूरे विश्व में। और 140 करोड़ की आबादी के घने देश को डिजिटाइज करना सरल काम नहीं था आनंद, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। तो चाहे हमारा आधार हो जो हमारा बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे अपना UPI हो जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है जिसकी वजह से इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बीच में और अलग अलग मुद्राओं के बीच में भी संभव है, आज 10 से अधिक देशों में अपना UPI स्वीकार्य है, चाहे अपना डेटा शेयरिंग का डेपा हो जिससे कि डेटा एम्पावरमेंट को और प्रोटेक्शन को बल मिलता है, या ONDC हो जो कि ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए जिसमें कि बायर्स और सेलर्स को ये एप्लीकेशन आपस में जोड़ती है और एक प्राइवेट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। तो हम फिर इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो हमने योजनाएं चलाई, चाहे जनधन हो, आधार हो, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, तो इससे हमने दो प्रकार के अकम्पलिशमेंट्स अचीव किए। एक तो हमने अपना जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक सर्विसेज थी, उनको ट्रांसपेरेंट किया, इजी किया, सीमलेस किया और इनको हमने डेमोक्रेटाइज किया, ये जन जन तक हमारी योजनाएं और ये तमाम जो पूरा डिजिटाइजेशन था ये पहुंचा। और दूसरा, हमने तमाम इसके माध्यम से जो बेनिफिट हुए वो एक ग्रास रूट लेवल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है और आज भारत अपना जो DPI का ब्लूप्रिंट है उसकी ग्लोबल शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग जो देश हैं वो भारत के साथ में ऑफिशियल अग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के DPI की। ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी न सिर्फ फिनटेक को या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बल्कि अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं जो लोगों की सिटीजन्स की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उससे जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीका और लेटिन अमेरिका की यात्रा की थी तो घाना अफ्रीका में या अर्जेंटीना, ब्राजील को हम लैटिन अमेरिका में देखें, इनको हम अपनी जो हमारा जो ई मेडिसिन संजीवनी की जो सर्विसेज हैं वो
1: जी
2: प्रोवाइड कराते हैं और जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं और वहां पर उनकी सर्विसेज को हम ग्रो करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के अग्रीमेंट्स हमने इन दो देशों के साथ भी किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो उनकी जो डिजिटाइजेशन की यात्रा है इसका ये बड़ा माइलस्टोन है जिसमें भारत अपने ब्लूप्रिंट को शेयर करके तमाम ये जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं इसमें इन दोनों देशों को आगे ले जाने का काम करने वाला है।
1: जी और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में चल रहे युद्धों पर भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि संघर्षों का समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को एंडलेस वॉर्स से एंडिंग वॉर्स की दिशा में आगे बढ़ना होगा और भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री।

0: ने क्या कहा?
1: हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है। गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। इन सभी विषयों पर कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं।
0: त्रिगुणायन जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर अपनी बात कही, बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के सख्त संदेश दिया। अफगानिस्तान से सटने वाली मध्य एशियाई सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत का ये रुख कितना प्रासंगिक है, जब आप देख रहे हैं कि कई देशों की सीमाएं अस्थिर और अशांत बनी हुई हैं।
2: देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज 25 साल मना चुका है अपनी एनिवर्सरी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, इन चीजों के लिए लड़ना और सिक्योरिटी को बढ़ाना किसी तरह से। उनके कुछ रेड्स टाइप के जो बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने, इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही जो है टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ना है। भारत अपने आप लड़ रहा है, दुनिया भर में सबको कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप रखेंगे तो इस बुराई, इस कुरीति और इस तरह के देशों के साथ में कोई भी वो नहीं कर सकते, उसको सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने इस बार फिर कही, और अगले जब 25 साल की बात हो रही है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि दुनिया जो है अपनी ये डबल स्टैंडर्ड्स, खासतौर से मेंबर कंट्रीज जो है वो ना रखें इसमें। तो भारत पूरी तरह से जब तक अपने आप तो लड़ता ही रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन दुनिया को ये सबक दे रहा है कि अगर आप इससे नहीं लड़ेंगे तो कल आप इसका शिकार बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ईरान युद्ध जो हुआ है, देखिए जितने भी इस तरह के इन्वेजन होते हैं, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल इवल्स वाज इन्वेजन ऑफ इराक, कि इराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उस वक्त के बाद सारा टेररिज्म बढ़ा, आईसिस आया वहां पे, आईसिल आया। अब आप ईरान के अंदर भी उसी तरह का अटैक कर रहे हैं, तो ये जितने भी उनके ग्रुप्स हैं जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है, 4H, वो सब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद में दोबारा से और ज्यादा इस तरह की बात होगी, तो ये जो सारी सीमाओं का बिल्कुल मतलब नहीं रह जाएगा जब नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा स्टेट्स की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का बड़ा सीधा भाषण था और राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा सीधा, उन्होंने जब पहली बार वर्ड्स में ये कहा कि एंडलेस वॉर को एंड ऑफ वॉर होना चाहिए, और पहले उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन ईरा वॉर, तो मैं समझता हूँ कि ये बात और उनकी मुलाकात जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी हुई, डॉक्टर प्रदेश क्यान से, और तब भी वो बातें हुई हैं। देखिए जब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे, जब तक देश जो है इस तरह का ये दुभातिया व्यवहार जिसको कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन सब लड़ाइयों से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
0: जी प्रोफेसर जोशी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का 3 पिलर्स वाला विजन दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के इस दौर में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद और संतुलित पार्टनर के रूप में खुद को कैसे स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
3: हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, जब हम दो देशों के या भारत और किसी संगठन की के संबंधों की चर्चा करते हैं तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए कोई भी वो देश या वो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस बात की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन के लिए, भारत किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब जबकि शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये तमाम देश अस्तित्व में आए और भारत के साथ बहुत लंबे समय से इनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक इनके पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, विशेषकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और जिस तरह की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखते हुए हमने वर्षों से देखा है कि न सिर्फ रशिया के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए ये देश जो है वो जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे, और वही भारत के साथ भी स्थिति है। लेकिन जब इन देशों के, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, इन देशों के जब हम सेंट्रल एशिया में जाकर

0: के व्यवहार को या इन देशों के साथ के पारस्परिक संबंधों को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी का जो रुख है वो एक ट्रांजैक्शनल रुख है इन तमाम देशों के प्रति। और वहीं जब हम भारत को, भारत की कूटनीति को देखते हैं तो भारत ने विगत 11 से 12 वर्षों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, विन विन रिलेशनशिप्स को कैसे आगे ले जाते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या किसी भी क्षेत्र की जो क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए आप चाहे कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें काम करें, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें काम करें, या जब आप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को आगे ले जाने की बात करें तो उसकी ओर देखें। तो इस बात का संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार के SCO समिट में चीन की मौजूदगी में दिया कि कनेक्टिविटी पर काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी देश की जो संप्रभुता है, विशेषकर उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका सम्मान करते हुए कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना चाहिए। और ये अपने आप में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश था। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है वो बहुत सकारात्मक कूटनीति है। भारत न किसी प्रकार का डेट क्राइसिस या डेट डिप्लोमेसी खेलते हुए किसी देश के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि उसके किसी भूभाग पर जाकर के कब्जा करे या वहां अपनी प्रेजेंस को असर्ट करे। न भारत इस प्रकार की कूटनीति करता है कि अपने फायदे की या अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करने की सोचता है जिसमें कि दूसरे देश का नुकसान हो जाए। न भारत इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा हो। और आज जो भारत की शक्ति की स्थिति है आनंद, वो हम सभी जानते हैं। कल अपनी आर्थिक शक्ति का तो भारत ने पूरे विश्व को परिचय दे ही दिया, तब जबकि अमेरिका के प्यूनिटिव मेजर्स और तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा था, पश्चिम एशिया का संकट बहुत गहराया हुआ था और बाकी के जो देश है, विशेषकर पश्चिम के जो शक्तिवान देश है, उनका जो GDP ग्रोथ है रेट रहा वो 0.5 से लेकर 2% तक का रहा। हमने अपना GDP इस क्वार्टर का जो रिकॉर्ड किया है वो 7.8% का रिकॉर्ड किया है। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, उसकी कूटनीति ऐसी, इस प्रकार की डायनेमिक कूटनीति है कि वो सभी मंचों पर एक सामंजस्य बना करके काम करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर के जाता है। ये देश जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात भारत करता है। भारत UNSC में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके नेतृत्व की बात करता है, और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई की बात करता है। इसके साथ ही भारत अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साथ में काम करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज को इंटैक्ट रखते हुए। तो यहाँ पर भारत इन तमाम देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश पर इस प्रकार का भरोसा इन देशों का है कि भारत किसी भी प्रकार की नकारात्मक कूटनीति में ना पड़ते हुए अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर काम करता है।
1: जी, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी। आइए सुनते हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा।
2: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the Prime Minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
1: त्रिगुणायत जी, कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं उस द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कि भारत विकसित बनने की राह पर और आगे बढ़ सके। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की महायात्रा थी, इसमें कौन से ऐसे पहलू आपको नजर आते हैं जो भारत को विकसित बनाने की तरफ और आगे लेकर जाएंगे।
3: देखिए, भारत हमेशा से विश्वास ये करता है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास जो है वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी उसको साझा किया जा सके। तो जैसा अंशु जी ने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहें, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब नए ढंग से चल रही है। टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत प्रदान करता है, शेयर करता है दूसरे देशों के साथ में। तो जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% क्लॉक किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिश्ते हम बना रहे हैं वो तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी है और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। या तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं, भारत

0: मेक इन इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से विकसित भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के जरिए दूसरे देशों को जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको फायदा पहुंचाएं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह से भारत हमेशा और सब देशों के साथ में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के लिए हमेशा साथ रहता है। तो मैं जब देखता हूँ कि जब हम विकसित 2047 की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं, वो भी हमारे जो ग्रोथ है उसका लाभ उठा सके। तो मैं समझता हूँ यही भारत की एक नीति है जिसकी वजह से भारत को लोग एक विश्व मित्र के रूप में देखते हैं।
1: जी, ताशकंद के ऐतिहासिक गलियारों से लेकर बिश्केक की चोटियों तक वक्त का पहिया एक बार फिर घूम चुका है। सदियों पहले जिस रेशम मार्ग पर भारत के ज्ञान, संस्कृति और मसालों की खुशबू महकती थी, आज 21वीं सदी का नया भारत उसी धरती पर अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अटूट सामरिक पहचान का परचम लहरा रहा है। उज्बेकिस्तान में मिला प्रधानमंत्री को सम्मान सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक कूटनीतिक जीत भी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया के दिल में भारत के बढ़ते विश्वास की वो मुहर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिगुणायत जी आपका, प्रोफेसर जोशी आपका और हमारे श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है दिल अपना प्रीत पराई। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाया सफर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म संगीत में लीजिए आप सुनिए किशोर कुमार और राजेश खन्ना की आवाजों में गाया खामोशी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं हेमंत कुमार की आवाज में गाया प्यासा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शायर ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने।

आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म है तकदीर, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में गाया अमर प्रेम फिल्म का यह अगला गीत। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है राहुल देव वर्मन ने।

किशोर कुमार के गाए अमर प्रेम इस केसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कार्यक्रम संबंधी सूचना के संबंध में। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 3 सितंबर 2026 में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मानसिक स्वास्थ्य कारण लक्षण और निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565 ये पिन कोड लगाकर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94122255557 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य कारण लक्षण और निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है मानसिक स्वास्थ्य कारण लक्षण और निदान। श्रोताओं, यदि आप मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे लंबे समय तक उदास रहना, अत्यधिक गुस्सा या मूड में अचानक उतार चढ़ाव, सोने में परेशानी या बहुत ज्यादा सोना, भूख का कम या ज्यादा होना, अरुचि और लगाव जैसे दोस्तों और पसंदीदा गतिविधियों से दूर रहना, तनाव ना संभाल पाना, भ्रम या असहज विचार जैसे कि वास्तविक दुनिया से कटाव महसूस होना या अजीब बातें सोचना जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 3 सितंबर 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं विदुषी कावेरी कर का ख्याल गायन, राग है भूपाली, तबला पर संगत अब्दुल सलाम की है, सारंगी पर संगत है हरिबाबू कौशिक की।

अभी आपने सुना कलाकार विदुषी कावेरीकर का ख्याल गायन राग था भोपाली, और लीजिए सुनिए इन्हीं का ही ख्याल गायन। राग है मालकौस, तबला पर संगत तोता राम शर्मा की है, सारंगी पर हरिबाबू कौशिक और हारमोनियम पर बाबू खान की संगत है।

अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कलाकार विदुषी कावेरी कर का ख्याल गायन। राग थे भूपाली एवं माल कौस। तबला पर संगत अब्दुल सलाम की थी। सारंगी पर हरिबाबू कौशिक। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे बाबू खान।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर उसके बाद अंग्रेजी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसके प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है, जबकि 4000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर

0: से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंदका और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rocks near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to the affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. Death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing, as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support, and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi today chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. The Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound